मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

मुकेश की आवाज में फिल्म जिस देश में गंगा बहती है से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, यारी वो नहीं जो सिर्फ तस्वीरों में मुस्कुराती है, यारी वो नहीं है जो सिर्फ तस्वीरों में मुस्कुराती है, यारी तो वो है जो हर मुश्किल में साथ निभाती है। आइए सुनते हैं याराना फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में ये गीत।

दोस्तों, अभी आप ये गीत सुन रहे हैं ये सुदास की आवाज़ में फिल्म किस्मत से, और इसी के साथ ही अब हमारा भी जाने का वक्त हो चला है। भोर सुहानी से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 22 जुलाई 2026। सुबह के 5:53 हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

हम आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल से बोल रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। सुबह 6:10 पर सुनेगा कार्यक्रम अर्पण। 6:44 का समय रहेगा श्री रामचरित मानस गान का। गोल्ड सुप्रभात, ये कार्यक्रम आप सुबह सुनेंगे 7:10 पर।

सुबह 7:30 पर सुनेगा कार्यक्रम आज सवेरे। 8:45 पर कार्यक्रम प्रसारित होगा म्यूजिकल दिल लगी। 10:00 कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 10:10। दिल का मेलबॉक्स, ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सुबह 10:30 पर।

घर आंगन ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं दोपहर 12:10 पर। 1:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल।

दोपहर 2:30 पर सुनेगा कार्यक्रम उन्नत किसान। ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: सरकार संसद में नीट से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कुब्जे में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार वास्तविक क्षमता से बहुत कम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा। किसी भारतीय राष्ट्रपति उत्तर मैसेडोनिया की पहली यात्रा द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता दर्शाती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की दो दिन की फिलीपींस यात्रा आज से शुरू हो रही है। वे मनीला में आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत ईस्ट एशिया सम्मेलन और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। उनके द्विपक्षीय बैठकें करने की भी उम्मीद है। भारत ने अफगानिस्तान के नूरिस्तान में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी है। खाद्य सामग्री और टेंट सहित अन्य राहत सामग्री अफगानिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजी गई है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत इस कठिन समय में अफगानिस्तान के संकटग्रस्त लोगों के साथ है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु का दौरा करेंगे। श्री राधाकृष्णन कोयम्बटूर में जीएनकेएनएम नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति तिरुप्पुर में अविनाशी लिंगेश्वर शिव मंदिर भी जाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री श्री मोदी को विजयनगरम जिले के भोगपुरम में अलूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए आमंत्रित करेंगे। इस हवाई अड्डे का उद्घाटन 1 अगस्त को प्रस्तावित है। श्री चंद्रबाबू नायडू केंद्रीय मंत्रियों अमित शाह, पीयूष गोयल, मनोहर लाल खट्टर और सीआर पाटिल के साथ राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। नामांकन 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर कर सकते हैं। युवा कार्यक्रम विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस प्रश्नोत्तरी में बहुविकल्पीय 20 प्रश्न है। 10 मिनट के अंदर इनके उत्तर देने होंगे। हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। भारत का पहला मैच 15 अगस्त को वेल्स के साथ होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

समय हो चला है 6:18 और ठीक 28 सेकेंड। आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 MHz पर, और ये है आपका पसंदीदा प्रोग्राम यानी अर्पण, जिसमें हम बात करते हैं उन अनछुए पहलुओं के बारे में जिन्हें सुबह सुबह छू लेना बहुत जरूरी होता है। तो आज सब ऐसे ही पहलू हम छुएंगे। फिलहाल आपको याद दिला दें कि अर्पण में आज मैं हूं पूनम आपके साथ, स्वागत आप सभी का दिल से। और बात जब अनछुए पहलुओं की होती है तो एक पहलू है कि हम कोई भी जो बदलाव होता है ना उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उसे अपने आप से जोड़ नहीं पाते। हमें लगता है कि क्यों ही कुछ बदला, बेशक वो मौसम ही क्यों ना हो। तो क्या बदलाव हमारे अंदर समा पाना या उसे एक्सेप्ट कर पाना, उसे स्वीकार कर पाना इतना मुश्किल है? और क्या हम अगर नहीं चाहते हैं कि बदलाव हो तो वो सही है? या क्या जब हम उस बदलाव से अपने आप को जोड़ लेते हैं तो हमारे जीवन में कुछ बदल जाता है? सब बात करेंगे, लेकिन फिलहाल सुनते हैं एक प्यारा सा ये भजन।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26

जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

6:26 और ठीक 36 सेकंड हो चले हैं। आप सुन रहे हैं अर्पण FM गोल्ड पर और हम बात कर रहे थे परिवर्तन की कि परिवर्तन ब्रह्मांड का अटल सत्य है, लेकिन इसे स्वीकार करना बड़ा मुश्किल होता है। हम बहुत बार पढ़ते हैं सुनते हैं कि जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। परिवर्तन ही सृजन और विनाश का आधार है, लेकिन फिर भी इससे जुड़ नहीं पाते। जो चीज़ हमारी होती है हमें लगता है सिर्फ हमारी ही है और फिर इसी वजह से दुख उत्पन्न होता है। पर अगर इतना सीख जाए कि भावनाएं, परिस्थितियां ये सब बदलती रहती हैं और इस बदलाव को हमें स्वीकार करना चाहिए तो हम उस दुख से बच सकते हैं। और जब हम ऐसा समझ जाते हैं तो भी कुछ ना कुछ ऐसा जरूर ढूंढ रहे होते हैं जो बदले ना। अब वो क्या है जो नहीं बदलेगा, जो हमेशा हमारे साथ रहेगा, वो भी बात करेंगे। लेकिन पहले ये भजन।

जी हाँ, तो बात हो रही थी कि हम जो बदलाव है उसको स्वीकार नहीं कर पाते, और जब स्वीकार नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं बहुत दुखी रहते हैं, पर जब हम इसे स्वीकार कर लेते हैं तब वो दुख खत्म हो जाता है। लेकिन फिर भी मन कहीं ना कहीं किसी ऐसी चीज को ढूंढ रहा होता है जो हमेशा स्थायी रहे, हमेशा हमारे पास रहे, परमानेंट हो। तो जब बाहरी दुनिया बदलती रहती है, शरीर बदलता रहता है, बाहर के लोग बदल जाते हैं, बाहर की परिस्थितियां बदल जाती हैं, बाहर के जो हमारे आपस में संबंध होते हैं वो बदल जाते हैं, तो अपने अंदर झांकना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर बैठी आत्मा या चेतना वो कभी नहीं बदलती, और वो इस बदलते संसार की मूक साक्षी बनकर हमेशा हमारे साथ रहती है। इसीलिए जब भी कभी ये मुश्किल हो कि कुछ भी स्थायी नहीं है, उसको अपने आप स्वीकार कैसे किया जाए, तो अपने अंदर झांक कर देखना जरूरी है। अब ये कह देना आसान है कि अपने अंदर झांक कर देखें और जो परिस्थितियां हैं उनके साथ ज्यादा अटैच ना हो, यानी ज्यादा साथ ना रहें, अपनी मानसिक शांति का ध्यान रखें, परिवर्तन को अपना लें,

पर ये कहना बहुत आसान है, क्या इसके लिए भी कुछ ऐसा हो सकता है जो व्यवहारिक हो? क्योंकि ये संदेश ऐसे तो हर जगह दिया ही गया है, बेशक भगवद गीता की ही हम बात करें, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में आप करोड़ों के स्वामी बनते हैं तो दूसरे पल में आप दरिद्र हो जाते हैं। तो सुख और दुख दोनों के परिवर्तन पर एक जैसा रहना चाहिए, पर हम इसे कैसे अपनाएं? मान लीजिए स्वीकार कर भी लिया तो अपनाएं कैसे, ये भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये भजन आपके लिए।

जी हाँ, तो बात हो रही थी कि हम जब चेंज को या परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हैं तो काफ़ी कुछ बदल जाता है, हमारा मन स्थिर होने लगता है, मन में शांति आ जाती है और दुख कम होने लगते हैं। लेकिन ये बात सुनते सुनते हमें कितना समय हो गया लेकिन अपने आप को बदल नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए कुछ चीज़ों को अपना सकते हैं। जैसे जब आपको बहुत तनाव है, आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, किसी से बहस हो गई, तो खुद से कहें कि ये स्थायी नहीं है, यानी दिस टू शैल पास। और जैसे हर रात के बाद सुबह आती है, ऐसे ही ये मानसिक परेशानियां भी थोड़े समय के लिए फिर बदल जाएंगी और परिस्थितियां भी। दूसरा ये कि प्रतिक्रिया देने में जल्दबाजी ना करें। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी भी चीज़ से बहुत परेशान हो जाते हैं, चाहे वो ट्रैफिक जाम हो या फिर अचानक आया कोई काम हो या किसी का ख़राब व्यवहार हो, तो तुरंत गुस्सा करने की बजाय 10 सेकंड का मौन रखें, खुद को याद दिलाएं कि बाहरी चीज़ जो है वो अलग है लेकिन आपके मन की शांति को कुछ भी भंग नहीं कर सकता। तीसरा, इच्छाओं और अपेक्षाओं को छोड़ना। तो सबको हम अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करते हैं लेकिन जब ये जिद छोड़ देते हैं, जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर मन में शांति आनी शुरू हो जाती है और हम उस परिवर्तन के साथ जीना सीख जाते हैं। फिर अपने आप में मौन रखना थोड़े समय के लिए, जैसे आप सुबह उठे और उठकर आधे घंटे आप अपने साथ बैठे, तो उससे भी हम उस परिवर्तन को स्वीकार करना सीख जाते हैं। देखिए कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं और कितनी ज़रूरी हैं, बस हम उनके लिए प्रेजेंट नहीं होते यानी उन्हें समझ नहीं पाते। जिस दिन समझ जाते हैं उस दिन लगता है कि अरे ये तो पहले से ही पता था।

राजा दशरथ के महलों में नववधुओं के स्वागत सत्कार तथा अन्य विधियों की समाप्ति के साथ रात्रि का आगमन होता है। सभी कुमार उनीते हो रहे हैं, किंतु माताओं की जिज्ञासा का अंत होता नहीं दिखता। राम लक्ष्मण जैसे सुकुमार बालकों ने किस प्रकार ताड़का जैसी भयानक राक्षसी तथा मारीच और सुबाहु जैसे बलशाली राक्षसों का वध किया होगा, किस प्रकार ऋषि मुनियों के यज्ञ में डाली जाने वाली विघ्न बाधाओं का नाश करके दोनों किशोरों ने गुरु कृपा से विद्या पाई। जिज्ञासाओं का अंत नहीं। दीर्घ अवधि के बाद पुत्रों का मुख देखकर माताएं हर्ष ममता जनित उद्गार तथा तृप्ति से ओतप्रोत हो रही हैं। अपने विनय भरे वचन से माताओं के प्रश्नों के उत्तर देकर श्री राम उन्हें संतुष्ट करते हैं तथा गुरु और ब्राह्मणों के चरणों में सिर नवाकर नींद की गोद में विश्राम करने लगते हैं।

0: के इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
1: पूर्वाहणे कांग्रेस दलस्य अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा अन्य दल सदस्या नीट विषयक चर्चामाधृत्य प्रदर्शनम अकुर्वन्। केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह तथा केन्द्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन लोक कल्याण मार्ग स्थिते प्रदर्शन स्थले कांग्रेस नेतृभिः सह मेलनं कृतवन्तौ। तत्रैव संसदि विपक्ष सदस्यैः पुनः पुनः कृतैः व्यवधानैः लोकसभा राज्यसभा च नीट प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणं समेत्य विविध विषयेषु ह्यः आदिवसं यावत् स्थगिते अभवताम्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सद्य एव जाते नीट परीक्षाया प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणे संलग्न जनान विरुध्य दृढ़ निग्रहं कर्तुं अथ राष्ट्रस्य यूनां हितस्य संरक्षणं च पुनः उद्घाटितवान्। असौ अवदत् यत् भविष्ये एतादृशानां घटनानां निवारणाय प्रशासनेन बहवः उपायाः क्रियमाणाः सन्ति। प्रधानमंत्री एतत् संसद भवन परिसरे राष्ट्रीय जनतांत्रिक संयुतेः मंगल मिलन इति नाम्ना अपि प्रख्याते संसदीय दलीयोपवेशने उक्तवान्। वार्ताहरान् संसूचयन् संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजुः अवदत् यत् उपवेशने प्रधानमंत्री देशव्यापिनां भावि परीक्षाणां प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन निवारणाय सर्वेषां संबंधित पक्षाणां समन्वित प्रयत्नानां आवश्यकतां विशेषतया प्रतिपादितवान्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः इत्येषा भारत उत्तर मैसेडोनिया देशयोः आर्थिक सम्बन्धान् विस्तारयितुम् उक्तवती। उभयदेशीय उद्योगिनः व्यापारात् परं निवेश प्राविधिकी नवोन्मेषाधारित दीर्घकालिक सहकार्यं प्रवर्धयितुम् आग्रहम् अकरोत्। स्कोप्जे इत्यत्र भारत उत्तर मैसेडोनिया व्यापार मंचं संबोधयन्ती राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अवदत् यत् भारतीय राष्ट्रपतेः उत्तर मैसेडोनिया देशस्य एषा प्रथमा यात्रा अस्ति या उभय देशयोः संबंध सुदृढीकरणे भारतस्य दृढ प्रतिबद्धताम् द्योतयति। सा अवोचत् यत् वर्तमान व्यापारस्य परिमाणं तस्याः संभावनायाः अंशमात्रमेव प्रतिनिधित्वं करोति। अस्य दशकस्य अन्तपर्यन्तं द्वैपाक्षिक व्यापारं द्विगुणं भवितुं शक्यते इति विश्वासः अस्ति। भाजपेति दलं ह्यः लोकसभायाः विपक्षनेतुः राहुल गांधिनः लोककल्याण मार्गे विरोध प्रदर्शनस्य निन्दाम् अकरोत्। तेन प्रदर्शिताचरणं पूर्णतया अशोभनीयं निन्दनीयं चेति वर्णितवान्। नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वन् भाजपेति दलस्य अध्यक्षः नितिननवीनः उक्तवान् यत् एषा घटना दुर्भाग्यपूर्णा अस्ति, भारतस्य राजनैतिक इतिहासे कृष्ण दिवसेति वर्णितवान्। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरः अद्यारभ्य द्विदिवसीय फिलीपींस देशस्य यात्रायै मनीला इत्यत्र गमिष्यति। तत्र असौ आसियान इत्येतस्य अन्तर्गतम् आयोजितेषु विदेश मंत्री स्तरीयोपवेशनेषु भागं ग्रहीष्यति इति वार्ताः।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। सरकार संसद में नीट से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह

0: और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपिये में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार वास्तविक क्षमता से बहुत कम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा। किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तर मैसेडोनिया की पहली यात्रा द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राष्ट्रपति ने डिजिटल नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, औषधि और स्वास्थ्य क्षेत्र, कृषि प्रसंस्करण और हरित ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर बल दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की दो दिन की फिलीपींस यात्रा आज से शुरू हो रही है। वे मनीला में आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत, ईस्ट एशिया सम्मेलन और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। भारत ने अफगानिस्तान के नूरिस्तान में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी है। खाद्य सामग्री और टेंट सहित अन्य राहत सामग्री अफगानिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजी गई है। विदेश मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारत इस कठिन समय में अफगानिस्तान के संकटग्रस्त लोगों के साथ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह चेतावनी दी है कि अमरीका हर उस स्थल पर जोरदार हमले करता रहेगा जहां ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम फिर शुरू करने का प्रयास करेगा। व्हाइट हाउस में लेबनन के राष्ट्रपति जोसेफ हाउन की उपस्थिति में श्री ट्रंप ने यह दावा किया कि ईरान तनाव जारी रखने के बावजूद बातचीत की कोशिश में है। ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमला न करने की चेतावनी देते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ऐसा होने पर अमरीका 10 गुना अधिक हमले करेगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रण किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट गतिविधियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। नामांकन 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर किए जा सकते हैं। युवा कार्यक्रम विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। प्प्रश्नोत्तरी में बहुविकल्पीय 20 प्रश्न हैं और 10 मिनट के अंदर इनके उत्तर देने होंगे। हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यों वाली पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. President Drobdi Murmu has called for expanding India-North Macedonia economic ties, urging businesses from both countries to move beyond trade and forge long-term partnerships based on investment, technology and innovation. Addressing the India-North Macedonia Business Forum in Skopje, President Murmu said her visit, the first ever by an Indian president to North Macedonia, reflects India's strong commitment to strengthening relations. President Murmu invited North Macedonia to collaborate with India on digital public infrastructure, highlighting the success of India.

0: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
1: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
0: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
1: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
0: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
2: जी हाँ, तो हम बात कर रहे थे एक खूबसूरत धमाकेदार शुरुआत की, उत्साह के साथ शुरुआत की। लेकिन सोचिए, अगर आप सुबह सुबह उठे और बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बस दोबारे सो जाएं, या मन बहुत अच्छा नहीं फील कर रहा है, तो फिर दिन कैसे शानदार होगा। अब अगर ऐसे उठे हैं तो फिर भी शानदार बनाया जा सकता है, और उसी के लिए है योग। क्योंकि जब आप अनुलोम विलोम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, 5 से 10 मिनट तक सिर्फ गहरी सांसें लेते हैं, नियंत्रित सांसें लेते हैं, तो ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाता है, मन को शांत रखता है, तनाव को कम करता है और हमारी सोच को भी संतुलित करता है। तो जो हमारी सोच होती है ना कि कल ठीक नहीं हुआ और मन आज अच्छा नहीं है, या अभी उठने का मन नहीं कर रहा, बस थोड़ी देर और सो लेते हैं, ये सब भी आपकी सोच जो है ये संतुलित हो जाती है और आप जल्दी जल्दी और बहुत अच्छी तरह से सब काम करते हैं, खुशी से करते हैं। तो मॉर्निंग रूटीन जो है उसे थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, अगर आप ऐसा फील कर रहे होते हैं कि सुबह सुबह बहुत एनर्जेटिक होकर हम नहीं उठ रहे हैं। इसमें सबसे पहले तो मोबाइल देखने की आदत को थोड़ा सा विराम दे दीजिए, एक ग्लास गुनगुना पानी पीजिए, 2 मिनट खुद को धन्यवाद दीजिए और 5 मिनट हल्की सी वॉक या स्ट्रेचिंग भी कीजिए, या योग तो हम कह ही रहे हैं कि आप योग कर सकते हैं। तो शुरुआत जितनी शांति से होगी, जितनी अच्छी होगी, दिन उतना ही बेहतर गुजरेगा। छोटी सी बात है लेकिन अपना के देखेंगे ना तो ये बड़े बड़े बदलाव आपकी ज़िंदगी में ले आएगी।

और अब जाते जाते एक छोटी सी बात, वो बात ये कि हर बड़ा सपना छोटे छोटे अनुशासित कदमों से पूरा होता है। तो अगर आप हर रोज समय पर उठते हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, सीखना नहीं छोड़ते और हर दिन अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, तो सफलता एक दिन जरूर आपको मिलेगी, आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। तो इस टिप के साथ फिलहाल एक और प्यारा सा गाना आपके लिए, और फिर हम आपसे इजाजत लेंगे।

0: नमस्कार सुप्रभात कार्यक्रम आज सवेरे में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज और आज मेरा साथ दे रही हैं मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। नमस्कार शगुन।
1: नमस्कार फरहत एंड टू आवर लिसनर्स नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीवन।
0: कहते हैं जो जीत लेता है अपनी सुबह वो जीत लेता है अपना दिन, और जो जीत लेता है अपना दिन वो अपना भविष्य बना लेता है।
1: एंड आई थिंक फरहत फॉर अचीविंग सक्सेस सफलता आई थिंक टू डीज आर इम्पेरेटिव, डेडिकेशन एंड डिवोशन, एंड इफ यू वर्क

0: towards your goals tirelessly, there is no one or no obstacle greater than your own resolve and you can achieve success.
1: बिल्कुल, अगर आपको सफलता चाहिए जीवन में तो आपको किसी भी चीज से डरना नहीं है और आगे बढ़ते चले जाना है. तो आइए देश और दुनिया की ताजा खबरों के साथ कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस प्यार भरे नगमे के साथ.

0: मजरू सुल्तानपुरी के लिखे गीत को आवाज दी है किशोर कुमार ने, और बहुत ही पॉजिटिव गीत है ये.
1: Yes, well, yes, both the artists have worked phenomenally well and amazing. So yes, let's begin our program. Well, like always, like every day, we'll first begin with the news headlines, Metro City updates, and today we have not just one but three special days that we will talk about. So listeners, this is our way of telling you that be with us for the next roughly half an hour, and today it's 22nd of July. Let's start with the headlines first.
0: जी बिल्कुल, सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं मुख्य समाचारों से. सरकार संसद में नीट से सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार हो गया है. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की. मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है. वहीं नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है. इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं.
1: Indian Navy will commission INS Malwan, the second of the Mahi class anti-submarine warfare shallow water craft at Karwar in Karnataka today, marking another milestone in India's indigenous naval shipbuilding program. So built by Cochin Shipyard Limited in Kochi, Malwan has more than 80% indigenous content, reflecting India's growing self-reliance in warship design, construction and systems integration under the Atmanirbhar Bharat initiative. So the Mahi class ASW shallow water craft, they are designed to operate effectively in coastal and shallow waters, enhancing the Navy's anti-submarine warfare capabilities.
0: और एक बहुत ही अच्छी खबर है, झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर प्रतिबंधित नक्सली संगठन के कट्टर माओवादी अजय महतो की पत्नी अनीता किस्कू उर्फ बबीता महतो ने कल गिरिडीह पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया. आत्मसमर्पण करने पर उसे झारखंड सरकार की नई दिशा एक नई पहल पुनर्वास नीति के तहत 3 लाख रूपए की सहायता और अन्य पुनर्वास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी.
1: नाउ वी विल टेल यू अबाउट ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग. सो इंडिया विल होस्ट अ 3-डे मीटिंग ऑफ ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर्स इन चंडीगढ़. This begins today. It will bring together health ministers and senior health officials from BRICS member countries to deepen cooperation on health security, digital health, pandemic preparedness, and equitable access to quality healthcare. Well, we have a detailed report. Listen in.
2: The 16th BRICS Health Ministers meeting reflects India's commitment to advancing collective action on key global health priorities through the guiding theme of building for resilience, innovation, cooperation and sustainability. Addressing a press conference, Union Health Secretary Punya Salila Srivastava said that discussions during the ministerial meeting will focus on strengthening cooperation in areas such as health security, pandemic preparedness, digital health, innovation, access to affordable medicines, traditional complementary and integrative medicine, tuberculosis, healthy lifestyles, mental wellness and resilient health systems. The official program will commence with the senior officials meeting today, followed by the 16th BRICS Health Ministers meeting tomorrow, chaired by Union Health and Family Welfare Minister JP Nadda, during which health ministers will deliberate on key global and regional public health priorities and consider the adoption of the 16th BRICS Health Ministers declaration. The meeting will provide an important platform for advancing the health priorities of the Global South and promoting collective action towards achieving universal health coverage and the health related sustainable development goals. Soumya Sharan, Akashwani News, Delhi.
0: और एक ऐतिहासिक विधेयक पारित किया गया है. फ्रांस में संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है. इसके तहत स्कूल में विद्यार्थियों

0: मोबाइल फोन इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगाई गई है। इस फैसले से फ्रांस सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन जाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने संसद की मंजूरी को एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।
1: So listeners, the meritorious female students of Uttar Pradesh, they will be seen riding scooties and in a major initiative to boost female participation in higher education and then reduce dropouts, Uttar Pradesh government has decided to provide free scooty to meritorious female students of UP. And we have detailed report from our correspondent. Listen in.
2: Providing the details of the ambitious scheme, the Higher Education Minister of State, Yogendra Upadhyay, informed that eligible female students will be selected based on merit from the list comprising the top 5% of female graduates. Under the scheme, government will not only provide scooters, but also their insurance, registration, helmets, essential accessories and 4 liters of petrol. The income limit condition will be relaxed for disabled girl students, daughters of martyrs and daughters from destitute families. The state government states that this scheme will increase the participation of daughters in higher education, particularly by making it easier for female students from rural and remote areas to access college and universities. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
0: और श्रोताओं, चलिए अब खेल खबरों का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ है, मुकेश पल।
3: चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु का मुकाबला भारत की ही उन्नति हुड्डा से होगा। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पुरुष सिंगल्स के ही शुरुआती दौर में आज आयुष शेट्टी का सामना अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में MR अर्जुन और हरिहरन अम्स करुणन, मिक्स्ड डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे तथा तनीषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला भी चुनौती पेश करेंगे। इसके अलावा हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा की है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे।
0: चलिए अब अपने अगले सेगमेंट की ओर का रुख कर लेते हैं, जहां पे हम महानगरों की खबरों का हाल जानेंगे। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो शगुन, चेन्नई में सबसे पहले क्या है?
1: सो दिस पर्टिकुलर अपडेट दैट आई हैव, इट इज अबाउट द तमिलनाडु रीजनल ऑफिस ऑफ द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, व्हिच सेलिब्रेटेड इट्स 45th फाउंडेशन डे एट चेन्नई, एंड दिस हैपेंड यस्टरडे फरत। सो टू की पब्लिकेशंस ऑन इंडिकेटिव यूनिट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन एग्री एंड एलाइड सेक्टर 2026-27 and the annual performance booklet on 2025 and 2026, they were released on this occasion. So National Bank for Agriculture and Rural Development's impactful developmental interventions through the Fisheries Infrastructure Development Fund in Nagapattinam and Mayiladuthurai, they were showcased through an AV presentation there. Chief General Manager of the Tamil Nadu Regional Office, H. Manoj, he said that the organization had disbursements over 73,000 crore rupees during 2025-26 across agricultural credit, rural infrastructure, fisheries as well, farmer producer organization promotion and financial inclusion. So this was all about the foundation day, the 45th foundation day of National Bank for Agriculture and Rural Development.
0: और अब दिल्ली का रुख कर लेते हैं। दिल्ली सरकार जल्द ही पात्र लोगों को स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड जारी करेगी। इसकी घोषणा कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजस्व विभाग द्वारा आयोजित स्वामित्व योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के दौरान की। इस योजना के अंतर्गत व्यापक सर्वेक्षण, डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना और स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड जारी करने का कार्य किया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने कल सरायकाला खां नमो भारत स्टेशन पर निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य नेत्र स्वास्थ्य के विषय में जागरूकता बढ़ाना, इससे जुड़ी समस्याओं को जल्द से जल्द पता लगाना और नमो भारत यात्रियों के साथ साथ अन्य लोगों को निःशुल्क नेत्र जांच की सुविधा प्रदान करना था।
1: So Farhad, now let's focus our attention on Bengaluru.
0: जी.
1: Karnataka Health and Family Welfare Minister UT Khadar has urged the public not to panic over the detection of a few positive COVID-19 cases, and he said that such cases are expected during testing. So he was speaking to the reporters in Bengaluru yesterday. The minister, he actually said that the government and the health department, they are fully prepared to conduct screening at airports and other entry points as well. He also advised people, particularly those with low immunity, to remain cautious and then also take steps to improve their immunity, because always prevention is better than cure. राइट फरत, ओवर टू यू फ्रॉम मुंबई अपडेट्स। जी बिल्कुल,
0: और महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं। अब शिक्षा की बात की जाए, कृषि की बात की जाए, तो ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने नागपुर जिले के कटोल में एक सरकारी बागवान

0: महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है, जिससे प्रतिवर्ष 120 सीटें आवंटित होंगी। अकोला स्थित डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ से संबद्ध ये महाविद्यालय विदर्भ के 11 जिलों को लाभान्वित करेगा और बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण में अनुसंधान को बढ़ावा भी देगा।
1: हैदराबाद नाउ। तेलंगाना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सी सुदर्शन रेड्डी कंडक्टेड अ स्टेट वाइड वीडियो कॉन्फ्रेंस विद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स एंड की इलेक्टोरल अथॉरिटीज टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2026। सो जॉइंड बाय एडिशनल सीईओ डॉक्टर वसम वेंकटेश्वर रेड्डी एंड डेप्यूटी सीईओ जीएस चेरी, द सीईओ मैंडेटेड दैट ऑल डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस 90% कंप्लीशन टारगेट फॉर द इन्यूमरेशन प्रोसेस बाय द एंड ऑफ द वीक। दे हैव क्रॉस्ड 90% कंप्लीशन टारगेट। सो टू अचीव द टारगेट officials were instructed to expedite digitization, second, focus on lagging urban pockets, third, to ensure that VVIPs and VIPs they are fully included in the electoral rolls. The CEO also emphasized that field officials must not insist on physical forms if electors have already submitted ऑनलाइन एप्लीकेशंस। फरत, ओवर टू यू।
0: जी, अब पश्चिम बंगाल का रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग को चालू वित्त वर्ष के अंत तक लागू किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि 18 मई को कैबिनेट के फैसले के बाद गठित आयोग को अपनी रिपोर्ट देने में कम से कम 6 महीने लग सकते हैं। कोलकाता के विद्युत भवन में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार सिफारिशों को लागू करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने ये भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार लंबित महंगाई भत्ते यानी डीए का भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2015 से 2019 तक के बकाया डीए को भी जल्द जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए का अंतर धीरे धीरे कम किया जाएगा। श्रोताओं, अब चलिए महानगरों के मौसम का हाल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की। तो शगुन, आपको पता ही है, सुबह से ही मौसम घिरा हुआ है, बादल आ रखे हैं और बारिश मुझे लगता है थोड़ी ही देर में हो सकती है, बहुत तेज बारिश हो सकती है।
1: We hope for it now,
0: जी, बिल्कुल। और दिन भर ये बारिश जारी रहेगी, मौसम विभाग का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं मुंबई की बात की जाए तो वहां पर बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई के अलावा ठाणे और रायगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं कोलकाता में भी बारिश का दौर रहेगा। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है।
1: Chennai is expected to have thunderstorm accompanied with lightning. The minimum temperature was 26 degrees Celsius. Maximum temperature will be around 37 degrees Celsius in Chennai. If we talk about Bengaluru, it is expected to have generally cloudy sky and there is a possibility that it will rain. The minimum temperature was 21 degrees Celsius. Maximum will be around 30 degrees Celsius. Hyderabad again is expected to have a generally cloudy sky. With possibility of rain or thunderstorm or dust storm, the temperature, minimum temperature will be around 23 degrees Celsius and maximum will be around 33 degrees Celsius in Hyderabad.
0: और अब मौसम के बाद बात कर लेते हैं फ्रूट्स की, यानी कि फलों की। तो जी, तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी शगुन, फलों में आपको क्या चीज पसंद है?
1: I'll be a bit biased and I'll say mango.
0: Mango, तो चलिए आज आप ही के लिए हम लोग विश्व मैंगो दिवस मना लेते हैं। जी, दुनिया का कोई भी फल किसी देश की पहचान से उतनी गहराई से नहीं जुड़ा जितना आम भारत से जुड़ा हुआ है। और सभी की पसंद जो होता है वो आम होता है।
1: जी,
0: भारतीय सफेदा, अल्फांजो, केसरी, बिल्कुल। और लंगड़ा आम तो मुझे बहुत पसंद है। जी, तो भारतीय जीवन में आम उत्सव की तरह से ही जुड़ा हुआ है। संस्कृत ग्रंथों से लेकर मुगल बागों तक, कालिदास की कविताओं से लेकर अकबर के लाख बाग तक, और गांव के बगीचों से लेकर 5 सितारा होटलों की मेज तक, आम जो है वो भारतीय संस्कृति, स्वाद और स्मृतियों का एक हिस्सा है।
1: सो आई रिसेंटली अटेंडेड अ मैंगो फेस्टिवल एंड माय होल माउथ इज एक्चुअली फिल्ड विद सलाइवा। आई एम क्रेविंग मैंगो नाउ। सो फरत, नेशनल मैंगो डे सेलिब्रेट्स, एज यू ऑल्सो मेंशनड, इंडियाज रिच मैंगो हेरिटेज। एंड पर्टिकुलरली इफ वी टॉक अबाउट गोवा, नो मैंगो, नो अदर वेराइटी ऑफ मैंगो इज मोर चेरिश्ड देन द मानकुरद। So famous, it's actually famous for its irresistible aroma, of course, its rich sweetness and its unique flavor. Well, it's not just a fruit, it is a symbol of Goa's agricultural pride and the cultural identity as well. And well, we have a special feature on this particular variety. So now let's listen in.
2: Every summer, the arrival of Manukurad mango marks one of Goa's most awaited seasons. Popularly known as King of Goan Mangoes, Manukurad has earned a loyal following.

0: for its distinct taste, fragrance, and smooth texture. Recognizing its importance, the Goa government has stepped up efforts to encourage Manokurat cultivation. Financial assistance of up to 2 lakh rupees per hectare is provided for plantation in rocky terrain, while farmers in other areas receive support of 60,000 rupees per hectare. An additional subsidy is also available for digging planting pits, making orchard development more affordable. Chief Minister Dr. Pramod Sawant has said the government is working to address farm labor shortages and revive Khajan farming, paving the way for higher agricultural production. The National Mango Day, Goa celebrates not only the delicious Manokurat, but also the farmers whose dedication keeps this treasured legacy alive for generations to come. For Aasabere, Nikhil Upadhyay, Akashwani News, Padji.
1: और चलिए श्रोताओं, अब इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र कर लेते हैं। आप सभी को पता है कि देश का तिरंगा जब शान से लहराता है तो गर्व की अनुभूति होती है, जो भारतीय होने का एक एहसास दिलाती है। उसी तिरंगे झंडे के लिए 22 जुलाई यानी आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण भी है और ऐतिहासिक भी, क्योंकि आज ही के दिन पहली बार तिरंगे को अंगीकार किया गया था। 1947 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में संविधान सभा के सदस्यों की बैठक में तिरंगे को देश के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अंगीकार किया गया। इस बैठक में आजाद भारत के लिए झंडे का प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव पर गहन चर्चा हुई और फैसला लिया गया कि केसरिया, सफेद और हरे रंग वाले झंडे को ही कुछ बदलावों के साथ आजाद भारत का झंडा बनाया जाएगा और इसे डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने।
2: Day commemorates the evolution of the Tiranga and its role in inspiring India's freedom movement before becoming the official flag of independent India. So, Bhikaji Kama, Madam Bhikaji Kama unfurled the Indian flag at Stuttgart, Germany as well, making the first Indian flag hoisted on a foreign soil. And finally, on 15th August 1947, the Tiranga was first hoisted as the national flag of independent India.
1: और जब भी तिरंगे की बात होती है तो अपने आप जो आजादी का दिन है वो याद आ जाता है। तो क्यों ना ये जो गीत बज रहा है अंडर प्ले में, इसे सुन लेते हैं।

और बस हम इस पर यही कहना चाहेंगे कि केसरिया में शौर्य की आंच है, सफेद में शांति का प्रकाश है, हरे में खेत खलियान की आशा है, चक्र में समय का एहसास है।

0: सर उठा के लहराए जो गंगा में, वो मेरा तिरंगा मेरा अभिमान है। जय हिंद, जय जय भारत। और आइए श्रोताओं, अब आगे बढ़ते हैं और वर्ल्ड ब्रेन डे की बात करते हैं।
1: सो फरत, एक्चुअली वर्ल्ड ब्रेन डे, इट्स अबाउट स्प्रेडिंग अवेयरनेस ऑन हाउ टू कीप आवर ब्रेन हेल्थी, well of course, and preventing neurological disorders. And this year's theme, let's focus on that, it's brain health for all ages, no matter what, for all ages, and this is set by World Federation of Neurology.
0: बिल्कुल, और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए जो सबसे बड़ी गलतियां आजकल लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो गई हैं, वो है नींद पूरी ना लेना, स्ट्रेस, और बहुत ज्यादा जंक फूड का इस्तेमाल करना।
1: सो आई थिंक it if to prevent neurological disorders, yeah, meditation, stuff like yoga and eating fresh fruits and vegetables every day, that will definitely help you all.
0: Bilkul, aur bachche se mobile to bilkul le lijiye, kyunki ye bhi brain par bahut hi bura jo hai asar dalta hai,
1: leading cause of brain fog actually.
0: Kyunki hame brain ko bhi aaram dena behad zaruri hai, 24 ghante ye kaam karta hai, to agar aap soenge

0: रेस्ट लेंगे, अपनी बॉडी को रेस्ट देंगे, तो ब्रेन भी जो है आपका हेल्दी रहेगा।
1: सो लिसनर्स थिंक अबाउट योर ब्रेन, वर्क टायरलेसली फॉर 24 आवर्स।
0: आज से शुरू जो है आप कर दीजिए मेडिटेशन
1: जी।
0: और अब आगे बढ़ते हैं, 1981 की बात कर लेते हैं। आज ही के दिन भारत के पहले भूस्थिर उपग्रह एप्पल ने कार्य करना शुरू किया था।
1: इन 1933 एविएटर वाइली पोस बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू फ्लाई सोलो अराउंड द वर्ल्ड।
0: 1999 में आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक की कार्य योजना लागू हुई।
1: इन 1934 नोटोरियस अमेरिकन गैंगस्टर जॉन डिलिंगे वाज शॉट एंड किल्ड बाय फेडरल एजेंट्स आउटसाइड शिकागोस बायोग्राफ थिएटर।
0: और 2019 में श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया गया। तो ये तो थी इतिहास की बात, और अब आइए कुछ जानी मानी शख्सियतों को हम याद कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भारत के सामाजिक कार्यकर्ता संदीप पांडे की। वो देश के सबसे कम उम्र के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता रहे। संदीप पांडे देश के उपेक्षित तथा हाशिए पर जी रहे लोगों की दशा देखकर इतना द्रवित हुए कि उन्होंने उस वर्ग की बेहतरी के लिए काम करना निर्णय लिया। अपने इस इरादे को पूरा करने के लिए उन्होंने आशा परिवार नाम की एक संस्था खड़ी की और इसके माध्यम से देश के दलितों और अल्पसंख्यकों की पक्षधारता के लिए वो काम करने लगे।
1: वेल लेफ्टिनेंट इंदिरा लाल रॉय, वेल टुडे वी आर रिमेम्बरिंग हिम, इंडियाज फर्स्ट फ्लाइंग एस, अचीविंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी एयर कॉम्बैट विक्टोरीज एट अ वेरी यंग एज। सो हिज करेज, स्किल एंड सैक्रिफाइस दे कंटिन्यू टू इंस्पायर जनरेशंस। सो वी पे हम्बल होमेज टू दिस लेजेंडरी हीरो हु टच्ड द स्काइज विद अनपैरेलल्ड ब्रेवरी। ही अ रिमार्केबल यंग मैन हु सोर्ड इनटू द स्काइज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एज इंडियाज सोल फ्लाइंग एस।
0: बिल्कुल शगुन। और आज के दिन हमें भारतीय स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख नायकों में से एक यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त ने भी अलविदा कहा। इन्होंने कोलकाता उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की थी और साथ ही मजदूरों के हित के लिए सदैव कार्य करते रहे। यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त को 5 बार कोलकाता का मेयर चुना गया। इन्होंने एक अंग्रेज युवती नेली सेनगुप्त से विवाह किया था, जिसने देश को स्वाधीन कराने के लिए अपने पति के समान ही जेल की सजाएं भोगी।
1: Well, today, listeners, we are also remembering Telugu poet and writer Dasarathi Krishnamacharya. He held the titles Abhyuday Kavi and Kalla Prapurna. He was awarded the Sahitya Academy Award as well. So, he is popularly known as Dasarathi and he gained fame through his revolutionary poetry. His first book, Agnidhara, Flowing Fire, it was published in 1947. His other notable works, they include Punar Navam and Rudravina in 1950. So, Garib Gitalu, it is a Telugu translation actually of the poems of Urdu poet Mirza Abdul Asadullah Khan Ghalib. He also composed lyrics for numerous Telugu films. He wrote lyrics for many Telugu movies, with his debut being Vagdanam. Over the course of his career, he wrote lyrics for approximately 2,000 songs in the Telugu film industry. His notable works, they include Pooja in 1975.
0: भारत के प्रसिद्ध महिला चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता और पद्म भूषण प्राप्तकर्ता मुत्तु लक्ष्मी रेड्डी की भी आज पुण्यतिथि है। वो भारत की प्रथम महिला विधायक थी। उनके ऊपर स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी के विचारों का काफी प्रभाव था। इन्होंने समाज सेवा में महिलाओं और बच्चों के कल्याण की अनेक योजनाएं भी की शुरुआत की थी।
1: Today, listeners, we are also remembering C.V. Sridhar, the master storyteller who blended romance, emotion and music into timeless Indian cinema. One of the most iconic writer-directors, known for emotional storytelling, romantic themes as well, and melodious films, his movies redefined Tamil and Hindi cinema in the golden era. So in all his films, he had the perfect blend of stars, of melodrama and melodious songs. Film creators, film enthusiasts, this is the recipe for a good film. Perfect blend of stars, melodrama and melodious songs as well. Sridhar, his career spanned over 4 decades. He has always been lauded for understanding the pulse of the audience and then creating movies catering to the common man. So Sridhar, C.V. Sridhar was undoubtedly a prolific writer. His works, they include so many movies. And I was talking about blending so many emotions and romance and music into timeless Indian cinema, which continues to inspire us.
0: बिल्कुल। और आज भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार हिम्मत शाह का जन्मदिन है। उनके काम की विशिष्टता उसके ब्यूरो में रहा करती थी। बहुत मामूली सी समझने वाली बेजान मिट्टी उनके हाथ के संस्पर्श से जीवंत और जागरूक होती थी। हिम्मत शाह अपने रेखांकन रेखाओं से बनाते हैं, लेकिन अमूर्त किस्म की लगने वाली इन रेखांकनों से कई भाव उमड़ पड़ते हैं। और उनकी कलाकृतियों में कुछ कलाकृति कागज को सिगरेट से जलाकर बनाई गई है। और आइए अब हम

0: बात कर लेते हैं भारत में संगीत इतिहास के सर्वश्रेष्ठ गायकों में से एक मुकेश चंद्र माथुर की।
1: हाउ ट्रू।
0: जी, पेशे से एक इंजीनियर के घर पर पैदा होने वाले मुकेश के अंदर वो सलाहियत थी कि वो एक अच्छे गायक बनकर उभरे, और यही हुआ।
1: सो मुकेश's इंटरेस्ट इन द आर्ट्स वाज सीन वेरी अर्ली। एज अ चाइल्ड ही यूज्ड टू लिसन इन ऑन हिज सिस्टर व्हेन द म्यूजिक टीचर वुड कम टू टीच हिज सिस्टर, एंड एज ही ग्रू ओल्डर ही बिकेम कंप्लीटली मेस्मराइज्ड बाय द सॉन्ग्स ऑफ KL सेगल। ही यूज्ड टू स्पेंड a lot of time imitating him.
0: Bilkul shagun.

0: शुका आह अनुराग और दुल्हन में बतौर अभिनेता भी काम किया। केएल सहगल से मुतासिर मुकेश ने अपने शुरुआती दिनों में उन्हीं के अंदाज में गाने गाए। मुकेश का सफर 1941 से शुरू हो गया और एक गायक के रूप में 1945 में फिल्म पहली नजर में उन्होंने गाना गाया।
1: So well, you were telling that he has worked in other capacities as well, such as an actor, music director, and producer. Well, we know him as a playback singer, of course. And then after he finished his 10th standard, actually, he got a job working for the Delhi Department of Public Works. But even while working, his interest was in arts then also. And he used to experiment with recordings and worked hard to improve his singing while working as well.
0: तो शगुन, हमने उन्हीं के गानों की एक मेडली तैयार की है, तो क्यों ना अपने श्रोताओं को सुना दें।
1: श्योर।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का

0: आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवार में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का सामना उन्नति होटा से होगा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपिये में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत का औषधि उद्योग नॉर्थ मैसेडोनिया में दवाओं और चिकित्सक उपकरणों के संयुक्त उत्पादन में निवेश कर सकता है। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड चेन, नवीकरणीय ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और स्टार्टअप क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने नॉर्थ मैसेडोनिया को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी अवसंरचना और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी पहल से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने अगले वर्ष भारत में आयोजित होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स में भाग लेने को भी आमंत्रित किया। नॉर्थ मैसेडोनिया से शुभश्री की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पूजा।
0: भारत की मेजबानी में ब्रिक्स देशों की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। तीन दिन की इस बैठक में मुख्य रूप से स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, महामारी से निपटने की तैयारी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक सबकी पहुंच पर विचार विमर्श होगा।
2: यह बैठक स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख वैश्विक प्राथमिकताओं पर सामूहिक कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मंत्री स्तरीय बैठक में पारंपरिक और पूरक चिकित्सा, स्वस्थ जीवन शैली, मानसिक आरोग्य तथा सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आधिकारिक कार्यक्रम की शुरुआत आज वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक से होगी। इसके बाद कल केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय नौसेना आज कर्नाटक के कारवार में माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मालवण को बेड़े में शामिल करेगी। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह मुख्य अतिथि होंगे।
3: कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित INS मालवण आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार किया गया है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इसमें RBU 6000 रॉकेट और DRDO द्वारा विकसित टॉर्पेडोज की शक्ति है। जर्मनी और भारत द्वारा तैयार किए गए सोनार का उपयोग भी किया गया है। माहे श्रेणी के इस युद्धपोत तटीय और उथले समुद्र क्षेत्र में प्रभावी परिचालन के लिए बनाया गया है। इससे नौसेना की समुद्री सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी क्षमता और मजबूत होगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ieefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का फैसला किया है। उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाने और पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लागू करने के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी गई।
2: योजना के तहत सरकार न केवल स्कूटर बल्कि उसका बीमा, पंजीकरण, हेलमेट, आवश्यक सहायक उपकरण और 4 लीटर पेट्रोल भी मुहैया कराएगी। दिव्यांग छात्राओं, शहीदों की बेटियों और गरीब परिवारों की बेटियों के लिए आय सीमा की शर्त में छूट भी दी जाएगी। राज्य सरकार का कहना है कि ये योजना उच्च शिक्षा में बेटियों की भागीदारी बढ़ाएगी और खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों की छात्राओं के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक पहुँचना आसान बनाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पारित कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सदन में विपक्ष के हंगामे और विरोध के बीच यह विधेयक पारित हुआ।
3: UCC के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा। तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष पर मर्यादा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि सरकार सदन में नीट सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है,
4: पर मैं कहूंगा कांग्रेस और विपक्ष के साथियों से, हम संसद के पटल पर हर प्रकार के संवाद के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आपकी जो मर्यादाएं तोड़ने की परंपरा बनती जा रही है, जो अराजकतावती सोच आपके अंदर विकसित हो रहा है, निश्चित रूप से इससे देश कहीं न कहीं दुखी है और देश अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है।
1: भारत ने विश्व व्यापार में अपनी बढ़ती भूमिका पर बल देते हुए जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित, पारदर्शी और भेदभाव रहित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने वैश्विक व्यापार प्रणाली में भारत की भूमिका तथा व्यापार संधि, उदार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विकासशील देशों के बीच सहयोग से व्यापारिक संबंध मजबूत करने के प्रयासों पर बल दिया। वाणिज्य विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत समावेशी वैश्विक विकास में भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदार है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु का मुकाबला भारत की ही उन्नति हुड्डा से होगा। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पुरुष सिंगल्स के ही शुरुआती दौर में आज आयुष शेट्टी का सामना अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में MR अर्जुन और हरिहरन अम्स करुणन, मिक्स्ड डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे तथा तनीषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला भी चुनौती पेश करेंगे। इसके अलावा हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा की है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की जयंती पर उनका स्मरण किया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि समाज के प्रति उनकी सेवा और महाराष्ट्र के विकास में उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। फ्रांस की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक विधेयक पारित कर दिया है। संसद के दोनों सदनों में सांसदों ने इस विधेयक के समर्थन में वोट दिया। इसके तहत स्कूल में विद्यार्थियों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इस फैसले से फ्रांस सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2028 से जेनेरिक दवाओं के आयात पर भारी शुल्क लगाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य अमेरिका में इन दवाओं का उत्पादन बढ़ाना है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि 1 अगस्त से अमरीका

0: अमेरिका में आयात होने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर 2 साल तक कोई शुल्क नहीं लगेगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 2-3 दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नास।
1: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष के धरने, छात्रों के विरोध प्रदर्शन और पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान संबंधी समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। नवभारत टाइम्स का शीर्ष समाचार है, जंतर मंतर पर लौटी भीड़, पीएम के घर के बाहर से विपक्ष के नेता हटाए। पत्र ने प्रधानमंत्री मोदी के कथन को भी सुर्खियों में जगह दी है, पेपर लीक के दोषियों को नहीं बख्शा। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री मोदी ने नीट पेपर लीक को बताया घोर पाप। राजस्थान पत्रिका, लोकसत्य, दैनिक ट्रिब्यून और अमर उजाला ने धरना दे रहे विपक्षी नेताओं की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी हैं। जनसत्ता और दैनिक भास्कर ने सिक्किम में एक निर्माणाधीन सुरंग ढहने से हुई मजदूरों की मौत के समाचार को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। पत्रों ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मजदूरों के आश्रितों को अनुग्रह राशि की घोषणा का उल्लेख करते हुए सुरंग के प्रवेश द्वार और राहत अभियान का चित्र प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने पॉजिटिव न्यूज स्तंभ के अंतर्गत राजस्थान के आंधी गांव का उल्लेख किया है, जिसे बायोटेक वैज्ञानिक डॉक्टर सुदीप्ति अरोड़ा ने 100% कचरा रहित और आत्मनिर्भर बना दिया है। पंजाब केसरी ने कमर्शियल जहाज पर हुए रूसी हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के बाद रूसी राजनयिक को तलब किए जाने का समाचार सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर पर आधारित संपादकीयों को शीर्षक दिया है, सुरक्षा की फिक्र। पत्र का कहना है कि भारत से हर साल बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए विदेश जाते हैं और वहां से विदेशी मुद्रा यहां भेजते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती मिलती है। मगर सवाल ये है कि विदेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है।
0: और लीजिए अंत में सुनिए मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की 3री बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवर में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज PV सिंधु का मुकाबला होगा उन्नति हुड्डा से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कॉल्स फॉर सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक एंगेजमेंट बिटवीन इंडिया एंड नॉर्थ मैसेडोनिया। अर्जेस बिजनेसेस फ्रॉम बोथ कंट्रीज टू मूव बियॉन्ड ट्रेड एंड बिल्ड लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स। India to host 3-day meeting of BRICS health ministers in Chandigarh beginning today. Indian Navy to commission indigenous anti-submarine warfare shallow water craft INS Malwan at Karwar in Karnataka today. Uttar Pradesh cabinet approves scheme to provide free scooty to meritorious female students of the state. India reaffirms its commitment to rule-based multilateral trading system at WTO Trade Policy Review in Geneva, and PV Sindhu to take on compatriot Unnati Huda in China Open Badminton Tournament today. And now the news in detail. President Drobdi Murmu has called for expanding India-North Macedonia economic ties, urging businesses from both countries to move beyond trade and forge long-term partnerships based on investment, technology,

0: के दरमियान इक्तसादी ताल्लुकात को वसत देने के लिए कहा है। उन्होंने दोनों मुल्कों के ताजिरों से कहा है कि वो तिजारत के अलावा भी सरगर्मियां जारी रखें और सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, नीज इख्तिरा पर मबनी तवील मुद्दती शराकत दारी कायम करें। इस गोबजे के मकाम पर भारत शिमाली मकदूनिया तिजारती फोरम से खिताब करते हुए सदर मुर्मू ने कहा कि उनके दौरे से, जो किसी भारतीय सदर का शिमाली मकदूनिया का पहला दौरा है, इन ताल्लुकात को मुस्तकम करने के भारत के मजबूत इरादे की अक्कासी होती है। सदर मुर्मू ने शिमाली मकदूनिया को डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे में भी भारत के साथ शराकत दारी कायम करने के लिए मदऊ किया, जिससे माली शमूलियत को फ़रोग देने में भारत के UPI प्लेटफॉर्म की कामयाबी का अंदाज़ा होता है।
1: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने IT, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
0: शिमाली मकदूनिया के सदर जमहूरिया के दौरे की खबरें देने वाली हमारी नमनिगार की एक रिपोर्ट।
2: सदर मुर्मू ने कहा कि भारत की दवासाजी की सनद शिमाली मकदूनिया में सरमायाकारी के लिए तैयार है। यह सरमायाकारी वसीतर बलकान और यूरोपीय मार्केट्स के लिए दवाएं और तिब्बी आलात मिलकर तैयार करने के लिए की जाएगी। उन्होंने खुराक की डिब्बाबंदी, गोल्डन चेन लॉजिस्टिक, बार बार इस्तेमाल होने वाली तवानाई, मस्नूई जहानत, साइबर सिक्योरिटी और स्टार्टअप इको निज़ाम के शोबों में शराकत दारी की भी हौसला अफजाई की। सदर जमहूरिया ने शिमाली मकदूनिया को दावत दी कि वो बैनुल अक्वामी समशी इत्तेहाद, कुदरती आफात से मुताबिकत रखने वाले बुनियादी ढांचे और आलमी बायो ईंधन इत्तेहाद जैसे मुश्तरका इकदामात में शिरकत करें। उन्होंने आलमी ऑडियल विजल और तफरीही समिट वेव्स में शिरकत की भी दावत दी, जो भारत में अगले साल मुनक्किद होगी। शिमाली मकदूनिया से सुबह श्री की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: ब्रिक्स मुल्कों के वज़राए सेहत की 3 रोज़ा मीटिंग आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। इसका मकसद सभी के लिए सेहत की सहूलियात, डिजिटल हेल्थ, वबाई बीमारियों से निपटने की तैयारी और मयारी हिफ्ज़ान सेहत तक मुसावियाना रसाई दस्तयाब कराना है। इस मीटिंग में ब्रिक्स मेंबर मुल्कों के वज़राए सेहत के साथ साथ महकमे सेहत के आला ओहदेदार शिरकत करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: ब्रिक्स वज़राए सेहत की 16वीं मीटिंग मजबूती, इख्तिरा, बाहमी तआवुन और पायदारी के लिए तामीर थीम के जरिए अहम आलमी सेहत तरजीहात के सिलसिले में मुश्तरका इकदाम को आगे बढ़ाने के तई भारत के अज़्म की अक्कासी करती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सेहत की मरकजी सेक्रेटरी पूनिया सलीला श्रीवास्तव ने बताया कि ये वजारती मीटिंग हेल्थ सिक्योरिटी, वबाई बीमारियों से निमटने की तैयारी, डिजिटल हेल्थ, इख्तिरा, सस्ती दवाओं की फराहमी और तिब्बी निज़ाम जैसे शोबों में बाहमी तआवुन को मजबूत बनाने पर मरकूज होगी। आज आला ओहदेदारों की मीटिंग के साथ ही बाज़ाब्ता प्रोग्राम का आगाज होगा, जिसके बाद कल सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर JP नड्डा की सदारत में ब्रिक्स वज़राए सेहत की 16वीं मीटिंग मुनक़िद होगी। इस मीटिंग में वज़रा अवामी सेहत से मुतालिक अहम आलमी और इलाकाई तरजीहात पर तबादले ख्याल करेंगे। दिल्ली से सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: भारतीय बहरिया INS मालवान को अपने कामकाज में शामिल करेगी। ये माहे तर्ज के आबदोज शिकन जंगी जहाज की दूसरी शक्ल है, जो गहरे पानी में अपनी कारकर्दगी अंजाम देता है। ये तकरीब आज कर्नाटक के कारवार इलाके में मुनक़िद होगी। INS मालवान को कामकाज में शामिल किया जाना बहरी जहाज़ों को भारत में ही तैयार किए जाने वाले प्रोग्राम के तहत एक अहम कदम है। इस तकरीब की सदारत फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल AP सिंह करेंगे, जिसमें बहरिया के दीगर सरकर्दा अफसरान भी शिरकत करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने आला तालीम में खवातीन की शिरकत की हौसला अफजाई और खवातीन के तालीमी सिलसिले को मुनक़दा करने के वाकयात में कमी लाने के लिए एक बड़ी पहल के तौर पर रियासत की होनहार तालिबात को मुफ्त स्कूटी फराहम करने का फैसला किया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में काबीना मीटिंग में रानी लक्ष्मी स्कूटी योजना पर अमल दरामद से मुतालिक रहनुमा खतूत की मंजूरी दी गई। तफसील हमारे नामा निगार से।
4: रियासत के आला तालीम के वजीर योगेंद्र उपाध्याय ने बताया है कि ग्रेजुएट लड़कियों में से शुरू में सरकर्दा 5% तालिबात की फहरिस्त तैयार की जाएगी। इसके बाद इनमें से तालिबात को उनकी काबिलियत की बुनियाद पर मुंतखब किया जाएगा। इस सरकारी स्कीम के तहत तालिबात को न सिर्फ स्कूटी फराहम की जाएगी बल्कि उन्हें बीमा, रजिस्ट्रेशन, हेलमेट, लाजमी मुतालिका सामान और 4 लीटर पेट्रोल भी फराहम किया जाएगा। माजूर तालिबात शहीद फौजियों और बेघर अफराद की बेटियों के लिए आमदनी की हद की शराइत में रियायत दी जाएगी। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
0: भारत ने उसूलों पर मबनी शफाफ और किसी तरह की तफरीक से पाक कसीर मुल्की तजारती निजाम के तहत अपने अजम को दोहराया है। भारत ने अपनी इस राय का इजहार आलमी तजारती तंजीम WTO में तजारती पॉलिसी के अपने 8वें जायजे के दौरान किया, जिससे आलमी तजारत में मुल्क के बढ़ते हुए रोल का अंदाजा होता है। तजारत के सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने आलमी तजारती निजाम के साथ भारत की सरगर्मियों और तजारती माहदों का एक वजीतर नेटवर्क कायम करके तजारती ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने की कोशिशों पर जोर दिया। उन्होंने नर्म रवि पर मबनी गैर मुल्की रास सरमायाकारी के निजाम और तरक्की पजीर मुल्कों के माबेन तआवुन की लगातार हिमायत पर भी जोर दिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में तिजारत के महकमे ने कहा कि भारत सबकी शमूलियत वाली आलमी तरक्की को आगे बढ़ाने में एक काबिल एतबार और काबिल इनेसार शराकतदार है। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नीट इम्तिहान का पर्चा लीक होने के हालिया केस में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मुल्क के नौजवानों के मफादात का तहफ्फुज करने का अहद किया हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए कई इकदाम कर रही है। जनाब मोदी ने कल पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA की पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग से खिताब करते हुए ये बात कही, जिसे अब मंगल मिलन भी कहा जाता है। इधर सरकार ने कहा है कि वो नीट इम्तिहान का पर्चा लीक होने के केस और दीगर मुतालिका मामलात पर पार्लियामेंट में बहस कराने के लिए तैयार है। कल शाम नई दिल्ली में नामनिगारों से बात करते हुए मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में अपोजिशन के रहनुमा राहुल गांधी पर इल्जाम लगाया कि वो सरकार की यकीन दहानी के बावजूद नीट से वाबस्ता मामलात पर बहस कराने के अपने पहले के मुतालबे से पीछे हट गए हैं।
5: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: इससे पहले दिन में कांग्रेस सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के लीडरों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी के दीगर अरकान के साथ नीट मामले पर बहस का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। बाद में दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के सरकर्दा लीडरों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, नीज समाजवादी पार्टी के सरबरा अखिलेश यादव समेत अपोजिशन के सभी लीडरों को रिहा कर दिया, जिन्हें लोक कल्याण मार्ग के नजदीक एहतजाज करने पर हिरासत में लिया गया था। इधर दिल्ली पुलिस ने एक मुबैना वाकये में मौत होने के बारे में सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली अफवाहों को मुस्तरद कर दिया है। एक बयान में पुलिस ने कहा है कि किसी की भी मौत नहीं हुई है। पुलिस ने लोगों पर जोर दिया है कि वो गैर मुसद्दका जानकारी पर न तो भरोसा करें और न ही इसे शेयर करें। दिल्ली पुलिस ने आवाम को सलाह दी है कि वो दुरुस्त और मुसद्दका जानकारी के लिए सिर्फ सरकारी वसीलों पर भरोसा करें। मरकजी वजीर सेहत JP नड्डा कल नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल गए और नीट UG इम्तिहान का पर्चा मुबैन तौर पर लीक होने के मामले पर कौमी राजधानी में एहतजाज के दौरान जख्मी होने वालों की सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर मौसूफ ने अस्पताल में डॉक्टरों के साथ मीटिंग भी की। जनाब नड्डा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल भी गए और वहां दाखिल सभी जख्मी मुजाहिरीन से मुलाकात की। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस और लोकसभा में अपोजिशन की लीडर राहुल गांधी पर इल्जाम लगाया है कि वो पार्लियामेंट के मानसून इजलास के दौरान रखना पैदा करने के लिए तलबा को सियासी आलायकार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब प्रधान ने कहा कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को नजरअंदाज करते हुए जनाब राहुल गांधी और कांग्रेस के दीगर रहनुमाओं ने वजीर आजम की रिहायशगाह के बाहर एहतजाज किया, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जनाब धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार ने नीट मुआहदे पर जामे बहस कराने के लिए अपनी आमादगी से मुत्तला कर दिया था, इसके बावजूद कांग्रेस ने जमहूरी बहस मुबाहसे के बजाय सियासी तमाशा करने का रास्ता इख्तियार किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस का मकसद तलबा के लिए कोई हल तलाश करना नहीं बल्कि सियासी सुर्खियों में आने के लिए रखना डालना था। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरगर्म कारकुन सोनम वांगचुंग को कौमी राजधानी के सदर सफदरजंग

0: अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मुंतकिल किए जाने का हुक्म दिया है। अदालत ने वांगचुक की अहलिया गीतांजलि अंगमो की दाखिल करदा दरखास्त की समाअत करते हुए यह हुक्म जारी किया है। मरकजी सरकार की तरफ से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल मुंतकिल करने पर सरकार को कोई एतराज नहीं है। फ्रांस की पार्लियामेंट ने एक खसूसी बिल को मंजूरी दी है जिसके तहत 15 साल तक की उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करने से बाज रखा गया है। फ्रांस की पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के कानून साज अरकान ने कल इस बिल के हक में वोट दिया। चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के जुमरे में पीवी सिंधु का मुकाबला अपनी हमवतन खिलाड़ी उन्नति हुडा से होगा, जबकि आयुष शेट्टी का सामना अलवी फरहान से होगा। एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन की मर्दों की डबल्स जोड़ी रोहन कपूर और रुत्विका शिवानी गद्दे, नीज तानिशा क्रिस्टो और ध्रुव कपिला की मिक्स डबल्स जोड़ी आज अपने अपने मैच खेलेंगी। इधर एचएस प्रणॉय पहले राउंड में ही मलेशिया के लियोन जुंग हाउ से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। खवातीन के सिंगल्स में देविका सिहाग थाईलैंड की खिलाड़ी बुसानन ओंगबाम रुंगफन से हार गई है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात की शेष सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। नीट पेपर लीक मामले के कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने अपने सफ़े अव्वल पर नुमाया किया है। रोजनामा प्रताप ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के तीन मुल्कों के सरकारी दौरे से मुतालिक खबर को अपने पहले सफ़े पर अहमियत के साथ शाये किया है। अखबार ने सदर जमहूरिया के इस बयान को नुमाया किया है कि इक्तसादी तआवुन भारत और शिमाली मकदूनिया के दो तरफा ताल्लुकात की इंतहाई अहम बुनियाद है। वजारत खारजा ने भारत में रूस के सिफारत खाने के नाजिमुल उमूर को तलब करके यूक्रेन में तिजारती जहाज पर हमले में चार भारतीय मल्लाहों की मौत पर एहतजाज दर्ज कराया। इस खबर को प्रताप समेत कई अखबारात ने अपने पहले सफ़े पर पेश किया है। इसके अलावा आज के अखबारात की चंद अहम बैन अलावामी खबरों की सुर्खियां इस तरह हैं। हूसियों के बहरी नाकाबंदी किए जाने पर सख्त जवाब दिया जाएगा, सऊदी अरब का इंतबाह।
0: और आखिर में खास खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत और शिमाली मकदूनिया के दरमियान इकतसादी राब्तों में नुमाया तोसी की ज़रूरत उजागर की है और दोनों मुल्कों के कारोबारी इदारों पर जोर दिया है कि वो तिजारत से आगे बढ़कर तवील मुद्दती साझेदारी कायम करें। ब्रिक्स मुल्कों के वज़राए सेहत की तीन रोज़ा मीटिंग आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। भारतीय बहरिया आज कर्नाटक में कारवार के मकाम पर मुल्क में ही बनाए गए आबदोज शिकन जंगी बहरी जहाज INS मालवान को अपने बेड़े में शामिल करेगी। उत्तर प्रदेश काबीना ने रियासत में अच्छी तालीमी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली लड़कियों को मुफ्त स्कूटी फराहम करने की स्कीम को मंजूरी दे दी है। भारत ने जिनेवा में WTO के तिजारती पॉलिसी जायजे में जाब्तों पर मबनी कसीर रुखी तिजारती निज़ाम के तई अपने अहद का इरादा किया है। और आज चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु का मुकाबला अपनी वतन खिलाड़ी उन्नति हुडा से होगा। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।

0: 8:45 और ठीक 57 सेकेंड आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 MHz पर, और ये है म्यूजिकल दिल लगी। म्यूजिकल दिल लगी यानी बहुत सारी बातें और बहुत सारा संगीत जिसे आप फुर्सत में सुनते हैं, क्योंकि आप इस समय ड्राइव कर रहे हैं या रास्ते में हैं या फिर ऑफिस के लिए निकल चुके हैं और सारी भागदौड़ के बाद अब शांति से सुकून से कुछ देर बैठे हैं ऑफिस से, ऑफिस पहुंचने से पहले तो, या आप ऑफिस भेज चुके हैं तो फिर एक चाय का कप आपके हाथ में है और उस चाय के कप के साथ साथ आप गानों का आनंद लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बस इसीलिए तो म्यूजिकल दिल लगी है आपके लिए। वैसे अक्सर ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि हमारा दिन तभी अच्छा होगा जब सब कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक हो, लेकिन जानते हैं सच्चाई ये है कि हर दिन अच्छा तब होता है जब परिस्थितियां कैसे भी हों लेकिन हमारा नजरिया सकारात्मक हो। बस इसी बात को आप अगर सोच के रखेंगे तो हर दिन खुशनुमा होगा, खूबसूरत होगा और आप उसकी शुरुआत बहुत अच्छी तरह से कर सकेंगे। जैसे ये प्यारा सा गाना, इससे शुरुआत कर रहे हैं हम। मैं हूँ पूनम आपके साथ और स्वागत कर रही हूँ आपका दिल से।
1: दीवाना।
2: एक दीवाना शहर में।
1: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।

0: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
1: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
0: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
1: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
0: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की

0: जी हाँ, तो बात हो रही थी एक शानदार शुरुआत की, और उस शुरुआत में एक सकारात्मक सोच बहुत जरूरी है। उसे बनाए रखने के लिए ना कई बार हम बहुत मुश्किल सा एक चैलेंज भी ले सकते हैं। मुश्किल सा चैलेंज इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि कई बार ऐसे काम होते हैं ना हमारे पास जो बहुत मुश्किल लगते हैं। आप अपने आप को सकारात्मक बनाए रखने के लिए आप ये कर सकते हैं कि वो जो काम आपको बहुत मुश्किल लगता है उसे आप दिन की शुरुआत में ही पूरा कर लीजिए। अगर कर लेंगे तो पूरा दिन हल्का लगेगा, आसान महसूस होगा और आप एक्सट्रीमली पॉजिटिव रहेंगे ही रहेंगे। तो ये एक छोटी सी बात है जो आपको याद दिलाती है कि आप कोई भी चैलेंज ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक शुरुआत की देर होती है। जैसे सूरज हर रोज चैलेंज लेता है कि उसे आना ही है, ये शोर मचाए बिना कि आज बादल होंगे या धूप होगी या ज़्यादा रोशनी देनी पड़ेगी या कम देनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं। उसे आना है तो आना है, चाहे रास्ते में कितनी भी चुनौतियाँ क्यों ना हो। ऐसे ही हम जब कोई भी चैलेंज ले लेते हैं तो फिर सकारात्मकता अपने आप साथ रहती है, चाहे कितने ही बड़े चैलेंजेस क्यों ना आ जाएं।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,

0: जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

0: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं पर अब मुश्किल चुप रहना है।
1: जी हाँ, तो आज आपको भी जो कुछ कहना है, जिससे कहना है, कह ही डालिए ना, क्यों इंतजार कर रहे हैं। वैसे गाना बड़ा प्यारा था और मेरे साथ साथ इंदु को भी बहुत पसंद आया। इंदु आ गई हैं स्टूडियो में लेकर म्यूजिकल जिंदगी का अगला हिस्सा, लेकिन उससे पहले आप सुनेंगे समाचार, यानी जानेंगे देश और दुनिया का हाल। तो फिलहाल पूनम को दीजिए इजाजत, पर आप कहीं नहीं जाएंगे, समाचार सुनेंगे। प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ऐसे ही FM गोल्ड को सुनते रहिएगा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपिये में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत का औषधि उद्योग नॉर्थ मैसेडोनिया में दवाओं और चिकित्सक उपकरणों के संयुक्त उत्पादन में निवेश कर सकता है। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड चेन, नवीकरणीय ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और स्टार्टअप क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने नॉर्थ मैसेडोनिया को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी अवसंरचना और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी पहल से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने अगले वर्ष भारत में आयोजित होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स में भाग लेने को भी आमंत्रित किया। नॉर्थ मैसेडोनिया से शुभश्री की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पूजा।
0: भारत की मेजबानी में ब्रिक्स देशों की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। 3 दिन की इस बैठक में मुख्य रूप से स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, महामारी से निपटने की तैयारी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक सबकी पहुंच पर विचार विमर्श होगा।
2: यह बैठक स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख वैश्विक प्राथमिकताओं पर सामूहिक कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मंत्री स्तरीय बैठक में पारंपरिक और पूरक चिकित्सा, स्वस्थ जीवन शैली, मानसिक आरोग्य तथा सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आधिकारिक कार्यक्रम की शुरुआत आज वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक से होगी। इसके बाद कल केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: भारत ने विश्व व्यापार में अपनी बढ़ती भूमिका पर बल देते हुए जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित, पारदर्शी और भेदभाव रहित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने वैश्विक व्यापार प्रणाली में भारत की भूमिका तथा व्यापार संधि, उदार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विकासशील देशों के बीच सहयोग से व्यापारिक संबंध मजबूत करने के प्रयासों पर बल दिया। वाणिज्य विभाग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत समावेशी वैश्विक विकास में भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदार है। भारतीय नौसेना आज कर्नाटक के कारवार में माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मालवन को बेड़े में शामिल करेगी। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह मुख्य अतिथि रहेंगे। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित INS मालवन में 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। माहे श्रेणी के ये युद्धपोत तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में प्रभावी परिचालन के लिए बनाए गए हैं। इनसे नौसेना की समुद्री सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी क्षमता और सुदृढ़ होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का फैसला किया है। उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाने और पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लागू करने के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी गई। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में PV सिंधु का मुकाबला भारत की उन्नति हुडा से होगा। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पुरुष सिंगल्स के ही शुरुआती दौर में आज आयुष शेट्टी का सामना अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन, मिक्स्ड डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे तथा तनीषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला भी अपनी चुनौती पेश करेंगे। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2-3 दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। President Draupadi Murmu has called for expanding India-North Macedonia economic ties, urging businesses from both countries to move beyond trade and forge long-term partnerships based on investment, technology and innovation. Addressing the India-North Macedonia Business Forum in Skopje, President Murmu said her visit, the first ever by an Indian president to North Macedonia, reflects India's strong commitment to strengthening relations. President Murmu also invited North Macedonia to collaborate with India on digital public infrastructure, highlighting the success of India's UPI platform in promoting financial inclusion.
2: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने IT, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
1: Concluding her address, President Murmu urged businesses, investment agencies and industry bodies of both countries to build enduring partnerships through technology transfer, joint ventures and local value creation. India will host a 3-day meeting of BRICS health ministers in Chandigarh beginning today. It will bring together health ministers and senior health officials from BRICS member countries to deepen cooperation on health security, digital health, pandemic preparedness and equitable access to quality health care. Union Health Secretary Punya Salila Srivastav told media persons that the meeting reflects India's commitment to advancing collective action on key global health priorities through the guiding theme of building resilience, innovation, cooperation and sustainability. She emphasized that discussions during the ministerial meeting will focus on strengthening cooperation in areas such as health security, pandemic preparedness, innovation,

और घर आ गए ये बादल जो रहेंगे मौसम विभाग के अनुसार 24 जुलाई तक। मौसम पे बादल मेहरबान, बारिश अच्छी तो लगती है। अब चाहे कितनी भी दुविधा हो, जाने से पहले, घर से निकलने से पहले हम बड़ी तैयारी करें, छाता रखें या फिर और भी जो चीज़ें हमारी ज़रूरत की हैं वो सब हमारे पास होनी चाहिए। लेकिन फिर भी बारिश बहुत सारी चीज़ों को इनवाइट करती है, जैसे कि कुछ अच्छा लगता है, जैसे कि कुछ याद आता है। लेकिन हम आपको रोकने वाले नहीं हैं, सुनिए ये गाना।

जो चीज रुकती नहीं उसी को कहते हैं गोल, और गोल होके ये दुनिया बड़ी खूबसूरत सी नजर आती है। कम से कम खेलों से जुड़ी हुई इस बात को तो हम मान ही सकते हैं। गेंद गोल है, यानी कि कुछ भी तय नहीं, कुछ भी हो सकता है और कहीं से भी कुछ भी शुरू हो सकता है। गोल आकार ने खेलों को नहीं बल्कि पूरी इंसानी सभ्यता को एक स्पीड दी है, एक असीम संभावनाएं दी हैं जिसमें बहुत सारी चीजें हैं और उसके बाद हमें उम्मीद भी जगाती है। तो गोल शेप ने बताया कि टफ सवालों का समाधान कई बार बड़ा ही सिंपल सा होता है। एनीवे, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, मेरे पास बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आई एम सो लकी कि इतने सारे लोग हैं हमें सुनने के लिए। यह है म्यूजिकल दिल्ली, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पे।

0: सिर्फ आंसू है, उनमें सिर्फ दर्द की रंज की बातें हैं और फरियादें हैं। मेरा अब कोई नहीं, मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं। मैं हूँ।
1: वैसे कहते हैं कि लाइफ में एक दिल्ली वाला दोस्त होना बड़े लक की बात होती है, तो फिर ये दोस्त तो हमेशा हाजिर हो ही जाता है। म्यूजिकल दिल्ली की लेकर के आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे बातें हम वही करते हैं जो अक्सर आप सोच रहे होते हैं और सोचते हैं कि भाई ऐसा हो तो कैसा हो और अगर ऐसा हो तो फिर कैसा हो। लेकिन हम आपको बताते हैं कि बस आप हैं, मैं हूँ और ये गाना है और ये पल है, इसी को एंजॉय कीजिए।

लेकिन कुछ ऐसे भी पल होते हैं जो जाने वाले नहीं लगते, वो होते हैं सोशल मीडिया पे जब हमें इसकी आदत लग जाती है। 9:26 हो चुके हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और जहाँ तक रही बात आदत की, तो फिर हम आपको बताएं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम बस देखते चले जाते हैं, रुकते नहीं हैं। और इसलिए नहीं रुकते हैं क्योंकि वो सब की सब चीज़ें जो सोशल मीडिया पे जिसको हम स्क्रोलिंग करते रहते हैं, वो इस तरह से डिज़ाइन की जाती हैं कि हमें अच्छी लगे, हमें स्क्रीन के साथ, हम उसके साथ जुड़े रहें। और यही वजह है कि उस पल का हमें पता नहीं चलता और स्क्रोल होता चला जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें याद दिलाए, तब जाके उस बात का पता चलेगा। तो अगली बार सोशल मीडिया पे जब हम बहुत ज़्यादा सोशल हो जाएं, या फिर हम किसी को बहुत ज़्यादा सोशल होता हुआ देखें, तो हम ये बात शायद उनके साथ शेयर कर सकते हैं, है ना। ये है म्यूजिकल दिल्ली, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पे, और बातें यही वाली जो मैंने अभी आपको बताई, कुछ आदतें कुछ बातें। लेकिन फिलहाल जब ये मौसम ऐसा होता है तो हम बड़ी सारी चीज़ें और दरकिनार कर देते हैं और यही सोचते हैं कि चलो कुछ और

ये सब तो ठीक है, लेकिन चाहत और जरूरत दोनों अलग अलग होती हैं, ये बात तो आप मानेंगे ही। सुविधा और सुर्ख में देखिए बहुत फर्क होता है। सुविधा वो है जिसके लिए हम घर से निकल पड़ते हैं, चाहे कैसा भी मौसम हो, और उसे कुछ कुछ कहते हुए भी। और सुख यही है कि हम और आप बातें कर रहे हैं, इससे बड़ा सुख भला और क्या हो सकता है। वैसे कहानियां तो देखिए बहुत सारी हैं हम सबके पास, लेकिन पहले कहते हैं कि कहानियां कम होती थीं और उसका जो असर था वो थोड़ा सा ज्यादा था, लेकिन अब कहानी इतनी ज्यादा है कि असर बेअसर हो रहा है। दिल्ली, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पे म्यूजिकल दिल्ली है ये, और कहानी हर पल यूं ही बनती और बिगड़ती रहती है। हर बात में हमें कई बार ऐसा लगता है कि टू मच हो गया है, हर चाहत बहुत ज्यादा लगती है। इस बीच में उम्मीदें हैं, शोर है, नाम है, दौलत है, सब कुछ हमें चाहिए, लेकिन टू मच। तो फिर इस टू मच को थोड़ा सा कट करना पड़ेगा ताकि थोड़ा सा आराम मिले। कम से कम हमें ऐसा लगे कि भाई हम थोड़े में खुश रह सकते हैं और टू मच को छोड़ सकते हैं, और उसके बाद फिर जिंदगी कैसी लगती है ये, उसके लिए थोड़ी सी समझ और थोड़ी सी हमारी बात आपके साथ बनी रहेगी।

0: ये एक मैसेज है कि जो है वो बस अभी यही है. मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू. सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी. ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए. नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए.
1: मैं रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने.
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है.

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
5: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
4: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
5: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
4: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
6: क्या हुआ?
7: हाय, गम का फसाना बन गया। अच्छा
6: अच्छा जी,
7: एक बहाना बन गया। अच्छा
6: अच्छा

0: अच्छा।
1: तो इस बात पे हम भी कहेंगे अच्छा जी, बिना प्यार की भी दिल धड़कता है और इस धड़कते दिल में किसी को देखकर दिल की धड़कने अगर थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएं तो फिर राहत दीजिए इस दिल को और मुस्कुराइए, मुस्कुराइए कि आप ऐसे देश में रहते हैं जहां पे आपको आम खाने को मिलते हैं। मुस्कुराने की बड़ी सारी वजह हैं, तो एक वजह यह भी है, नेशनल मैंगो डे है आज और देश भर में आम के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व को सेलिब्रेट किया जा रहा है। जहां भी आप रहते हैं अगर आज आपके आसपास आम को लेकर के कुछ खास हो रहा है तो फिर जाइए, देख के आइए। और अगर गोवा में सुन रहे हैं तो गोवा में जश्न है, गोवा में अपने स्वाद और खुशबू के लिए मशहूर है वहां का मकुरद आम जो कि सम्मानित किया जा रहा है। और इसके अलावा हर शहर में आम को लेकर के कुछ न कुछ तो कहीं ना कहीं हो ही रहा है। वैसे आम पे बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल तो ये गीत है आपके लिए।

फिर एक बात और है आपके लिए। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसका उद्देश्य देश के 1 करोड़ घरों को उनकी छत पे सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी देना और हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है। आपने अभी तक ये किया या नहीं? अगर नहीं किया तो फिर शुरू हो जाइए। यह है म्यूजिकल दिल्ली, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहां पे आपका और हमारा साथ बना हुआ है। 9:50 हो चुके हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी में।

0: सामने हो यही आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे ट्यून कर लिया आपने या फिर एक बार फिर से बताएं हम।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: वेलकम बैक। आपको पता है चीन में ना सिंगल महिलाओं को लव लीव मिलती है ताकि वो प्यार की तलाश कर सकें। अब बताइए आपका इस बात पे क्या ख्याल है? वैसे स्टडीज बहुत सारी नई नई चीजें कहती रहती हैं, तो एक स्टडी ये भी कहती है कि स्वैग में आके लेकिन अकल में पीछे हैं, और हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है जब बच्चे बुद्धिमानी की रेस में अपने पेरेंट्स से पिछड़ गए हैं।
1: तो है

ये गाना सिर्फ ना सुनने में अच्छा लगता है, आप इसके जो एक्शंस हैं उस पे मत जाइएगा। फिलहाल तो समय होने वाला है समाचारों का, और समाचारों के बाद फिर से होगी आपकी हमारी मुलाकात।

0: प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। कार्यवाही शुरू होते ही सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा तकनीशियनों को बधाई दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उपलब्धि पर्यावरण अनुकूल परिवहन और मानवता के हित में वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग की दिशा में भारत की प्रगति को और मजबूत करेगी। इसके बाद सभापति ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन को स्थगित कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा कल प्रधानमंत्री आवास के गेट के बाहर बिना अनुमति धरने पर बैठने की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास की गरिमा को जानते हुए भी श्री गांधी ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। भाजपा सांसद ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार में आईएनएस कादंबा नौसेना बेस पर माही श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया। आईएनएस मालवन 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों में से दूसरा युद्धपोत है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
1: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैव कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स। सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। एक संयुक्त वक्तव्य में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की। बैठक के दौरान उन्होंने हिंद प्रशांत पर आसियान के दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए क्षेत्रीय चुनौतियों और अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया। समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों तथा आपात कार्रवाई जैसे विषयों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार चौथे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। तीर्थयात्रियों को यात्रा फिर शुरू होने के संबंध में आधिकारिक माध्यमों से जानकारी लेने की सलाह दी गई है। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने आज पुरुष सिंगल्स में इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और आप इसे सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी हाँ, कलाकार बेमिसाल लेकर हाजिर है देविका। और आज कलाकार बेमिसाल में हम स्मरण करेंगे उस महान गायक को जिसकी आवाज केवल कानों तक नहीं पहुंची, सीधा दिल में उतर गई। एक ऐसा स्वर जिसने प्रेम को मधुरता दी, विरह को आंसू दिए और जीवन के सुख दुख को संगीत का अमर रूप प्रदान किया। और ये आवाज है श्री मुकेश चंद्र माथुर की, जिन्हें हम सब मुकेश के नाम से जानते हैं। 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में जन्मे मुकेश चंद्र माथुर ने भारतीय संगीत को ऐसी अमूल्य निधि दी जिसकी चमक समय के साथ और भी बढ़ती जा रही है। मुकेश साहब अपने समय के महान गायक कुंदनलाल सहगल साहब को अपना आदर्श मानते थे और उनके इतने बड़े प्रशंसक थे कि प्लेबैक गायन के प्रारंभिक वर्षों में उनकी गायकी पर सहगल साहब की शैली स्पष्ट सुनाई देती थी। मुकेश केवल उनके गीत गुनगुनाते नहीं थे बल्कि उनकी गायन शैली को आत्मसात करने का भी प्रयास करते थे। इस संदर्भ में एक अत्यंत रोचक प्रसंग है। कहा जाता है कि जब केएल सहगल साहब ने पहली बार मुकेश जी का गीत दिल जलता है तो जलने दो सुना तो वे क्षण भर के लिए चौंक गए। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि अजीब बात है, मुझे तो याद ही नहीं कि मैंने ये गाना कभी गाया है। ये टिप्पणी केवल एक प्रशंसा नहीं थी बल्कि इस बात का प्रमाण था कि युवा मुकेश ने अपने आदर्श की शैली पर कितना प्रभावी अधिकार प्राप्त किया। कलाकार बेमिसाल का आगाज इसी सदाबहार गीत से।

दिल जलता है। जी हाँ, फिल्म पहली नजर का एक गीत था अनिल बिस्वास जी का संगीत और आह सीतापुरी साहब के बोल। सुन रहे हैं आप कलाकार बेमिसाल सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। बात हो रही है मुकेश चंद्र माथुर की यानी मुकेश साहब की। समय के साथ मुकेश साहब ने सहगल साहब की छाया से बाहर निकलकर अपनी एक ऐसी मौलिक गायन शैली विकसित की जो आगे चलकर उनकी पहचान बन गई। उनकी आवाज में ना तो कोई कृत्रिम अलंकरण था ना प्रदर्शन का आग्रह था, उसमें थी सहजता, सादगी और हृदय से निकली हुई आत्मीयता। यही कारण है कि उनके गीत केवल सुने नहीं महसूस किए जाते हैं। अगला गीत फिल्म अनाड़ी से शैलेंद्र साहब के बोल, शंकर जयकिशन जी का संगीत।

0: दी, हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
4: तो क्या करूं?
5: कॉल उठाओ, फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
4: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
5: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
6: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
7: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न आईटीआर 1 या आईटीआर 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
6: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
7: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
6: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
8: एक बज के 44 मिनट और ठीक 20 सेकेंड, आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल प्रोग्राम है कलाकार बेमिसाल। और बात मुकेश जी की, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की हमने बात की थी कि रजनीकंधा के लिए उन्हें कई बार यू भी देखा है के लिए पुरस्कार मिला था। और फिल्म फेयर पुरस्कार की अगर बात करें तो मुकेश साहब को सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए 4 फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुए। पहला पुरस्कार वर्ष 1959 में फिल्म अनाड़ी के लिए और इसके अतिरिक्त अपने उत्कृष्ट गायन के लिए अन्य फिल्म फेयर सम्मान भी प्राप्त हुए, जिसमें फिल्म कभी कभी के लिए और इसके साथ साथ उनकी संगीत विरासत की अगर बात करें तो उनकी संगीत विरासत को उनके सुपुत्र नितिन मुकेश ने सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया, जिन्होंने एक प्रतिष्ठित पार्श्व गायक और भजन गायक के रूप में भी अपनी पहचान स्थापित की। उनके पौत्र नील नितिन मुकेश

हिंदी फिल्म जगत के एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। भारतीय संगीत और संस्कृति पर उनकी अमिट योगदान को सम्मानित करने के लिए दक्षिण मुंबई के एक प्रमुख चौराहे का आधिकारिक नाम मुकेश चौक रखा गया। ये सम्मान इस बात का प्रतीक है कि मुकेश साहब की मधुर, भावपूर्ण और आत्मा को स्पर्श कर देने वाली आवाज आज भी करोड़ों श्रोताओं के हृदय में अमर है। कलाकार बेमिसाल का अंतिम गीत हम लेकर आए हैं फिल्म धर्मकर्म से, मजरू सुल्तानपुरी साहब के बोल, आजी बमन का संगीत और आवाज मुकेश जी की।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। नीट पेपर इफ्शा होने के मामले पर पार्लियामेंट में तातुल जारी है। सरकार के बहस के लिए तैयार होने के बावजूद दोनों ऐवानों की कार्रवाई अपोजिशन के शोरगुल की वजह से मुलतवी करनी पड़ी। अब दोस्त शिकन आईएनएस मालवन को भारतीय बहरिया में शामिल किया गया है, जिससे बहरी सिक्योरिटी मुस्तहकम होगी। कोड मुल्कों के वज़राए खारजा ने मनीला में अपनी मीटिंग में भारत बहरुल काहिल को आजादाना और खुला बनाए रखने के अपने अज़्म को दोहराया है। असम में मरने वालों की तादाद बढ़कर 31 हो गई है। मुख्तलिफ अजला में सैलाब की सूरत हाल संगीन बताई जाती है। भारत के मौसमियात के महकमे ने अगले दो दिन के दौरान गुजरात, पश्चिमी महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई नीट पेपर इफ्शा होने समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन के एहतजाज की वजह से दिन में 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। जब पहले इल्तवा के बाद दोपहर 12 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो अपोजिशन मेंबरों ने पेपर इफ्शा होने के मामले पर एहतजाज करना शुरू कर दिया। स्पीकर ओम बिरला ने अपोजिशन मेंबरों से ऐवान की कार्रवाई खुश उसलूबी से चलाने के लिए तआवुन करने को कहा। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर के मामले पर बहस के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: सरकार नीट पेपर लीक चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने तलबा के एहतजाज करने का मामला उठाया। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सरकार इस मामले पर बहस के लिए तैयार है और हरेक को मिलजुल कर बहस का वक्त तय करने के लिए आगे आना चाहिए। बीजेपी ने आज कहा कि मरकज तलबा के साथ है और मुल्क के नौजवानों के मुस्तकबिल का तहफ्फुज उसकी आला तरीन तरजीह है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी की रुकने पार्लियामेंट मासूरी स्वराज ने कहा कि नरेंद्र मोदी की कायदत वाली बीजेपी सरकार ने विकसित भारत को मुस्तहकम करने के लिए नौजवानों की कयादत पर मबनी तरक्की का मंत्र रखा है। मोहतरमा स्वराज ने कहा कि नीट का दोबारा इम्तिहान महज 37 दिन में कराया गया और 25 दिन के अंदर नतीजों का ऐलान कर दिया गया। उन्होंने इस बात को भी उजागर किया कि हुकूमत ने फौरी कार्रवाई की और पेपर लीक के 13 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया और अब ये सब जेल के अंदर हैं। मोहतरमा स्वराज ने कहा कि मुलजिमों को जल्द से जल्द सख्त सजा दी जाएगी। एहतजाज के बारे में बात करते हुए बीजेपी की एमपी ने कहा कि हुकूमत ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया है, पुरमन एहतजाज की इजाजत दी और बातचीत के दरवाजे खुले रखे। बीजेपी ने कल वजीर आजम की रिहायशगाह के दरवाजे के बाहर अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के किसी इजाजत के बगैर धरना देने की मजम्मत की है और इसे गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। नई दिल्ली में नामानिकारों से गुफ्तगू करते हुए बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत की जमहूरियत की तारीख में ये एक शर्मनाक दिन था। उन्होंने कहा कि वजीर आजम की रिहायशगाह की अजमत और वकार को जानते हुए जनाब गांधी ने गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल का मुजाहिरा किया। भारतीय बहरिया ने आज कर्नाटक में कारवार के मकाम पर आईएनएस मालवन को अपने कामकाज में शामिल किया। ये माहे तर्ज का दूसरा आबदोज शिकन जंगी जहाज है। मुल्क में ही जंगी जहाज तैयार करने की भारत की सलाहियतों के सिलसिले में ये एक अहम कामयाबी है। फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल एपी सिंह इस तकरीब में मेहमान खसूसी थे। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के सिलसिले में बहरिया की कोशिशों की सताइश की। उन्होंने कहा कि आईएनएस मालवन मुल्क के साहिली खित्ते की बहरी सलामती में एक अहम किरदार अदा करेगा।
2: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैव कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स। सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: वजीर खारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मनीला में कोर्ट वजराए खारिजा की मीटिंग में शिरकत की है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमरीका ने एक मुश्तरका बयान में भारत बहरुल काहिल को खुला और आजादाना रखने के अपने अज्म और इसे मुस्तहकम करने का तहैया किया है। इन मुल्कों ने आसियान तंजीम के इत्तेहाद और उसकी मरकजी हैसियत की भी पुरजोर हिमायत की है। मीटिंग के दौरान इन मुल्कों ने आसियान के पस मंजर की हिमायत में इलाकाई चैलेंजों और मौकों पर भी तवज्जो मरकूज की। मीटिंग में इक्तसादी खुशहाली, अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजी और इमरजेंसी के हालात से निमटने के तौर तरीकों पर खासतौर पर तबादला ख्याल किया गया। रहनुमाओं ने बहरी सिक्योरिटी पर भी गौर व खौज किया। इस मौके पर डॉ जयशंकर ने अमरीका के वजीर खारिजा मार्को से भी गुफ्तगू की। वजीर मौसूफ ने कहा कि इस मीटिंग के दौरान ऐसे शोबों पर तवज्जो मरकूज की गई जो भारत अमरीका जामे आलमी कलीदे शराकत दारी के लिए तरजीही शोबे हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। वजीर खारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने फिलिपाइन के शहर मनीला में मशरिकी एशिया छोटी मीटिंग और आसियान इलाकाई फोरम के इजलास के दौरान चीन के वजीर खारिजा वांग यी से बातचीत की है। अपने इफ्तिताहिया कलिमात में डॉक्टर जयशंकर ने भारत और चीन के दरमियान ताल्लुकात को बतदरीज मामूल पर लाने की जरूरत को उजागर किया और साथ ही यह भी कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे बाहमी तआवुन और इश्तराक के लिए सरहदों पर अमन सुकून का होना एक बुनियादी शर्त है। वजीर खारिजा ने मजीद कहा कि दोनों मुल्कों को यकीन है कि बाहमी एतमाद और बाहमी मफादात की बुनियाद पर ही तआवुन पर मबनी और पायदार ताल्लुकात कायम किए जा सकते हैं। ब्रिक्स 2026 की सदारत के एक हिस्से के तौर पर भारत ने कल चंडीगढ़ में रिवायती, कॉम्प्लीमेंट्री और इंटीग्रेटिव मेडिसिन से मुतालिक ब्रिक्स मुल्कों की मीटिंग की मेजबानी की। ये मीटिंग सेहत से मुतालिक ब्रिक्स मुल्कों के उस चार रोजा प्रोग्राम का एक हिस्सा थी जिसका एहतमाम सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत और आयुष की वजारत ने मुश्तरका तौर पर किया। मीटिंग से सबूतों पर मबनी अद्वियात के रिवायती निजाम को फरोग देने, इदारा जाती साझेदारी को मुस्तहकम करने और अफसाने सेहत के पायदार और मुस्तहकम निजाम में तआवुन देने के सिलसिले में ब्रिक्स मुल्कों के दरमियान इश्तराक में इजाफा करने में मदद मिली। आसाम के 16 जिलों में सैलाब की सूरत हाल संगीन बताई जाती है। मरने वालों की तादाद बढ़कर 31 हो गई है। खबरों में कहा गया है कि पूरी रियासत में 872 गांव सैलाब से मुतासिर हुए हैं जिसका असर 5,64,000 से ज्यादा अफराद पर पड़ा है। 24 हेक्टेयर से ज्यादा इलाके में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा और वहां पानी भर गया है। भारत के मौसमियात के महकमे ने अगले दो दिन के दौरान गुजरात, वस्ती महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे के मुताबिक अगले तीन दिन के दौरान जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मशरकी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और विदर्भ में तेज से बहुत तेज बारिश हो सकती है। सिक्किम के नामची जिले में समरदुंग के मकाम पर जेरे तामीर सुरंग में फंसे लोगों को निकालने के लिए बचाव और तलाश की कार्रवाइयां आज तीसरे दिन भी जारी हैं। सरकारी जराए ने बताया कि अब तक 12 लाशें निकाली जा चुकी हैं और सुरंग के अंदर 13 अफराद के फंसे होने का अंदेशा है। चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में मर्दों के सिंगल्स में आयुष शेट्टी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वो इंडोनेशिया के अलवी फरहान को 21-17, 5-21, 21-17 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। और अब आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। नीट पेपर इफ्शा होने के मामले पर पार्लियामेंट में तातुल जारी है। सरकार के बहस के लिए तैयार होने के बावजूद दोनों ऐवानों की कार्रवाई अपोजिशन के शोरगुल की वजह से मुलतवी करनी पड़ी। आबदोज शिकन आईएनएस मालवन को भारतीय बहरिया में शामिल किया गया है जिससे बहरी सिक्योरिटी मुस्तहकम होगी। कोर्ड मुल्कों के वजराए खारिजा ने मनीला में अपनी मीटिंग में भारत बहरुल काहिल को आजादाना और खुला बनाए रखने के अपने अज्म को दोहराया है। आसाम में मरने वालों की तादाद बढ़कर 31 हो गई है। मुख्तलिफ अजला में सैलाब की सूरत हाल संगीन बताई जाती है। भारत के मौसमियात महकमे ने अगले दो दिन के दौरान गुजरात, पश्चिम महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में इंडोनेशिया के खिलाड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
3: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई।

0: युद्धपोत आईएनएस मालवन भारतीय नौसेना में शामिल। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस चर्चा के लिए नियमों का निर्धारण किया जाना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा प्रश्न पत्र पर गहन चर्चा चाहती है। उन्होंने कहा कि बहस जितनी भी लंबी चले उतनी लंबी होनी चाहिए और यथाशीघ्र शुरू होनी चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार ने विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर खुली चर्चा के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने इस तरह की बाधाएं खड़ी की जिससे प्रतीत होता है कि वे संवाद में शामिल नहीं होना चाहते।
1: देखिए, जो ऑपोजिशन पार्टी बोलना चाहते वो तो बोलना ही है चर्चा के दौरान, हम मना नहीं कर सकते, लेकिन चर्चा को रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। हमने जब खुले दिल से ऑफर किए सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं, तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के पास विरोध प्रदर्शन करना विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को दर्शाता है।
2: संवैधानिक पद पे रह के संविधान की गरिमा को तार तार किया, उनका ये आचरण बहुत ही खतरनाक मंशा से वो भारत में दूसरे देशों का नकल करके यहाँ उपद्रव कराना चाहते हैं।
0: भाजपा सांसद डॉक्टर सतीश पूनिया ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करके कांग्रेस पार्टी पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि विद्यार्थियों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों के साथ है और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने युवा नेतृत्व वाले विकास के मंत्र को विकसित भारत को मजबूत करने की नींव बनाया है।
3: आप सब जानते हैं कि नीट जैसा एग्जाम जिसमें 20 से 22 लाख कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं उसकी तैयारी में 6 महीने लगते हैं, लेकिन मात्र 37 डेज में नीट का री एग्जामिनेशन किया गया और रिजल्ट भी मात्र 25 दिन में आप सभी के सामने ला खड़ा कर दिया गया। जो री एग्जामिनेशन हुई उसमें टेक्नोलॉजी को लेवरेज करा गया ताकि कहीं पर भी अगर किसी भी प्रकार का लूप होल हो उसको कर्ब किया जाए, उसको प्लग इन किया जाए।
0: सुश्री स्वराज ने बताया कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पेपर लीक के 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया और अब वे सभी जेल में हैं। उन्होंने कहा कि आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा कल प्रधानमंत्री आवास के गेट के बाहर बिना अनुमति धरने पर बैठने की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास की गरिमा को जानते हुए भी श्री गांधी ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। भाजपा सांसद ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले और विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए और राज्यसभा दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया। इससे पहले जब लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू करने के लिए एकत्रित हुई तो अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सरकार इस मामले पर चर्चा के लिए तैयार है और चर्चा के समय को लेकर सभी को एकमत होना चाहिए। हंगामा जारी रहने पर श्री बिरला ने सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब सदन दोबारा शुरू हुआ तो विपक्ष ने नीट मामले पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रश्नकाल संसदीय कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह सदस्यों का अधिकार है।
4: आजादी के 50 साल बाद सदन ने यह संकल्प लिया था कि किसी भी हालत में क्वेश्चन आवर और जीरो आवर चलाएंगे। ये मेंबर्स के आवर है। आपके प्रश्नों को के उत्तर तैयार करने में कितना श्रम जाता है और जनता का धन जाता है, आप इसकी कल्पना करिए। आपको प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है, प्लीज अपनी सीट पर बैठिए और क्वेश्चन आवर चलने दीजिए।
0: बार बार अपील करने के बावजूद विपक्षी सदस्यों ने उपसभापति की सलाह पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण सदन को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार INS कदम्बा नौसेना बेस पर माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया। INS मालवन 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों में से दूसरा युद्धपोत है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
5: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैव कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स। सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि IASV त्रिवेणी पर सवार होकर पहली बार सभी सेनाओं की महिला सदस्य समुद्री अभियान समुद्र प्रदक्षिणा ने न केवल पृथ्वी का चक्कर लगाया बल्कि इस असाधारण उपलब्धि से करोड़ों भारतीयों को गौरवान्वित भी किया। उन्होंने IASV त्रिवेणी को आत्मनिर्भर भारत और भारत के नवाचार, क्षमताओं और आत्मविश्वास का जीवंत उदाहरण बताया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। एक संयुक्त वक्तव्य में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की।
6: In this era of volatility and disruption,
7: उथल पुथल के इस दौर में आपूर्ति श्रृंखला पर सबसे अधिक दबाव दिख रहा है। ऊर्जा, भोजन और स्वास्थ्य सुरक्षा को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना बहुत जरूरी है। वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। साथ ही भारत और आसियान दोनों ही अपने भविष्य को लेकर उम्मीद से भरे हैं, इसलिए चुनौतियों का सामना करते हुए भी हमें मौकों पर पूरी तरह ध्यान देना चाहिए।
6: इवन वाइल एड्रेसिंग चैलेंजेस,
0: बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक में भारतीय अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान को हुर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण की अनुमति देना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नौवहन की स्वतंत्रता के लिए एक बेहद खतरनाक कदम होगा। डॉक्टर जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान फिलीपींस, रूस और सिंगापुर के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होगी। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। 16 जिलों में पानी भरा हुआ है। राज्य में बाढ़ में 21 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे मृतकों की कुल संख्या 31 हो गई है।
8: आधिकारिक रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य में 872 गांव अभी भी जलमग्न हैं और 5,64,000 से भी अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 24,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पानी में डूबी हुई है। कामरूप और कामरूप महानगर जिलों में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जहां 4,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। राज्य सरकार ने 71 राहत शिविर और 202 राहत वितरण केंद्र स्थापित किए हैं। इन शिविरों में 12,000 से अधिक लोगों को आश्रय दिया गया है, जबकि 1,00,000 से अधिक प्रभावित लोगों को राहत सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। NDRF, SDRF, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज तथा स्थानीय प्रशासन की टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत कार्य में लगातार जुटी हुई है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार चौथे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने आज पुरुष सिंगल्स में इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई। ताज़ा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 753 अंक गिरकर 76,717 पर और निफ्टी 202 अंक की गिरावट के साथ 23,986 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। युद्धपोत INS मालवन भारतीय नौसेना में शामिल। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्रों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी। दुपारचे 2:30 वाजलेले आहेत। शास्त्रीय संगीताचा कार्यक्रम नाद ब्रह्म। आज समीर दुबळे यांनी गायलेला राग मधमाद सारंग आपल्याला ऐकवत आहोत। विलंबित ख्यालाची बंदिश रूपक तालात आहे, द्रुत बंदिश 3 तालात निबद्ध आहे। त्यांना तबल्याची साथ श्रीकांत भावे यांनी आणि हार्मोनियमची साथ तुषार केळकर यांनी केलेली आहे. ऐकूया समीर दुबळे यांनी गायलेला राग मधमाद सारंग.

100.1 एफएम गोल्ड पर खरा सोना अने न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप पर आप सांभळी रह्या छो आकाशवाणी मुंबई केन्द्र नी संवाददाता न्यूज ऑन मोबाइल एप पर आप सांभळी रह्या छो गुजराती गीतों कार्यक्रम अने आपणा कार्यक्रम नुं नाम छे गीत गुजरी बराबर मित्रों 3 वाग्या थी लईने 4 वाग्या सुधी अहीं आप सांभळी शको छो मात्र ने मात्र आपना मनगमता गुजराती गीतो अने आपणा आजना आ गीत गुजरी कार्यक्रम में आपनी साथे छे आपनो गमतीलो मोजीलो हसमुख अने तोफानी धर्मेश चेव्यास। मित्रों आजना आपणा कार्यक्रम में आगळ वधीए ए पहेला आपने जणावी दईए आजे छे तारीख 22 जुलाई 2026 अने समय थयो छे बराबर बपोरना 3:10 अने 18 सेकेंड। मित्रों हमणां ज आपे सांभळ्युं ललिता घोड़ाताना आ गीत। मित्रों अपना आज ना आ गीत गुजरी कार्यक्रम में हवे आप सांभळशो पंकज उदासना स्वरे कमलेश सोनावाला नी आ रचना।

101 एफएम गोल्ड पर आप मान रहा छो कार्यक्रम गीत गुर्जरी। मित्रों आपने जणाई दिए आज छे वर्ल्ड ब्रेन दिवस। दर वर्षे 22 जुलाई ना रोज समग्र विश्व में उजवामां आवे छे आ दिवस। आ दिवस मनावानो मुख्य उद्देश्य मगजना स्वास्थ्य अंगे लोकोमां जागृति लावानो अने मगज तेमज नर्वस सिस्टम संबंधित रोगों विषे साची माहिती पहोंचाड़ीने जागृति लावानो छे। आम तो अपना दरेक अवयवनुं खूब महत्व छे, पण मगज अपना शरीरनुं सौथी महत्वपूर्ण अंग छे। ते विचारवानी, याद राखवानी, शीखवानी, निर्णय लेवानी अने शरीरना दरेक अंगना कार्यने नियंत्रित करवानी महत्वपूर्ण जवाबदारी निभावे छे। आधुनिक जीवनशैली, वधतो तनाव, ऊँघनो अभाव, असंतुलित आहार अने शारीरिक निष्क्रियता मगजना स्वास्थ्यने असर करी शके छे। તેથી નિયમિત વ્યાયામ કરવો, પૌષ્ટિક અને સંતુલિત આહાર લેવો, પૂરતી ઊંઘ લેવી, માનસિક તણાવ ઓછો લેવો, નશીલા પદાર્થોના સેવનથી દૂર રહેવું ખૂબ જરૂરી છે। ઉપરાંત બ્લડ પ્રેશર, ડાયાબિટીસ અને કોલેસ્ટ્રોલ જેવા રોગોને નિયંત્રણમાં રાખવાથી પણ મગજનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે છે। મિત્રો, વર્લ્ડ બ્રેન દિવસ આપણને યાદ અપાવે છે કે સ્વસ્થ મગજ વિના સ્વસ્થ જીવન શક્ય નથી। मित्रों आज कार्यक्रम में हवे आप सांभळशो साधना सरगम अने पार्थिव गोहिलना स्वरे कमलेश सोनेवाला नी आ शब्द रचना।

101.1 FM गोल्ड पर आप सांभळी रह्या छो गुजराती गीतों कार्यक्रम गीत गुजरी। मित्रों, आपने आज कार्यक्रम में ए पण जणावी दईए के 22 जुलाई 1923 रोज लोकप्रिय गायक मुकेश नो जन्मदिवस। गीतकार मुकेश भारतीय फिल्म संगीत ना अति लोकप्रिय ने सुरीला कंठना गायकों में एक हता। तेमनो मधुर भावसभर अने हृदयस्पर्शी अवाज लाखों लोकोना हृदय में आजे पण जीवंत छे। तेमणे हिंदी फिल्म में अनेक यादगार गीतों गाया छे अने खूब प्रसिद्ध बन्या। मुकेशे गुजराती फिल्मों माटे पण पोतानी अनोखी छाप छोड़ी छे। तेमणे केटलीक गुजराती फिल्मों अने नॉन फिल्मी गीतों गाई गुजराती श्रोताओं में दिल जीती लीधा हता। तेमना अवाज में लागणी, सरळता अने आत्मीयता होवाथी गुजराती भाषाना गीतों में पण विशेष मीठाश अनुभवाती। तेमना गायेला गीतों आजे पण एटला ज लोकप्रिय अने प्रसिद्ध छे। गुजराती संगीत प्रेमीओ मुकेशना गीतों ने खूब प्रेम थी सांभळे छे। तेमनी गायकी में करुणा, प्रेम, वीर अने मानवीय लागणीओनुं सुंदर चित्रण जोवा मळे छे। तेमणे गुजराती संगीत ने समृद्ध बनावामां महत्वपूर्ण योगदान आप्युं छे। तेमनी गायकी नवी पेढ़ीना गायकों माटे प्रेरणारूप पण छे। मुकेश आजे आपणी वच्चे नथी, परंतु तेमना गीतो तेमने हमेशा जीवंत राखशे। भारतीय तेमज गुजराती फिल्म संगीतना इतिहासमां तेमनुं स्थान अस्मरणीय छे અને સંગીત પ્રેમીઓ તેમને સદાય આદરપૂર્વક યાદ રાખે છે। મિત્રો, આપણા આજના કાર્યક્રમમાં હવે મુકેશનું આ ગીત શબ્દરચના છે રમેશ ગુપ્તાની।

मित्रों आपणे वात करी रह्या छीए खड़ी कई बोलता नहीं। मित्रों मौन नो अर्थ एवो नथी के माणस हमेशा चुप रहे, योग्य समय योग्य वात करवी जेटली जरूरी छे एटलू जरूरी छे के क्यारे न बोलू ते पण समझू। मित्रों घणी वखत गुस्सा में बोलायेला शब्दों संबंधों ने नुकसान पहुँचाड़ी शके छे। जो ते समय माणस थोड़ो समय शांत रहे अने विचार करे तो घणी मुश्किलों टाळी शकाय छे। मौन ए आपणने विचारवानी तक पण आपे छे। घणा महान विचारकों ने संतोए मौननुं महत्व समजाव्युं छे। तेओ मानता हता के मौन द्वारा माणस पोताना अंतरात्मा साथे जोड़ाई शके छे। बहारना अवाजथी दूर रहीने ज्यारे पोताना मनमां डोक्यो करे त्यारे तेने पोतानी भूलो पोतानी शक्तिनो अने पोताना जीवननो हेतु विशे समज मळे छे। मौन आपणने सांभळवानी कला शीखवे छे। जे व्यक्ति ध्यान थी सांभळे छे ते वधु सारी रीते समझी शके छे। परिवार मित्रों ने समाज में घणी समस्याओं मात्र एटला माटे उभी थाय छे कारण के लोको एक बीजाने सांभळता नथी। दरेके पोतानी वात साची लागे छे परंतु बीजाना विचारों समझवा माटे धीरज राखता नथी। थोड़ू मौन राखीने जो आपणने बीजानी वात सांभळीए तो संबंध वधु मजबूत बनी शके छे। मित्रों आपणा आजना कार्यक्रम में हवे आप सांभळशो सती मादलसा फिल्मना गीत गायक कलाकार छे प्रफुल्ल दवे ने साथीदारों शब्द रचना कविदादनी। तो आओ मानिए हाँ गीत

0: मित्र अपना आज कार्यक्रम में हवे मणीशू वधु एक बार मुकेश ना स्वरे आ गीत शब्द रचना छे बरकत बिराणी नी
1: नजर ना

0: कबूतरी
1: नहीं नहीं महाराज ये भी सुंदरी
0: बेश बेश मंत्री
2: अब देखो टोकरी का कमान अड़ा खड़ा लोही खड़ा शमशान का भूत खड़ा चल जय काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली अरे जो जाए खाली तो कौन कहे तुझे महाकाली।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस चर्चा के लिए नियमों का निर्धारण किया जाना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा प्रश्न पत्र पर गहन चर्चा चाहती है। उन्होंने कहा कि चर्चा यथाशीघ्र शुरू होनी चाहिए और जितनी लंबी चाहे चल सकती है।
1: देखिए, जो अपोजिशन पार्टी बोलना चाहते वो तो बोलना ही है चर्चा के दौरान, हम मना नहीं कर सकते। लेकिन चर्चा को रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। हमने जब खुले दिल से ऑफर किया सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं, तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है। नई दिल्ली में आज श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों की

0: हुए पेपर लीक के 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया और अब वे सभी जेल में हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले और विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। दोपहर 12 बजे पहले सदन के बाद जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि सरकार इस मामले पर चर्चा के लिए तैयार है और चर्चा के समय को लेकर सभी को एकमत होना चाहिए। हंगामा जारी रहने पर श्री बिड़ला ने सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। उधर राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार आईएनएस कादम्बा नौसेना अड्डे पर माही श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया। आईएनएस मालवन 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों में से दूसरा युद्धपोत है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि थे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज दोपहर पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत कनाडा सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि बातचीत दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा निर्धारित संबंधों के लक्ष्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित थी। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने आज पुरुष सिंगल्स में इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होगी। उत्तराखंड, चंडीगढ़, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में शुक्रवार तक तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Both the Houses of Parliament have been adjourned for the day following repeated disruptions by the opposition for the third consecutive day over various issues, including the NEET paper leak case and student protest. When the Lok Sabha reassembled after the second adjournment at 2 p.m., the opposition again started sloganeering over the NEET issue. Amid uproar, the House passed a resolution to suspend Trinamool Congress MP Kalyan Banerjee for the rest of the monsoon session. Presiding Officer Krishna Prasad Teneti said Kalyan Banerjee made objectionable and unparliamentary remarks targeting women MPs, which was formally brought to the notice of the chair. Minister of State for Parliamentary Affairs Arjun Ram Meghwal moved the resolution, which was passed by a voice vote. As the ruckus continued, the presiding officer adjourned the House till tomorrow. Earlier, speaking in the House, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said that the government is fully prepared for a discussion on the NEET paper leak issue. The minister said any discussion in the House must be conducted under established rules. Rajya Sabha also witnessed similar scenes. When the House reassembled after the third adjournment at 3 p.m., the opposition parties protested over the NEET and other issues. Deputy Chairman Harivansh said that the government is ready for the discussion on the NEET issue and the opposition should cooperate in running the House. Speaking in the upper house, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju accused the Congress party of creating obstacles in conducting the discussion in the House by imposing new conditions. Amid uproar, Deputy Chairman adjourned the House till tomorrow. Defence Minister Rajnath Singh has expressed concern over the ongoing protests in Delhi, saying that centre is deeply sensitive to the sentiments and concerns of the youth and is ready to listen and address every concern raised by the students. Mr. Singh was talking to media in New Delhi.
2: It is
3: deeply unfortunate that some people are trying to use the

101.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल के सुरीले सफर को और आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर से हाजिर है नईम अख्तर कुछ और सुरीले नगमे लेकर। आप बताइए कि आपने अपनी घड़ियों के टाइम हमारी घड़ी के साथ मैच किए हैं। जी हाँ, शाम के 4:11:15 हुए हैं और ये है वो वक्त जब हम आप तक पहुंचाते हैं फिल्म संगीत। मैं हूं नईम अख्तर और आपके लिए एक ऐसा गीत जहां हम अपने दिल में कुछ ऐसा मान के चलते हैं कि अगर आप हमसे खफा हैं तो आपकी खफगी को दूर किया जाए, और अगर हम खफा हैं तो कोई तो हो जो हमसे पूछे कि हम किस बात पर खफा हैं।

0: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने। पर्सनल लोन ऑफर।

0: इसे ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई,
0: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
0: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
0: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर बस आखिरी चंद मिनट और नईम अख्तर आपसे इजाजत ले लेगी। ले क्यों लेगी, ले ही लेती हूँ आपसे। अब ज्यादा नहीं बोलती, आखिरी गीत सुनवा देती हूँ, वरना आप कहेंगे बहुत बोलती है।

0: be posted at the Chennai Directorate or with liability to serve anywhere in India. Applications in the prescribed format must reach the directorate within 30 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. The detailed notification, application format and eligibility conditions are available on the official Directorate of Lighthouses and Lightships website, that is at www.dgll.nic.in. You could also go on to www.ncs.gov.in. The Directorate of Fisheries, Andaman and Nicobar Administration has invited applications from eligible officers of the central government, state governments, union territories, agricultural universities and recognized research institutes for one post of Joint Director, Fisheries. The post is Group A gazetted non-ministerial position in pay level 11 as per the 7th CPC. Interested and eligible candidates may download the detailed vacancy notice, eligibility conditions and application format from the official Andaman and Nicobar Administration website. Complete applications should reach within 60 days from the date of publication in the Employment News. For details, do refer to the website at www.andaman.gov.in. The National Institute of Design, NID, Andhra Pradesh, an institute of national importance under the Department of Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, has invited online applications from eligible Indian nationals. The institute is recruiting for a wide range of teaching and non-teaching positions, including a principal designer, faculty, senior accounts officer, assistant, senior assistant, librarian, associate senior technical instructor, associate senior design instructor and technical assistant across disciplines such as industrial design, communication design, textile and apparel design and interdisciplinary design studies. The post carries pay levels from 5 to 13 as per the 7th CPC and will be filled through direct recruitment, deputation or short-term contract depending on the post. Interested candidates must apply online only through the institute's website. The online application window is open till 45 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. For details, do refer to the website at www.nid.ac.in. And now we have the Employment News in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में सीधी भर्ती के आधार पर इन पदों को भरा जाना है। आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी, अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष, चिकित्सा अधिकारी 40 वर्ष, निजी सचिव आयु सीमा 35 वर्ष, तकनीकी सहायक आयु सीमा 32 वर्ष, प्रयोगशाला सहायक 30 वर्ष और प्रयोगशाला परिचर 30 वर्ष। निर्धारित आवेदन प्रारूप अनिवार्य योग्यता अनुभव सामान्य नियम शर्तों और अन्य विवरण के लिए देख सकते हैं राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.curaj.ac.in। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 10 अगस्त 2026 जबकि आवेदन की मूल प्रति जमा कराई जा सकती है 17 अगस्त 2026 तक। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान मध्य प्रदेश में प्रधान पुस्तकालय अध्यक्ष के पद हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ये भर्ती सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑफलाइन आवेदन के द्वारा की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता, पात्रता मानदंड, अनुभव आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए संस्थान की वेबसाइट nidmp.ac.in। आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 रहेगी। राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास अभिकरण प्रतिनियुक्ति और संविदा के आधार पर इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है निदेशक वित्त एवं प्रशासन, निदेशक परियोजना, संयुक्त निदेशक परियोजना, उपनिदेशक तकनीकी तथा सहायक निदेशक वित्त एवं प्रशासन। विस्तृत पात्रता मानदंड एवं आवेदन प्रारूप के लिए देखिए वेबसाइट nridia.dord.gov.in। समुद्री जीवित संसाधन एवं पारिस्थितिकी केंद्र कोच्चि में इन पदों को भरा जाना है। परियोजना वैज्ञानिक ग्रेड 2 सलाहकार, परियोजना वैज्ञानिक ग्रेड 1 कार्यकारी सहायक, वरिष्ठ अनुसंधान फेलो तथा अनुभाग अधिकारी। पदों का विवरण, पात्रता मानदंड, वेतन संबंधी जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए देखिए वेबसाइट www.cmlre.gov.in। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नई दिल्ली आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। प्रमुख सलाहकार नीति नियोजन, वरिष्ठ सलाहकार नीति नियोजन और मुख्य धाराकरण, वरिष्ठ सलाहकार संग्रहालय एवं सांस्कृतिक विरासत स्थल एवं परिसर तथा सलाहकार आपदा प्रबंधन। आवेदनों पर तभी विचार किया जाएगा जब अभ्यर्थी NDMA के जॉब पोर्टल NDMA.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आवेदन का कोई अन्य माध्यम स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने में किसी प्रकार की सहायता के लिए आप संपर्क कर सकते हैं इस फोन नंबर पर 9873997934। NDMA बगैर कोई कारण बताए ऐसे आवेदनों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में उप प्रबंधक सूचना प्रौद्योगिकी के कुल 2 पद रिक्त हैं। 1 पद अनारक्षित है जबकि 1 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। पात्रता मानदंड और अन्य शर्तों के लिए देखिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की वेबसाइट www.nhai.gov.in। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 5 अगस्त 2026। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: नमस्कार श्रोताओं, आज राष्ट्रीय ध्वज दिवस है। इसी दिन 1947 में भारत की संविधान सभा ने वर्तमान तिरंगे को स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था, इसलिए ये तारीख भारतीय इतिहास में विशेष महत्व रखती है। हालांकि ये दिन स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस की तरह राष्ट्रीय अवकाश नहीं है, लेकिन आज का ये दिन तिरंगे के इतिहास और उसके महत्व को याद करने का अवसर है। आज के डेटलाइन सेगमेंट में अपने राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ी कई दिलचस्प बातें जानेंगे। फिलहाल कार्यक्रम को शुरू करते हैं। मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं सायरा मुश्तबा।
1: नमस्कार आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ऑन दिस वेरी वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ परिक्रमा। यस, द तिरंगा और आवर नेशनल फ्लैग इज नॉट जस्ट अ फ्लैग, इट इज आवर आइडेंटिटी, अ पीस ऑफ हिस्ट्री, एंड ऑफ कोर्स इट रिमाइंड्स अस ऑफ द इमेंस सैक्रिफाइसेस ऑफ ऑल द पीपल हु मेड सैक्रिफाइसेस इन द फ्रीडम स्ट्रगल। एंड यस सर फिरोजी, हम लोग क्योंकि देश का विदेश सबकी सैर पे जाते हैं, दैट्स व्हाई द शो इज कॉल्ड परिक्रमा। मोस्टली वी विल गो टू पार्ट्स ऑफ आवर different country to different parts of our country and see which interesting stories our correspondents have from there. And baat kyunki tiranga ki hogi to tafseer se baat karenge in our segment Dateline India. Let's start with the headlines first. Stalemate continues in parliament.

0: Over NEET paper leak case as opposition disrupts the proceedings despite government agreeing for discussion. Indian Navy inducts INS Malwan, second anti-submarine warfare ship to strengthen maritime security.
1: गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट.
0: Quad foreign ministers reaffirm commitment to free, open and inclusive Indo-Pacific, hold meeting at Manila in Philippines. Death toll rises to 31 as flood situation remains grim in Assam.
1: और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई.
0: And yes, let's begin the show with our segment Dateline India. And of course, at the beginning of the show, we have already told our listeners that today is National Flag Day. This is this very day in 1947, just weeks before India finally gained independence, the Constituent Assembly of India officially adopted the Tiranga as the national flag of our country. And it's indeed a very important day in the history of our nation.
1: श्रोताओं, जुलाई 1947 के भारत के बारे में सोचिए. आजादी के लिए चल रहा लंबा संघर्ष अपने आखिरी पड़ाव पर था. कई पीढ़ियों ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी. हजारों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी. लाखों लोगों ने एक ऐसे देश का सपना देखा जहां लोग सम्मान और आजादी के साथ जी सकें.

0: And Sir Firozi, as I had mentioned, that it's not just a flag, it reminds us of our identity, our history, and the sacrifices that people have made to achieve this day when we can boldly, bravely, fearlessly unfurl the Tiranga. Above all, it is also about the values that continue to unite over 1.4 billion Indians under one tricolor. And well, stay with us to explore as we explore the remarkable story behind one of the world's most respected national flags.
1: और सायरा उस वक्त के बारे में सोचिए जब अंग्रेजों का शासन खत्म होने वाला था, लेकिन एक आज़ाद देश के तौर पर भविष्य में कदम रखने से पहले उसे एक ऐसे प्रतीक की ज़रूरत थी जिसे हर भारतीय गर्व से अपना कह सके, चाहे उसकी पहचान कुछ भी हो, धार्मिक पहचान कुछ भी हो, सोशल बैकग्राउंड कुछ भी हो.
0: That's right. And well, every great symbol has a story. The story of our Tiranga brings us to Pingali Venkaiah, a remarkable freedom fighter, scholar, agriculturalist, and designer. Born in present-day Andhra Pradesh, Pingali was deeply interested in the science of flags, known as vexillology. He studied flags from different nations and firmly believed that India too deserved a distinctive flag that reflected its identity and aspirations. For years, the work continued tirelessly on different designs and presented several ideas before arriving at the concept that eventually inspired our national flag. His contribution reminds us that history is shaped not only by famous political leaders, but also by visionary individuals whose dedication leaves a lasting legacy. Today, whenever we salute the Tiranga, we also honor the vision and perseverance of Pingali Venkaiah.
1: और सायरा, जब हम तिरंगे को गौर से देखते हैं तो पहली नज़र में बस एक बीच में गहरे नीले रंग के एक सर्कल चक्र के साथ तीन खूबसूरत रंगीन पट्टियों जैसा दिखता है, और हालांकि इनमें से हर पट्टी का एक अलग मतलब है, तो उसी मतलब को आज हम राष्ट्रीय ध्वज दिवस पर समझ लेते हैं एक बार फिर. सबसे ऊपर वाली केसरिया पट्टी से शुरू करते हैं. केसरिया रंग साहस, त्याग और निस्वार्थ का प्रतीक है. ये हमें उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता है जिन्होंने स्वतंत्र भारत के सपने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया. इसके बाद आती है बीच में सफेद पट्टी जो शांति और सत्य का प्रतीक है. भारत जैसे अद्भुत देश में शांति केवल एक आदर्श नहीं बल्कि एक जरूरत भी है. सफेद रंग हमें याद दिलाता है कि हमारे मतभेदों के बावजूद सद्भाव, ईमानदारी और आपसी सम्मान एक मजबूत लोकतंत्र की नींव है. और सबसे आखिर में लगी हरी पट्टी विकास, समृद्धि और उर्वरता को दिखाती है.
0: That's right, and of course all these three

0: colors, and you know, they represent so many, you know, over a billion interns who are probably, you know, they have different languages, they have different colors, even different facial features, but they are united by one patriotic feeling that we all are Indians. Now let us look at the most fascinating feature of the Tiranga, which is the Ashok Chakra. The navy blue wheel at the center contains 24 equally spaced spokes. It is inspired by the land capital of Emperor Ashok at Sarnath, which is also India's national emblem. But why a wheel? Well, because a wheel is always moving. Movement represents life, progress, development, justice. The Ashok Chakra reminds us that a nation must never stand still. Its 24 spokes are often associated with virtues such as courage, patience, righteousness, compassion, wisdom, honesty, self-control, and responsibility. Whether we interpret each spoke individually or see the wheel as a whole, its message remains powerful. Keep moving forward. A society that continues to learn, innovate, and uphold justice continues to grow stronger.
1: और सायरा, हम सभी ने खुले आसमान के नीचे कई बार तिरंगे को लहराते हुए देखा है, और क्या आपने गौर किया है कि राष्ट्रगान शुरू होते ही और झंडा फहराते ही लोग एकदम सीधे क्यों खड़े हो जाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज केवल एक कपड़ा नहीं, बल्कि ये यादों को समेटे हुए है, ये भावनाओं को समेटे हुए है और इतिहास को समेटे हुए है। तिरंगे ने भारत के कुछ सबसे गौरवशाली क्षणों को देखा है। इसे हिमालय की चोटियों पर लहराया गया, इसे भारतीय वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं का साथी माना गया, इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से पदक जीतने वाले एथलीट्स ने अपने हाथ में उठाया और ओढ़ा। ये दुनिया भर में सेवारत शांति सैनिकों के साथ खड़ा रहा है। इसने सबसे कठिन परिस्थितियों में हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों को प्रेरित किया है।
0: That's right. It's one of the greatest strengths of India. Of course, we all know it. The greatest strength is its diversity, and the national flag, the Tiranga, aptly represents that. We speak hundreds of languages, celebrate different festivals, enjoy different cuisines, follow different traditions and customs. Yet, when the Tiranga is unfurled, these differences blur and fade into the background. For those few moments, every Indian stands together. The flag belongs equally to every citizen. It does not ask where we come from. It reminds us where we belong. That is the true strength of the Tiranga.
1: बिल्कुल सायरा, और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान केवल खास मौकों तक सीमित नहीं है, ये उस सम्मान और गरिमा में झलकता है जिसके साथ हम इसे फहराते हैं और अपने पास संभाल कर रखते हैं। जब हम तिरंगे को शान से लहराते हुए देखते हैं तो हमें न केवल एक नागरिक के तौर पर अपने अधिकारों की बल्कि अपनी जिम्मेदारियों की भी याद आती है, और एक जिम्मेदार नागरिक होने का मतलब है कानून का सम्मान करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, पर्यावरण का ध्यान रखना। तिरंगे से जुड़े मूल्य तभी सार्थक होते हैं जब वे हमारे रोजमर्रा के कामों में भी दिखाई दें।
0: That's right. And before we conclude this segment, in fact, you know, this topic for today's segment, let's take a moment to reflect. When you see the saffron, think of courage. When you see the white, think of peace and truth. When you see the green, think of hope and prosperity. And whenever your eyes rest upon the Ashok Chakra, remember that life, society, and the nation must always keep moving forward. The Tiranga is not merely a reminder of our past, it is a guide for our future.
1: और श्रोताओं, हमें ये भी याद रखना है कि आज जब हम राष्ट्रीय ध्वज दिवस मना रहे हैं तो 22 जुलाई 1947 को भारत ने सिर्फ एक राष्ट्रीय ध्वज नहीं अपनाया था, उसने एक ऐसे प्रतीक को अपनाया जो कई पीढ़ियों की उम्मीदों, बलिदानों, सपनों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। तिरंगे की हर लहर एक कहानी कहती है, ये कहानी है हिम्मत और मजबूती की, ये कहानी है एकता की, ये कहानी है आजादी की, और यही कहानी हम सबको एक साथ आगे बढ़ा रही है।
0: So today, whenever you are at home or at work or you know, you're commuting, just take a moment to look at our national flag with renewed pride and gratitude, because behind every thread lies the courage of those who fought for freedom, the wisdom of those who built our nation, and the promise of those who will shape its future. And until next time, stay informed, stay inspired, and continue to uphold the values that make our nation strong. Jai Hind. And moving on to our next topic, well, today is also World Brain Day, Sir Firozi. And agar brain ki jaisi baat karte hain, you know, I am totally fascinated by

0: By this organ of our, you know, there are so many contours within the brain, जैसे लगता है उन परतों में अभी भी कितने रहस्य छुपे हैं जो साइंटिस्ट नहीं पता कर पाए हैं. एंड एवरी डे इज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग न्यू, बट टूडे ऑफ कोर्स इज एक्स्ट्रा स्पेशल बिकॉज इट रिमाइंड्स अस टू अप्रिशिएट वन ऑफ द मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी, आवर ब्रेन. दैट्स राइट, टूडे दैट इज 22nd जुलाई इज ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड वाइड एज वर्ल्ड ब्रेन डे. आप ये सोचिए सर फिरोजी कि इंसान का एक ब्रेन ही एक ऐसा ऑर्गन है. अगर आप जो है फॉर एग्जाम्पल हम अपनी फॉर एग्जाम्पल जैसे यादें हैं वो अपने ब्रेन समेटे हुए, इफ यू टेक दैट अवे फ्रॉम अ पर्सन लाइफ
1: कुछ नहीं बचेगा इंसान,
0: नथिंग. एंड यू नो देर आर सम डिजीजेज इन विच पीपल यू नो एल्जाइमर्स जो बहुत ज्यादा हो जाता है,
1: जाते हैं चीजों को.
0: एग्जैक्टली, सो यू कांट इवन इमेजिन दैट ये कितनी बड़ी ऊपर वाले की एक कह सकते हैं नेमत है. दैट वी शुड बी थैंकफुल एवरी सिंगल breath of our life if our brain is working properly. So yes, on this day, that is 22nd July, a global healthcare awareness campaign was established by the World Federation of Neurology. This important day encourages people everywhere to understand the importance of brain health and to work together to prevent neurological disorders. This year's inspiring theme is Brain Health, Access for All.
1: और सायरा हमारे जो शरीर के अलग अलग अंग हैं वो एक टाइम पर यू नो रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा दिमाग है वो हर पल कुछ ना कुछ करता रहता है. इनफैक्ट जब हम ये प्रोग्राम भी कर रहे हैं, जो हमारे श्रोता हैं जब वो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, तब भी उनका जो दिमाग है वो मेरी और आपकी आवाज़ें सुनने, हर शब्द को समझने, जानकारी याद रखने, दिल की धड़कन को रेगुलेट करने, सांस लेने की प्रक्रिया को कंट्रोल करने और यहाँ तक कि ये तय करने में भी मदद कर रहा है कि इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद आप क्या करेंगे. तो क्या आपके दिमाग में सोचा है सायरा, आप क्या करने वाली हैं प्रोग्राम के बाद?
0: Well, by the time we end the show, it's almost sundown and people probably head to their evening tea, isn't it?
1: बिल्कुल. और अब हमने बात करी थी कि कुछ ट्रिविया भी जान लें अपने दिमाग से जुड़ा हुआ. तो इंसानी दिमाग में लगभग 86 अरब नर्व सेल्स होते हैं जो खरबों कनेक्शन के जरिए आपस में बातचीत करते हैं. और जैसा कि हमने कहा कि हमारा दिमाग असल में कभी भी काम करना बंद नहीं करता, यहाँ तक कि जब हम सो भी रहे होते हैं तब भी ये यादों को समेटने, व्यवस्थित करने, सेल्स की मरम्मत करने और अपने शरीर को अगले दिन के लिए तैयार करने में व्यस्त रहता है. तो ये कमाल की बात है सायरा.
0: Absolutely, and in fact, you can imagine that you know the dreams that we have, they're all because of our brain. So sometimes you know that still are you know the, even science has not explored the world of dreams and what happens, what invokes dreams. Is it indicative of another life that we had or is it just our subconscious? So brain is an enigma and it truly fascinates me nonetheless. And well, despite its importance, sadly brain health is often overlooked, and especially these days when there is so much of stress, lifestyle has become so haphazard, log apne dimag ki health ko bahut zyada ignore karte hain, which is absolutely not right, not correct. And in fact, I think what most of the scriptures say, most of positive people who follow one mantra in life is that लिव इन द मोमेंट.
1: जी,
0: जो भी है बस यही एक पल है.
1: जितना आप भविष्य के बारे में सोचते हैं मुझे लगता है कि इकट्ठा होता जाता है स्ट्रेस.
0: यस, एब्सोल्युटली. सो जस्ट यू नो गिव योर बेस्ट इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड देन लीव द रेस्ट. एंड ऑफ कोर्स दे वी ऑल गो थ्रू हार्ट ब्रेक्स, वी ऑल गो थ्रू सम इमोशनल अपहीवल्स इन आवर लाइफ, बट इजियर सेड देन डन. बट सिंस यू कैन, ब्रेन इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड एंड आई फील दैट यू नो इफ वी ट्राई टू ट्रेन आवर ब्रेन तो कोई भी इमोशन, फॉर एग्जाम्पल जैसे अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ हो गई आपके उसमें, तो याद तो जाहिर सी आती है, बट साइंस सेज दैट ह्यूमन इमोशन दैट इज वेरी स्ट्रांग, इट्स ओनली फॉर 90 सेकेंड्स. सो जस्ट कीप टेल योर सेल्फ, अक्नोलेज इट दैट ओके आई एम सैड टूडे, बट बी सैड फॉर नॉट मोर देन You know, 2 minutes.
1: सबसे पहले आपको ये चीज एक्सेप्ट कर लेनी है, उसके बाद लेट गो वाला एटीट्यूड अपनाकर आपको एक्सेप्ट करने के बाद छोड़ देना है और आज के मोमेंट में जीना है.
0: या और कई बार मतलब ये भी बहुत से लोग काउंटर करते हैं कि उसको छोड़ना भी नहीं पड़ता, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल यू नो इफ यू लॉस्ट अ डियर वन, हम लोग कभी ता कयामत तक कि हम लोग उसको जो है नहीं छोड़ सकते उन चीजों को, पर आप छोड़िए ना, बट इतना भी ना पकड़िए कि वो
1: ओवर पावर ना करें.
0: या दैट शुड नॉट बी द केस. सो एज साइंस सेज दैट एनी इमोशन दैट यू एक्सपीरियंस इट लास्ट फॉर 90 seconds. सो आप 30 seconds चलिए और ले लिया, आप 120 seconds, 2 minutes फुल आप जितना रोना है रो लीजिए, लेकिन उस चीज़ को फिर उसके ज़्यादा प्रोलॉन्ग मत करिए, बिकॉज ऑब्वियसली देर आर सो मेनी ब्लेसिंग्स ऑल्सो दैट वी हैव अराउंड. एंड जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक तारा था माना वो बेहद प्यारा था. तो बहुत सी ऐसी चीज कहते हैं दैट यू नो समटाइम्स पोएट्स एंड ऑल बहुत गहरी गहरी बातें कह जाते हैं एंड वी प्रॉब्ली डोंट थिंक ऑन देम बट वी शुड.
1: और अब बात कर रहे हैं वर्ल्ड ब्रेन डे की, तो इसके जो 5 मुख्य पिलर हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं सायरा. इसका जो सबसे पहला पिलर है वो है इक्विटी यानी समानता. तो दिमाग की सेहत, आपकी इनकम, आपके सोशल बैकग्राउंड या आप कहाँ रहते हैं इस पर निर्भर नहीं होनी चाहिए. चाहे कोई बड़े शहर में रहता हो या दूर दराज के गाँव में, हर किसी को स्वास्थ्य सेवाएं पाने का समान अधिकार है. और स्वास्थ्य एक मानव अधिकार है और आपके दिमाग की सेहत भी इससे अलग नहीं है.
0: एंड ऑफ कोर्स द सेकंड पिलर इज अर्ली intervention, third is prevention, and of course we all know that healthy habits today will build a healthier brain tomorrow. And of course the final pillar, of course we can say, is global action. And awareness is very important, and or not just only awareness, because we all know ke sirf awareness nahi, there are so many people who are making policies, the governments are there, the professionals are there, researchers are there. So every policy, every awareness campaign and every healthcare initiative can help create a healthier future.
1: सायरा अब समय आ गया है कि अपने श्रोताओं को लेकर चलें देश भर की परिक्रमा पर. तो सबसे पहले कहाँ चल रही हैं?
0: वेल वी आर स्टार्टिंग आवर जर्नी फ्रॉम अप नॉर्थ, इनफैक्ट नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट आप कह सकते हैं, फ्रॉम सिक्किम. विद सिक्किम स्पिरिट इन देयर हार्ट्स एंड डिटर्मिनेशन इन एवरी स्ट्राइड, द मैजिकल 4 एंड्योरेंस टीम एम्बार्क्स ऑन एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी हिमालयन जर्नी. एज सिक्किम सेलिब्रेट्स 50 years ऑफ स्टेटहुड, द टीम्स चैलेंजिंग लद्दाख एक्सपीडिशन इंस्पायर्स यूथ टू एम्ब्रेस courage, perseverance and resilience while strengthening the message of environmental responsibility and national unity. Marking 50 years of Sikkim statehood, Magical 4 embarks on a challenging high-altitude run across Ladakh's highest motorable mountain passes.
2: The Magical 4 Endurance Team, Anup J. Panya, Basant Pradhan, Bhupendra Hangsubba and Lab Burman, supported by Arjun Sakya, has begun the third phase of its Sikkim Statehood Golden Jubilee commemoration run. The expedition involved running over 600 km from Kardung La to Umling La, crossing 8 high-altitude motorable passes at elevation exceeding 5,000 meters. The run was ceremonially flagged off from Kardung La by Dr. Kejang Dorji, former chairman Block Development Council, Leh. The expedition celebrates 50 years of Sikkim statehood while promoting endurance, environmental awareness, youth inspiration, national integration and civil-military cooperation in the Himalayan border regions.
3: Magical 4 हमारे सिक्किम को राज्य बनने के 50 साल का ये सेलिब्रेशन ये लोग मनाने जा रहे हैं और आज इनका यहाँ से लेके उमलिंगला तक इनका टारगेट रहेगा. अगस्त के 4 तारीख तक ये लोग उमलिंगला पहुंच जाएंगे. इससे पहले ये लोग श्रीनगर से आए हुए और इनका टारगेट 10 हाई पासेस को क्रॉस करना है. सिक्किम को राज्य बनने के बाद 50 साल हो गए हैं, इसका सेलिब्रेशन ये लोग मना रहे हैं. मेरे तरफ से और सभी लद्दाख के वासियों की तरफ से हम इन चारों को बेस्ट ऑफ लक और गुड लक कहना चाहेंगे.
2: The Magical 4 expedition continues to inspire with its message of courage, discipline and perseverance, carrying the spirit of Sikkim across the Himalayas while celebrating 50 years of statehood. With Mainak Chatterjee, Dilan Dulal, Akashvani News, Gangtok for Parikrama.
1: और सायरा अब अपने परिक्रमा कार्यक्रम को थोड़ा कल्चरल टच भी देते हुए चलते हैं. चल रही हैं देवभूमि उत्तराखंड की ओर, जहां सावन की शुरुआत के साथ प्रकृति, संस्कृति और आस्था का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है. हमारी संवाददाता इस पर खास रिपोर्ट पेश कर रही हैं.
4: उत्तराखंड में सावन का महीना केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं देता, बल्कि ये प्रकृति, संस्कृति और अध्यात्म के अद्भुत मिलन का भी प्रतीक है. इसी भाव को लोक पर्व हरेला और जागेश्वर धाम के श्रावणी मेले में एक बार फिर जीवंत कर दिया है. हरेला यानी हरियाली का पर्व, सदियों से उत्तराखंड में यह त्यौहार धरती, जल, जंगल और जीवन के प्रति आभार व्यक्त करने का माध्यम रहा है. इस बार भी पूरे प्रदेश में लाखों पौधे लगाने का अभियान चलाया गया. राजभवन से लेकर गांव तक, विद्यालयों से लेकर वन क्षेत्रों तक, हर हाथ में एक पौधा और हर मन में प्रकृति संरक्षण संरक्षण का संकल्प दिखाई दिया। राज्य सरकार ने भी इस अवसर पर देश भर में 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य लेकर एक पेड़ माँ के नाम अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। खास बात ये रही कि हरेला के अवसर पर एक ही दिन में प्रदेश भर में 12 लाख से अधिक पौधों का रोपण किया गया। उधर कुमाऊं में स्थित विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में श्रावणी मेले का शुभारंभ श्रद्धा और उत्साह के साथ हुआ। भगवान शिव को समर्पित 100 से अधिक प्राचीन मंदिरों का ये समूह सावन में विशेष आध्यात्मिक आभा से भर उठता है। दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु जटा गंगा के तट पर स्थित इस पावन धाम में दर्शन कर आध्यात्मिक शांति का अनुभव करते हैं। श्रावणी मेले के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जागेश्वर की प्राचीन विरासत को सुरक्षित रखते हुए यहां श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। हरेला और श्रावणी मेला मिलाकर उत्तराखंड की उस पहचान को सामने लाता है जहां प्रकृति की हरियाली और शिव की आराधना एक दूसरे की पूरक है। यही संदेश इस पर्व को केवल एक परंपरा नहीं बल्कि आने वाले पीढ़ियों के लिए प्रकृति संरक्षण, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक सहभागिता का जीवंत संकल्प बनाता है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी देहरादून से साक्षी सिंह।
0: And Defence Minister Rajnath Singh today virtually flagged off the first ever Troy Services all-women expedition, Samudra Pradakshina, on board ISV Triveni at Mumbai's historic gateway of India. Let's hear more from our correspondent.
5: So you are back on land after 10 months. How are you feeling?
6: It's a very surreal experience and I'm yet to come back on the land because spending 10 months on sea is, you know, the sea gets to you and you are still finding your land legs. That's something which is happening with me right now.
5: So 10 months in open sea. How was the experience? What were the challenges?
6: It was a very different experience because whatever we have experienced in our training, it was certainly not there. It is something which you have to go and experience to understand what exactly it is. Because being in tropical climate, going into temperate and then much more colder climates, everything changes on the sea. The temperature changes, your water changes, you yourself are changing, your environment is changing. So it's a process in all together. So
0: that was the expedition leader, Lieutenant Colonel Anuja Varudkar, in conversation with our correspondent Ankita Apte.
1: श्रोताओं, अब चल रही हैं खेल के मैदान की ओर। बात कर रही हैं चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की, जिसमें भारत के आयुष शेट्टी ने आज पुरुष सिंगल्स में इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे।
0: एंड नाउ बिजनेस न्यूज। वेल, बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस डिक्लाइन नियरली 1% टुडे। सेंसेक्स शेयर्ड 715 पॉइंट्स टू क्लोज एट 76,755। निफ्टी सेटल्ड एट 23,996। फॉर मोर अपडेट्स लिसन टू आवर शो मार्केट मंत्रा एट 6:30 PM दिस इवनिंग।
1: और सायरा, अब याद कर लेते हैं उन खास हस्तियों को जो आज ही के दिन इस दुनिया में आई या हमसे जुदा हुई। सबसे पहले याद कर रहे हैं सर्वश्रेष्ठ गायकों में से एक भारत के मुकेश की बात कर रहे हैं। मुकेश चंद्र माथुर इनका पूरा नाम था। इनके अंदर वो काबिलियत थी जो इन्हें एक अच्छा गायक बनाने के लिए प्रेरित करती, और हुआ भी यही। इन्होंने निर्दोष फिल्म में अदाकारी करने के साथ साथ गाने भी खुद गाए। इसके अतिरिक्त इन्होंने माशूका, आह अनुराग और दुल्हन में भी बतौर अभिनेता काम किया। वहीं गायक के रूप में 1945 में इन्होंने फिल्म पहली नजर में अपने करियर की शुरुआत की। आइए सुनते हैं इनकी फिल्म के कुछ चुनिंदा गाने।

आज बाबला मेहता की भी पुण्यतिथि है। ये पार्श्व गायक, संगीतकार और ऑडियो इंजीनियर थे। इन्होंने अपने करियर के दौरान 250 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए और 10 एकल एल्बम जारी किए। इनका गीत तेरे मेरे होठों पे इनके करियर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ।

0: आज संदीप पांडे की का जन्मदिन है। ये देश के सबसे कम उम्र के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता हैं। संदीप पांडे देश के उपेक्षित तथा हाशिए पर जी रहे लोगों की दशा देखकर इतना द्रवित हुए कि उन्होंने उस वर्ग की बेहतरी के लिए काम करने का निर्णय लिया। अपने इस इरादे को पूरा करने के लिए उन्होंने आशा परिवार नाम की एक संस्था खड़ी की तथा उसके माध्यम से देश के दलितों और अल्पसंख्यकों की पक्षधरता के लिए काम करने लगे। इन्होंने अपनी संख्या तथा अपने दल के साथ पूरे जोर शोर से अपना कार्यक्रम लागू करना शुरू किया और उसके लिए देशव्यापी जागरूकता अभियान चलाया। देश की दशा में सुधार लाने वाले इस कार्यक्रम के लिए इन्हें वर्ष 2002 का मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया। आज ही हिम्मत शाह का भी जन्मदिन है। ये भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। इनके काम की विशिष्टता इनके ब्यौरे में रहा करती है। बहुत मामूली सी समझने जाने वाली बेजान मिट्टी इनके हाथ के स्पर्श से जीवन और जागरूक होती है। और सायरा, अब समय हो चला है अपने श्रोताओं से विदा लेने का। इजाजत दीजिए सरफिरोजी और सायरा मुश्तबा को परिक्रमा कार्यक्रम यही समाप्त करने की। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की। उन्होंने इस घटना को आपत्तिजनक और सदन की गरिमा तथा मर्यादा के विरुद्ध बताया। इससे पहले सुबह अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूँ कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
1: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही तीसरी बार स्थगन के बाद दोपहर में फिर शुरू हुई तो भी विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
3: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल

0: कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अधिकारियों को जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया है। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष करने पर विचार करने का निर्देश दिया। न्यायालय की पीठ ने पूरे देश में जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की समान मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकारी नीतियों का उद्देश्य बच्चों सहित सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एक मुक्त, सुरक्षित, विश्वसनीय और उत्तरदायी इंटरनेट प्रदान करना है। लोकसभा में श्री वैष्णव ने कहा कि 2023 में लागू डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रोसेसिंग को विनियमित करने के लिए कानूनी ढांचा स्थापित करता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने उन्नति हुड्डा को हराया, वहीं आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को शिकस्त दी। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Both Houses of Parliament have been adjourned for the day following opposition parties' protests over various issues including NEET paper leak case and student protests. When the Lok Sabha assembled after the second adjournment at 2 p.m., the opposition again started sloganeering over the NEET issue. Amid uproar, the House passed a resolution to suspend Trinamool Congress MP Kalyan Banerjee for the rest of the monsoon session. Presiding Officer Krishna Prasad Eneti said Kalyan Banerjee made objectionable and unparliamentary remarks targeting women MPs, which was formally brought to the notice of the chair. Minister of State for Parliamentary Affairs Arjun Ram Meghwal moved the resolution, which was passed by voice vote. As the ruckus continued, the presiding officer adjourned the House till tomorrow. Earlier, speaking in the House, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government is fully prepared for a discussion on the NEET paper leak issue. The minister said any discussion in the House must be conducted under established rules.
2: Sarkar NEET paper leak.
3: The government is fully prepared to discuss the NEET paper leak issue. I request that the Honorable Speaker discuss with the floor leaders of all parties and decide when the discussion should take place, how long it should continue and under which rule it should be conducted. The government is completely ready to discuss the NEET paper leak issue.
2: Paper leak pe charcha karne ka tayar hai.
1: The Rajya Sabha also witnessed similar scenes. When the House reassembled after the third adjournment at 3 p.m., the opposition parties protested over the NEET and other issues. Deputy Chairman Harivansh said the government is ready for discussion on the NEET issue and the opposition should cooperate in running the House. Speaking in the upper house, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju accused the Congress Party of creating obstacles in conducting the discussion in the House by imposing new conditions. Amid uproar, the Deputy Chairman adjourned the House till tomorrow. Defence Minister Rajnath Singh has expressed concern over the ongoing protests in Delhi, saying the centre is deeply sensitive to the sentiments and concerns of the youths and is ready to listen and address every concern raised by students. Mr. Singh was talking to media in New Delhi.
4: और ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।
3: इट इज डीपली अनफॉर्चुनेट दैट सम पीपल आर ट्राइंग टू यूज द स्टूडेंट्स एंड यूथ ऑफ आर कंट्री एज पॉलिटिकल टूल्स टू सर्व देयर ओन पॉलिटिकल इंटरेस्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र

आकाशवाणी एफ एम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर 5:57 और कार्यक्रम गाते गुनगुनाते, ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप गीत सुनते भी हैं, गुनगुनाते भी हैं और कुछ उन गीतों के बारे में आपको ऐसी जानकारी भी मिलती है जिसको सुनकर आपको मजा आता है। कई बार वो जानकारी आपको पहले से होती है और कई बार कुछ जानकारी आपको पहली बार एफएम गोल्ड से पता चलती है। आप तक ऐसे ही कुछ गीत लेकर आज आई हूँ मैं, नईम अख्तर, और गीत रहेंगे सिर्फ और सिर्फ 80 और 90 के दशक के। सिर्फ 20 साल के बीच में जो अच्छे गीत, ऐसे गीत जो गीत आपने गाए, गुनगुनाए और आपने पसंद किए, उन्हीं गीतों को हम शामिल करते हैं इस कार्यक्रम में। आज हम सोच रहे हैं कुछ ऐसे गीत आप तक लेकर के आए जाएं, आपको कुछ ऐसे गीत सुनवाए जाएं जिन गीतों में, देखिए अदाकारी तो फिल्मों में होती होती है ना, संगीत भी फिल्मों में होता ही होता है क्योंकि संगीतकार संगीत देता है, इसी तरह गीत भी फिल्मों में होता है क्योंकि गीतकार गीत लिखता है। और ये गीत और संगीत जो होता है ये हम तक बखूबी पहुंचाने का काम करता है गायक या गायिका। लेकिन हमारे इसी फिल्मी जगत में कुछ ऐसे गीत भी हैं जहां आपको ऐसी आवाजें सुनने को मिलती हैं जिन्हें आप पर्दे पर अभिनय करते हुए तो देखते हैं, अदाकारी करते हुए देखते हैं, लेकिन ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये कभी गीत गा सकते हैं, और गा सकते हैं तो इतना अच्छा गा सकते हैं कि उन्हें सुनकर हमें भी गुनगुनाने पर मजबूर होना पड़े। तो बस ऐसे ही कुछ गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें आज हम प्रोफेशनल सिंगर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन अदाकारों की बात करने वाले हैं।

इन्होंने आपके लिए फिल्म में अपना किरदार निभाने के साथ साथ कोई गीत भी गाया और वो गीत आपने पसंद भी किया। जी हाँ, अभिनेताओं द्वारा गाए गए फिल्मी गीत। तो कैसा रहे अगर हम आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत एक ऐसे गीत के साथ करें जो गीत और किसी ने नहीं बल्कि बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने गाया है। जी हाँ, क्यों भाई, कैसा रहेगा? मिस्टर नटवरलाल, अक्स, बागबान, सिलसिला, पुकार, पा, नसीब, भूतनाथ, बुढ़ा होगा तेरा बाप, इस जैसी अनेक फिल्में हैं जिनमें आपने उनकी आवाज में बहुत ढेर सारे गीत सुन रखे हैं। लेकिन हम सुनवाने वाले हैं 70 के या 90 के दशक के बाद के कोई गीत नहीं, बल्कि 80 या 90 के दशक के बीच में कोई एक गीत। तो कैसा रहे अगर हम उस गीत के साथ शुरुआत करें जिस गीत को उन्होंने प्रॉपरली पहली बार अपने करियर में फिल्मों के लिए गाया था, 1981 की फिल्म लावारिस, जिसे उन दिनों घर घर में बच्चे बच्चे ने पसंद किया था। एक वर्जन इसका अलका याग्निक ने गाया था, वो भी बहुत पसंद किया गया, लेकिन वो प्रोफेशनल सिंगर थी और अमिताभ बच्चन नॉन प्रोफेशनल सिंगर होते हुए, मतलब सिंगर तो वो थे ही नहीं, सिंगिंग की कभी उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, कहीं कोई गीत गा करके उन्होंने कभी अपनी गायकी का लोहा नहीं मनवाया, लेकिन उन्होंने जब इस फिल्म में गीत गाया तो हाथों हाथ लिया गया और आज तक गाया जाता है।

0: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
1: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
0: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
1: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
0: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अंदाजे 60 कोटी लोक 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचारांसाठी पात्र ठरले आहेत. आतापर्यंत 12 कोटींहून अधिक मोफत उपचार देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांच्या वैद्यकीय खर्चात अंदाजे 2 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. आजच आयुष्मान ऍप डाउनलोड करा आणि आयुष्मान कार्ड बनवा. अधिक माहितीसाठी 14555 वर कॉल करा.
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ.
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक. कितना ब्लॉक करूँ यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है.
2: तो क्या करूँ?
3: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो. कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट. बस कुछ सेकंड्स का काम.
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है. सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें. ट्राई DND ऐप. डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग.

जो गोविंदा फैंस हैं उन्होंने तो पूरा पूरा पहचान लिया, लेकिन जो गोविंदा के फैंस नहीं हैं उन्हें बता देते हैं कि ये आवाज गोविंदा की है 1992 की फिल्म शोला और शबनम से, और ये वो फिल्म है जो दिव्या भारती की भी डेब्यू मूवी थी। मजा लीजिए गोविंदा की आवाज का, क्योंकि उनके डांस का, कॉमेडी का, अदाकारी का मजा तो हम सब ने बहुत ले रखा है, लेकिन आप सुनिए इनकी आवाज में भी क्या जादू है।

0: join the Mega Plantation Drive. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आरजी आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
5: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
4: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
5: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
4: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
6: पांच बजकर 26:29 101.1 MHz पर यह है आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल, जिस पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गाते गुनगुनाते, जिसमें हम 80 और 90 के दशक के ऐसे गीतों को लेकर के आते हैं जिन गीतों को आपने उस दौर में सुना, पसंद किया और आज भी कहीं ना कहीं वो आपके दिल में, आपके दिमाग में अपनी जगह बनाए हुए हैं। और आज उन्हीं गीतों में से चंद गीत हम ऐसे चुनकर लाए हैं जो प्रोफेशनल सिंगर्स के गाए हुए नहीं हैं, कुछ ऐसे सिंगर्स के गाए हुए नहीं हैं जो जिन्होंने संगीत सीखा है। हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे कलाकारों के गीत जिन्हें हम और आप अदाकार के रूप में, अदाकारा के रूप में जानते हैं, लेकिन उन्होंने इन गीतों को गाया और ये गीत पसंद भी किए गए। 1986 में एक फिल्म आई थी अमृता सिंह और अनिल कपूर की, फिल्म का नाम था चमेली की शादी और इस फिल्म का टाइटल ट्रैक अनिल कपूर ने गाया था। सुनते हैं उसी गीत को और थोड़ा सा गुदगुदा लेते हैं खुद को।

0: लेट्स ज्वाइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।

0: आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 5:36 हुए हैं। कार्यक्रम आप जानते ही हैं, गाते गुनगुनाते, और गाते गुनगुनाते में 80 और 90 के दशक के कुछ ऐसे गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं जो गीत किसी सिंगर ने नहीं बल्कि उन अदाकारों ने गाए हैं जिन्होंने उस फिल्म को पर्दे पर, उस फिल्म में अपने किरदार को पर्दे पर जीवंत किया था। और उन्हीं इसी सिलसिले में हमने उन्हीं कलाकारों में से किसी एक कलाकार यानी आमिर खान की आवाज में आपको एक गीत सुनाया। जी हाँ, मिस्टर परफेक्शनिस्ट जो आजकल चर्चा में काफी है, किसी और रीजन को लेकर, अपनी अदाकारी या सिंगिंग को लेकर नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि उन्होंने जो ये गीत गाया वो गीत बहुत हिट हुआ था और आज भी लोग उसको पसंद करते हैं। ये 1998 की फिल्म थी जिसमें उनका साथ निभाया था रानी मुखर्जी ने। अब क्योंकि आमिर खान की बात चली है तो क्यों ना इस खान तिकड़ी को पूरा कर दें 80 और 90 के दशक के गीतों को लेकर के। तो चलिए हम सुनते हैं 1999 की फिल्म हेलो ब्रदर का सलमान खान की आवाज में वो गीत जो शायद फिल्मों के लिए गाया गया उनका पहला ही गीत था और क्या हिट हुआ था वो गीत। आप सुनिए और सुनकर के अंदाजा लगाइए कितना सुर में गाते हैं सलमान खान।
1: रानी देख, राजा ये मटकी एक फटकी में तोड़ता है।

बाद में तो सलमान खान ने बॉडीगार्ड, दबंग, वांटेड, सुल्तान, रेस 3 जैसी कई फिल्मों में अपनी आवाज दी, कई गीतों को उन्होंने गाया, लेकिन ये वो पहला गीत था, शायद वो पहला गीत था जिस गीत में पहली बार उन्होंने अपनी आवाज दी थी।

इस गीत में शाहरुख खान की आवाज थी जो पहली बार उन्होंने गीत गाया था। ये तो खास बात है ही, इससे भी ज्यादा खास बात जो मुझे अपील करती है, जिसके लिए मैं इस गीत की गायिका हेमा सरदेसाई की मुरीद हो गई, वो ये है कि उन्होंने बिल्कुल ऐश्वर्या राय के स्टाइल में गाया, जिस तरह ऐश्वर्या राय बोलती है। इस गीत को सुनिए, ऐश्वर्या राय की आवाज को, उनके बोलने के स्टाइल को याद कीजिए और मैच कीजिए, क्या हेमा सरदेसाई ने उनके करीब नहीं गाया।

0: बताया रे।
1: क्या बताया रे?
2: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
3: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
2: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
3: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
2: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
4: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अंदाजे 60 कोटी लोक 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचारांसाठी पात्र ठरले आहेत. आतापर्यंत 12 कोटींहून अधिक मोफत उपचार देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांच्या वैद्यकीय खर्चात अंदाजे 2 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. आजच आयुष्मान ॲप डाउनलोड करा आणि आयुष्मान कार्ड बनवा. अधिक माहितीसाठी 14555 वर कॉल करा.
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ.
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक. कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है.
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो. कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट. बस कुछ सेकंड्स का काम.
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है. सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें. ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग.
4: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है.

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अंदाजे 60 कोटी लोक 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचारांसाठी पात्र ठरले आहेत. आतापर्यंत 12 कोटींहून अधिक मोफत उपचार देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांच्या वैद्यकीय खर्चात अंदाजे 2 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. आजच आयुष्मान ॲप डाउनलोड करा आणि आयुष्मान कार्ड बनवा. अधिक माहितीसाठी 14555 वर कॉल करा.
1: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए.
2: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है.
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें.
2: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें. ये क्विक रिफंड में सहायक होती है. सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड.
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता. आयकर विभाग, भारत सरकार.
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है. पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है. मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा. तब बोला, अब लगवा ही लेता हूँ. PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in.
4: हर घर सूर्य घर.
5: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें. रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे. अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं.
6: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया. देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो. मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है. मतलब सोलर पैनल की. मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा.
7: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर.
4: हर घर सूर्य घर.
8: बात है 1960 की फिल्म की बात है, इसलिए हम उन फिल्मों को नहीं आप यहाँ पे गीत नहीं सुनवाएंगे. हाँ, पद्मिनी कोल्हापुरे की अगर हम बात करें तो पद्मिनी कोल्हापुरे ने कई फिल्मों में अपनी आवाज दी है, जिनमें से एक गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं, फिल्म दाना पानी का अगर वक्त मिला तो सुनवा पाएंगे. और ऐसे ही एक और बहुत ही सुपरहिट गीत सुपरहिट एक्ट्रेस पर पिक्चराइज था, 1989 की फिल्म थी चांदनी.
9: चांदनी

1989 में आई थी फिल्म चांदनी और इसके सही 10 साल बाद आई थी 1999 में फिल्म खूबसूरत, जिसमें मुख्य कलाकार थे संजय दत्त और उर्मिला मातोंडकर। और इस फिल्म में एक गीत गाया था संजय दत्त ने।

0: तुमने कभी काला ताजमहल देखा है?
1: क्या, क्या, क्या?
0: कभी बिना पानी का समंदर देखा है?
1: नहीं तो।
0: रसगुल्ले से रसगुल हो जाए तो पता है कैसे दिखता है?
1: कैसा, कैसा, कैसा?
0: वो देखो, जीता जागता नमूना मिस शिवानी।
2: ए, क्या लगा रखा है ये सभा? क्या लगा रखा है?
0: अरे बोर हो रहे हैं यार, कुछ तो मस्ती करने दो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, अरे कुछ तो करो यार।

0: अदाकारों का या अदाकाराओं का इस तरह गीत गाना कोई नई परंपरा की नींव नहीं डली थी, कोई नई परंपरा शुरू नहीं हुई थी 1957। वैसे तो दिलीप कुमार पर कई गाने पिक्चराइज्ड हैं जिसमें उन्होंने अपनी आवाज दी है, लेकिन दिलीप कुमार का गाया 1957 की फिल्म मुसाफिर का गीत कभी सुनिएगा और फिर बताइएगा कि दिलीप कुमार गायक ना होते हुए भी कितना बेहतरीन गाते थे और कितना बेहतरीन गा पाए थे। ऐसे ही अशोक कुमार की बात करें तो 1968 की फिल्म आशीर्वाद के साथ ही ये माना जाता है कि उन्होंने शुरुआत की थी रैप की हिंदी सिनेमा में, और इसके अलावा भी उन्होंने और कई गीत गाए थे। और बाकी अभी हम लेके भी आए थे आपके लिए, लेकिन वक्त नहीं है, तो इसलिए अभी के लिए आपसे नई मख्तर इजाज़त चाहती है कार्यक्रम गाते गुनगुनाते से। फिर भी कभी किसी और कार्यक्रम में हम बात करेंगे और गीत भी सुनेंगे। इजाज़त दीजिए।
1: जागृति शर्मा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की। इससे पहले सुबह अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
1: उधर राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही तीसरी बार स्थगन के बाद दोपहर में फिर शुरू हुई, तब भी विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन में चलाने में सहयोग करना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
3: ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित

0: conflict, intolerance and division. In Jammu and Kashmir, a policeman was killed today in a terrorist attack at the Lal Chowk area of Anantnag district. A search operation is underway to apprehend the terrorists. Lieutenant Governor Manoj Sinha and Chief Minister Omar Abdullah paid tributes to the slain policeman and assured that those responsible would be brought to justice. In Sikkim, rescue teams have traced 8 more bodies inside the under-construction tunnel at Samardung in Namche district. However, the bodies could not be retrieved. Officials said poor visibility and methane gas leakage have made the rescue operation highly challenging. So far, 13 bodies have been recovered. The government has disabled 50 OTT platforms for public access in the country in the last 2 years for displaying obscene content. In a written reply in the Lok Sabha, Minister of State for Information and Broadcasting, Dr. L. Murugan, said the government regularly takes action against such intermediaries and OTT platforms based on complaints. In China Open Badminton, double Olympic medalist PV Sindhu advanced to the second round of women's singles after defeating compatriot Unnati Huda in a round of 32 clash at Changzhou this afternoon. In the men's singles, Ayush Shetty defeated world number 11 Alvi Farhan of Indonesia to reach the round of 16. And with that, we end this news bulletin.
1: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
2: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
2: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
4: तो क्या करूं?
5: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
4: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
5: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
6: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अंदाजे 60 कोटी लोक 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचारांसाठी पात्र ठरले आहेत. आतापर्यंत 12 कोटींहून अधिक मोफत उपचार देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांच्या वैद्यकीय खर्चात अंदाजे 2 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. आजच आयुष्मान ॲप डाउनलोड करा आणि आयुष्मान कार्ड बनवा. अधिक माहितीसाठी 14555 वर कॉल करा.
1: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें. रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे. अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं.
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है. पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है. मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in.
3: हर घर सूर्य घर.
4: को तेज बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया. सरकार ने देश भर में इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम यानी IDASP को मजबूत किया है. इसके माध्यम से विभिन्न राज्यों और जिलों से बीमारियों से जुड़ी जानकारी नियमित रूप से एकत्र की जाती है, ताकि किसी भी असामान्य स्थिति का समय रहते ही पता लगाया जा सके. इस व्यवस्था को और आधुनिक बनाने के लिए इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है. यह एक

0: डिजिटल प्रणाली है जिसके माध्यम से विभिन्न राज्यों और स्वास्थ्य संस्थानों से वास्तविक समय में जानकारी प्राप्त होती है। देश में वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब्स का भी लगातार विस्तार किया गया। इन प्रयोगशालाओं की मदद से नए वायरसों की पहचान, उनकी जांच और वैज्ञानिक विश्लेषण पहले की तुलना में कहीं अधिक तेजी से संभव हो पा रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी NCDC भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बदलाव वन हेल्थ दृष्टिकोण को अपनाना है। इसका अर्थ है कि इंसानों, पशुओं और पर्यावरण के स्वास्थ्य को अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानकर काम किया जाए, क्योंकि अधिकांश नई संक्रामक बीमारियां पशुओं से इंसानों में फैलने वाले संक्रमणों से जुड़ी होती हैं। इसीलिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ अब विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को महामारी की रोकथाम का महत्वपूर्ण आधार मानते हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के माध्यम से जिला स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं, क्रिस्टल केयर सुविधाओं और आपातकालीन स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में निवेश बढ़ाया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में किसी महामारी जैसी स्थिति में केवल बड़े शहर ही नहीं बल्कि छोटे जिलों की स्वास्थ्य व्यवस्था भी प्रभावी ढंग से काम कर सके। इसके साथ ही राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया दल यानी नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। किसी भी बीमारी के असामान्य प्रकोप की स्थिति में यह दल तेजी से प्रभावित क्षेत्र में पहुंचकर जांच, नियंत्रण और समन्वय का कार्य करता है। समय समय पर राज्यों के साथ मॉक ड्रिल।
1: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
2: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
2: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
3: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अंदाजे 60 कोटी लोक 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचारांसाठी पात्र ठरले आहेत. आतापर्यंत 12 कोटींहून अधिक मोफत उपचार देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांच्या वैद्यकीय खर्चात अंदाजे 2 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. आजच आयुष्मान ॲप डाउनलोड करा आणि आयुष्मान कार्ड बनवा. अधिक माहितीसाठी 14555 वर कॉल करा.
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ.
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक. कितना ब्लॉक करूँ यार.
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है.
2: तो क्या करूँ?
3: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो. कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट. बस कुछ सेकंड्स का काम.
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा.
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है. सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें. ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग.
4: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है.

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अंदाजे 60 कोटी लोक 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचारांसाठी पात्र ठरले आहेत. आतापर्यंत 12 कोटींहून अधिक मोफत उपचार देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांच्या वैद्यकीय खर्चात अंदाजे 2 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. आजच आयुष्मान ऍप डाउनलोड करा आणि आयुष्मान कार्ड बनवा. अधिक माहितीसाठी 14555 वर कॉल करा.
1: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए.
2: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है.
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें.
2: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें. ये क्विक रिफंड में

0: सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: अन्य संक्रामक रोगों की निगरानी में भी उपयोगी साबित हो रही है। श्रोताओं, यदि हम समय पर लक्षणों की पहचान करें, डॉक्टरों की सलाह लेने में देरी ना करें और अपने घर तथा आसपास पानी जमा ना होने दें, तो डेंगू जैसे बीमारियों के प्रसार को काफी हद तक रोका जा सकता है। यही सतर्कता भविष्य में उभरने वाली नई संक्रामक बीमारियों से देश की रक्षा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसी के साथ आज के विश्लेषण कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारे सहयोगी अनिकेत ने। प्रस्तुति सहायक हैं दानिश जैदी।

0: कुत्सितं प्रयासं कुर्वन्ति।
1: यह संसद का सत्र इस समय चल रहा है, सरकार ने हर मुद्दे पर सार्थक बहस करने की भी बात की है और कई बार अपनी बात को दोहराया भी है, मगर विपक्ष संसद में नहीं बल्कि सड़क पर मुद्दों का समाधान करने का, मैं मानता हूं, अनुचित प्रयास कर रहा है।
0: संसदी विपक्षेण कृताम् असंसदीय बाधाम् अधिकृत्य रक्षा मन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् सर्वकारः सर्वस्मिन्नपि ज्वलन्त विषये सारगर्भयुतां विचार चर्चां कर्तुं सदैव सन्नद्धो वर्तते, किन्तु विपक्षः समस्यानां समाधानं संसद भवनस्य अपेक्षया मार्गेषु कर्तुम् अनुचितं प्रयासं करोति। अद्य लोकसभायां रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवोचत् यत् आधुनिक प्रौद्योगिक्या आधारभूत संरचनया समुन्नत रक्षण कार्यैः च रेल सुरक्षा अतीव सुदृढा विहिता। लोकसभायां लिखित उत्तराधारेण श्रीवैष्णवेन प्रतिपादितं यत् सुरक्षा कार्याणां व्ययः 13,000+ वर्षे 13,000+ कोटि रूप्यकेभ्यः संवर्ध्य 1,20,000+ कोटि रूप्यतोप्यधिकं संजातम्। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां अद्यापराह्णे वारद्वयस्य ओलंपिक पदक विजेत्री पीवी सिंधुः स्वस्यैव देशस्य उन्नति हुड्डां 1:14.9, 1:21.10 इत्यंकांतरालैः पराजित्य महिला एकलवर्गस्य राउंड ऑफ 32 स्पर्धां विजित्य द्वितीय चक्रं प्राविशत् इति वार्ताः।

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I am Gaurav Dhawan Lal with my co-anchor Amit Goyal.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों और शेयर बाजार की हलचल पर चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक सुषमा रामचंद्रन। सुषमा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद अमित।
1: सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ गौरा।
0: Thank you, Amit and Sushma. Once again, welcome to the program. A quick look at the headlines. Benchmark domestic indices continue downward trend. Sensex declines over 700 points. Nifty settles below 24,000 level. Most Asian stock market indices end with gains. And global crude oil prices rise around 4%.
1: आर्थिक सुर्खियों में, घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट का दौर जारी। सेंसेक्स 700 अंक से अधिक लुढ़का। निफ्टी भी 24,000 के स्तर से नीचे दर्ज। प्रमुख एशियाई बाजारों में मजबूती का दौर और वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 4% की तेजी।

0: Listeners, before we move well into the program, we'd like to share that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। बढ़ते वैश्विक तनाव और तेल की कीमतों में जारी तेजी से घरेलू सूचकांकों में आज लगभग 1% तक की गिरावट दर्ज हुई। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.9% के नुकसान से 715 अंक लुढ़ककर 76,755 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.8% की गिरावट से 191 अंक गिरकर 23,996 के स्तर पर बंद हुआ। एनएसई मिड कैप सूचकांक में 1% से अधिक और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.5% से अधिक गिरावट दर्ज हुई।
0: Benchmark domestic equity indices declined nearly 1% today amid ongoing geopolitical tensions and elevated crude oil prices. The Sensex shed 715 points to close at 76,755. The Nifty lost 191 points to settle at 23,996. In the broader market on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index fell over 1% and the small-cap 100 index dipped over 1.5%.

0: सेंसेक्स पैक की 30 में से 24 कंपनियों में आज गिरावट रही। गिरावट वाले प्रमुख शेयरों में इंडिगो 3.6%, इन्फोसिस 2%, स्टेट बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट 1.8% के नुकसान से बंद हुए। हालांकि हिंदुस्तान यूनिलीवर 0.7%, एनटीपीसी तथा पावर ग्रिड 0.6% और टाइटन 0.4% की बढ़त बनाने में कामयाब रहे।
1: Broad based selling was observed in sectoral indices on the BSE. FMCG emerged as the sole gainer, rising 0.4%, while all other sectors ended in the negative zone. Among the top laggards, realty dropped 2.6%, services slipped 2%, and PSU banks lost over 1.8%. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 2,780 companies declined, 1,458 advanced, and 180 remained unchanged.
0: अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 33 पैसे की गिरावट से 96.57 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। सुषमा, अगर शेयर बाजार की बात करें, आज एक और दिन जब बाजार कहीं ना कहीं गिरावट के दबाव में नजर आया।
2: बिल्कुल,
0: ये दबाव किस वजह से हो रहा है और बाजार क्यों नहीं इससे उबर पा रहा? हालांकि कल और आज या सोमवार की भी स्थिति अगर हम देखें तो तीनों दिन कहीं ना कहीं बाजार में गिरावट हावी रही, और अगर बाजार कहीं संभलता हुआ भी नजर आता था तो वो बहुत देर तक टिक नहीं पाया।
2: देखिए, ये जो आजकल के 2-3 दिनों से ये चल रहा है, ये बेरिश ट्रेंड, ये तो साफ आपने भी अपनी खबरों में बोला है कि ये जो तेल की कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं। लेकिन तेल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? ये इसलिए बढ़ रही हैं कि ईरान और यूएस के बीच में जो समझौता था, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, वो टूट गया है और बीच में गोलाबारी शुरू हो गई है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है। हालांकि खबरें ये भी आ रही हैं कि बीच में मीडिएटर्स आ गए हैं और कोशिश दोनों तरफ से है कि किसी ना किसी तरह ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके ऊपर कोई अंत लगाया जाए। तो ये जब तक ये ये जो प्रॉब्लम चल रही है वेस्ट एशिया में, तब तक तेल की जो कीमतें हैं वो बढ़ती रहेंगे। और इसमें ये भी डर है, अगर आप तेल की कीमतों की बात करें तो जो पहले के जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स थे, जब ये कॉन्फ्लिक्ट, जब ये वॉर शुरू हुआ, ये जंग शुरू हुआ मार्च में, फरवरी के एंड में, तो उस वक्त स्ट्रेटेजिक रिजर्व थे, अमेरिका के भी थे और बहुत सारे देशों के थे, तो वो रिलीज हो गए थे। लेकिन अब इस वक्त वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स नहीं है, तो अवेलेबिलिटी, खैर ये बात नहीं है कि अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन इतनी जो इन्वेंट्रीज थी वो कम हो गई हैं। और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑयल ड्रिलिंग वगैरह का जो वेस्ट एशिया में, उसके ऊपर वो भी काफ़ी डैमेज हो गया है, तो इसका भी डर है। तो ये तो एक बहुत बड़ी वजह है जिससे हमारी जो मार्केट्स हैं वो हिल गई हैं। दूसरी वजह ये है कि आज की जो खबर आई है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि फार्मा सेक्टर में वो टैरिफ्स लगाएंगे। खैर अभी नहीं, उन्होंने 2 साल की ये पीरियड दिया है कि 2 साल तक कुछ नहीं होगा, उसके बाद ये 100% और 200% के टैरिफ्स होंगे। तो उससे भी नेचुरली मार्केट्स को थोड़ा सा अगेन फिर से हिल गया है, क्योंकि फार्मा सेक्टर हमारा बहुत बड़ा है और एक्सपोर्ट्स में भी उसका बहुत बड़ा रोल है।
0: फार्मा सेक्टर की बात करिए, उससे संबंधित कुछ खबरें हमारे पास हैं, तो पहले उस बारे में भी थोड़ी सी जानकारी अपने श्रोताओं को दे देते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2028 से जेनेरिक दवाओं के आयात पर भारी शुल्क लगाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य अमेरिका में इन दवाओं का उत्पादन बढ़ाना है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि 1 अगस्त से अमेरिका में आयात होने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर 2 साल तक कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके बाद शुल्क पहले वर्ष के लिए 100% और अगले वर्ष के लिए 200% तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो कंपनियां जेनेरिक दवाएं बनाने के लिए तय समय सीमा में संयंत्र और अन्य जरूरी व्यवस्था नहीं करेंगी, उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। सुषमा, जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया कि अमेरिका एक तरफ हम उसका और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो युद्ध है, उसका दंश झेल रहे हैं, और अगर इस तरह की बातें आती हैं, क्या शेयर बाजार पर सीधा सीधा इसका भी असर पड़ता है?
2: ये तो बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर क्षेत्र जो है, एक तो बहुत बड़ा है हमारी उद्योग क्षेत्र में, और दूसरा हमारी जो निर्यात क्षेत्र में, ये वहां भी इसका बहुत बड़ा हिस्सा है।

0: weapons. Now, just a few days ago, it looked like the war was settling down. The Strait of Hormuz had opened up. Availability of oil had increased. Prices had come down to below $70. Now, we are up once again to over $90. So, there is volatility in the geopolitical scenario, and therefore, the stock markets are reacting accordingly. But at the same time, retail investors must remember that the underlying growth story of India is intact, in the sense that we have been able to meet various crises with a great, if you take in a macro sense, composure, in the sense that a country that has, we have continued growing
1: and
0: at a fairly, yes, yeah. fairly, we have continued growing at 7%, 7.5%, and despite all the tensions of the Ukraine war, where we had thought that we are going to have so many of, there were supply chain disruptions, and we had thought that we would have a great deal of problems. So there are still problems. This is not to wish them away, but I think we can tackle them.
2: Shushma, मैं वहीं से बात शुरू करता हूँ जहाँ बीच में आपने कहा, जैसा कि गौरव ने भी कहा, क्या ये टेक्निकल करेक्शन है या ये सेंटीमेंट का करेक्शन है या सेंटीमेंट कहीं गायब है या वाकई में हमारा या सबको ऐसा सोचना है कि भाई एनर्जी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी चिंता का सबब है भारतीय कंपनियों में, चाहे जितना भी दम हो, बट फिलहाल के लिए एनर्जी सिक्योरिटी कहीं ना कहीं चिंता जो है वो इन सब पे ज्यादा भारी पड़ रही है। क्या यही एक वजह है जो शेयर बाजार को अभी ट्रिगर नहीं लेने दे रही या कहीं आगे नहीं बढ़ने दे रही, या वाकई कंपनी जगत से भी जो पिछले कुछ नतीजे आए हैं वो इतने उत्साहजनक नहीं रहे, या सबका मिला जुला रुझान है? महंगाई भी एक मुद्दा बन सकता है क्या इसमें?
0: देखिए, अब ये मैं नहीं मान सकती कि ये टेक्निकल करेक्शन है, इसको तो आप रहने दीजिए, क्योंकि ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, मार्केट का उतार चढ़ाव जो है वो उनके साथ ही चल रहा है, जैसे कोई राग चल रहा है और आप वो गायक का तबला साथ में, तो ये स्टॉक मार्केट की वैसे ही चल रही है। तो इसमें ये है कि जो एनर्जी सिक्योरिटी की जो आपने बात की, वो बिल्कुल आपने, आई थिंक यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। एनर्जी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है हर उद्योग के लिए, हर कंपनी के लिए, और इसको एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि तेल को हम लोग समझते हैं जो क्रूड ऑयल है, और उसके अलावा पेट्रोल है और डीजल है, इसके अलावा बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, इसमें पेट्रोकेमिकल्स आ जाती हैं, इसमें प्लास्टिक्स आ जाती हैं। जो जब ये जो यूएस ईरान की वॉर शुरू हुई, एक महीने के बाद हमारे देश में प्लास्टिक्स के दाम बढ़ गए थे,
2: बहुत तेजी से
0: प्लास्टिक्स के दाम बढ़ गए थे। और मुझे किसी ने कहा कि किसी कंपनी का नाम लिया, और उन्होंने कहा अरे वो लोग ये तो प्लास्टिक के दाम बढ़ा रहे हैं। मैंने कहा भाई अब ये प्लास्टिक के दाम क्योंकि पेट्रोकेमिकल्स के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोकेमिकल्स के दाम
2: इसलिए नहीं आ पा रहा है
0: क्योंकि तेल की वजह से, उसके साथ फर्टिलाइजर्स भी है। तो ये एनर्जी सिक्योरिटी जो है एक चीज नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये है जो एक चीज जो हावी है सारे हमारे उद्योग क्षेत्र में।
2: FMCG लेकिन आज पूरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं अपनी उम्मीदें जगाता हुआ नजर आया FMCG।
0: बिल्कुल,
2: क्या सिर्फ यही है कि ये तो एक मूल जरूरत ही है इस वजह से, या कोई और बात?
0: नहीं, मूल जरूरत है, बिल्कुल है, क्योंकि हमारा कंजम्पशन, हमारा डिमांड, ये बहुत बड़ा देश है, और हमारी जो इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, ये एक कहा जाता है कि हम लोग एक्सपोर्ट्स की तरफ क्यों नहीं देखते, क्योंकि हमारी मार्केट, इंटरनल मार्केट इतनी बड़ी है। तो ये FMCG के लिए यही है कि इतनी बड़ी मार्केट है, हाँ, क्योंकि वो क्या करते हैं, जब दाम बढ़ाने होते हैं तो वो पैकेज छोटे कर लेते हैं, तो स्मॉल पैकेट की इशू हो जाती है, और फिर बड़े पैकेज कर लेते हैं। तो डेफिनेटली हमारे यहाँ कंजम्पशन बहुत बड़ा है, वाइड स्प्रेड एरिया है।
1: Right, and it's interesting that when we see FMCG and even luxury goods,
0: yes,
1: both segments, our consumption has not really, you know, fallen that much,
0: and, yes,
1: and it's I think it's a sign of maybe overall raising of standard of living.
0: Yes, it. Right. I mean that needs to be analyzed, but it could be
1: right. Moving on to our next story, Eternal Limited today reported its financial results for the first quarter of the current financial year. The company's consolidated revenue from operations rose by 182% year-on-year to 20,211 crore rupees. On a quarter-on-quarter basis, revenue increased around 17%. The company's consolidated net profit grew

0: वो भी कहीं इससे कदम ताल करते हुए नजर आएंगे, या फिर हमको ये भी देखना पड़ेगा कि डॉलर और रुपए का जो संबंध है, क्योंकि आज भी रुपए में हल्की सी कमजोरी आई है, वो इसको दिक्कत करेगी?
1: या आपका सवाल बहुत लंबा है, ये संक्षेप में नहीं हो सकता। हाल में सिर्फ ये कह सकती है कि तेल के जो दाम है वो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स खुल गया तो फिर वो एकदम नीचे आ जाएंगे, हम उसके बाद हमें कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और सोना जो है, जो अभी भी गोल्ड वो सेफ हेवन एसेट है और ये रहेगा, और जब तक क्राइसिस रहेगा दुनिया भर में तो इसकी प्रॉब्लम्स रहेगी, इसके दाम बढ़ेंगे।
0: सुषमा कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए धन्यवाद।
1: थैंक यू।
0: और चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर।
2: एब्सोल्युटली, थैंक यू सुषमा वंस अगेन। अ क्विक लुक एट द हेडलाइंस लिसनर्स। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस कंटिन्यू डाउनवर्ड ट्रेंड। सेंसेक्स डिक्लाइंस ओवर 700 पॉइंट्स। निफ्टी सेटल्स बिलो 24,000 लेवल। मोस्ट एशियन स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड विद गेन्स एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज अराउंड 4%। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नमस्कार।
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनिटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की। इससे पहले सुबह अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही तीसरी बार स्थगन के बाद दोपहर में फिर शुरू हुई तो भी विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
2: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वो बदलाव की मांग कर रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 11 सितम्बर को होगी। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकारी नीतियों का उद्देश्य बच्चों सहित सभी उपयोगकर्ता

0: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत और उत्तर मैसेडोनिया के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और कूटनीतिक संबंधों के विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर राहुल मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं श्रेया पाठक।
1: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उत्तर मैसेडोनिया यात्रा को भारत की विदेश नीति और यूरोप के साथ बढ़ते संबंधों के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और इसी संदर्भ में आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़े हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर राहुल मिश्रा। प्रोफेसर राहुल मिश्रा, आपका हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: प्रोफेसर मिश्रा, पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर हम देखें तो ये जो राजनयिक संबंध है उत्तर मैसेडोनिया और भारत के बीच, ये काफी वर्ष पहले ही स्थापित हो गया था, और उसके बाद ये भारत के किसी राष्ट्रपति की नॉर्थ मैसेडोनिया की पहली ऐतिहासिक राज यात्रा है। ऐसे में वहाँ की संसद में दिया गया जो राष्ट्रपति का संबोधन है, या फिर हम बोले कि ये जो दोहरा है, ये दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों और संसदीय कूटनीति को एक नई ऊंचाई देने में कितना मील का पत्थर साबित हो सकता है?
2: देखिए, उत्तरी मैसेडोनिया एक लोकतांत्रिक देश है और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाना एक तरह से मुझे लगता है कि नेचुरल है। ये एक नैसर्गिक और तार्किक परिणति है कि दोनों लोकतांत्रिक देश मिलकर साथ काम करें। भारत का जो आईटेक प्रोग्राम है, जिसमें हम दूसरे अपने तमाम मित्र देशों के सिविल सर्वेंट्स की, वहां के ऑफिशियल्स की जो हम कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, उसके तहत भी हमने उत्तरी मैसेडोनिया के पार्लियामेंट एम्प्लॉयज को लोकसभा में ट्रेनिंग दी थी। तो दोनों देशों के बीच में लोकतंत्र को कैसे सुदृढ़ करें और लोकतांत्रिक जो मूल्य है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसको हम कैसे सुदृढ़ करें, इस लिहाज से मुझे लगता है न सिर्फ राष्ट्रपति मुर्मू का वहां पर संबोधन, बल्कि दोनों देशों के बीच में लोकतंत्र को लेकर के बात करना और आपस में इसको लेकर एक सॉलिडारिटी होना बहुत महत्वपूर्ण है। और यही सॉलिडारिटी है जो भारत को ग्लोबल साउथ का एक मुखिया बनाती है। भारत ने ग्लोबल साउथ के एक नेता के तौर पर भी इस बात को बहुत ही अच्छी तरह परिलक्षित किया है कि ग्लोबल साउथ का मतलब हमारे लिए सिर्फ यही नहीं है कि एशिया और अफ्रीका के विकासशील देश हमारे साथ हैं, बल्कि यूरोप के भी जो छोटे देश हैं, जो बहुत बड़ी आर्थिक महाशक्ति नहीं है, उनको भी हम साथ लाएं। तो इस लिहाज से भी मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक वैल्यू और ग्लोबल साउथ की वैल्यूज दोनों को साथ लाने की कोशिश की जा रही है।
1: हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो अभी उत्तर मैसेडोनिया यात्रा में हैं, तो ये भारत की जो विदेश नीति है और यूरोप के साथ जो भारत के बढ़ते संबंध हैं, उनको आप कैसे देखते हैं, और ये जो यात्रा है हमारे राष्ट्रपति की, वो कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है?
2: देखिए, इसमें तीन पहलू हैं। एक तो सबसे बड़ा पहलू ये है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यात्रा मैसेडोनिया, मोल्डोवा, जो बाल्कन के जो देश हैं, उनकी यात्रा के साथ साथ हमें ये देखना है कि भारत के उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री भी अभी विदेशी दौरों पर हैं, और मोटे तौर पर भारतीय विदेश नीति में इस बात पर बहुत अच्छी तरह जोर दिया जा रहा है कि आज यूरोप के देशों के साथ भारत के संबंधों को नए स्तर पर पहुंचाना है और उनको एक नया आयाम देना है। इसमें भारत ने न सिर्फ यूरोपियन यूनियन के जो 27 देश हैं उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत किया, बल्कि बाल्कन और पूर्वी यूरोप के जो छोटे देश हैं उनको भी साथ लाने की कोशिश है। तो एक बहुत ही इंक्लूसिव यूरोप पॉलिसी हमें साफ तौर पर दिखाई दे रही है। दूसरी बात यह है कि भारतीय विदेश नीति में और भारत के जो नीति निर्धारक हैं, उनको यह बात भी बहुत स्पष्ट है

0: इनसे जैसे भारत की आर्थिक शक्ति और उसकी जो डिप्लोमेटिक प्रोवेस है वो बढ़ रही है, हमें दुनिया के तमाम देशों के साथ न सिर्फ कूटनीतिक तौर पर बल्कि उनके साथ आर्थिक और तकनीक के स्तर पर सहयोग को आगे बढ़ाना होगा। इस लिहाज से मुझे लगता है उत्तरी मैसेडोनिया की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तरी मैसेडोनिया एक छोटा सा देश नहीं है। उत्तरी मैसेडोनिया वो देश है जो युगोस्लाविया से अलग हुआ था, और जब एक स्वतंत्र देश बना तो भारत ने 39 और देशों के साथ मिलकर उत्तरी मैसेडोनिया को एक संप्रभु राष्ट्र घोषित करने के लिए और उसे एक संयुक्त राष्ट्र संघ में एक सदस्य के तौर पर जगह देने के लिए पुरजोर उसकी वकालत की थी और उत्तरी मैसेडोनिया एक देश बना। भारत के साथ उत्तरी मैसेडोनिया के संबंध बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय जो क्रिश्चियन है एक बड़ी माइनॉरिटी कम्युनिटी है। भारत जैसे मल्टीकल्चरल देश के लिए ये तथ्य कि मदर टेरेसा का जन्म उत्तरी मैसेडोनिया में हुआ था, ये अपने आप में दोनों देशों के बीच में राजनीतिक संबंधों के साथ साथ पीपल टू पीपल कनेक्ट में बहुत बड़ी भूमिका ये अदा करता है। और दोनों देशों के बीच में संबंध इसी तौर पर जब अतीत में जब युगोस्लाविया एक देश था तब भी, और जब उत्तरी मैसेडोनिया एक देश बना तब भी, इन दोनों देशों के बीच में संपर्क तो था लेकिन उसे कूटनीतिक तौर पर, उसे राजनयिक तौर पर एक सही दिशा देना बहुत जरूरी हो गया था। और ये मुझे लगता है राष्ट्रपति मुर्मू की ये जो यात्रा है ये उसी दिशा में उठाया हुआ कदम है कि दोनों देशों को अब पिछली जो हमारी जो लेगेसी है उसको आगे बढ़ाते हुए आपसी व्यापार और सहयोग को, राजनीतिक कूटनीतिक सहयोग को कैसे बढ़ाया जाए, उस दिशा में हम कैसे काम करें, इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ये यात्रा की जा रही
1: है। जी, जैसा कि आपने कहा कि ये जो रिश्ते हैं ये और मजबूत होंगे और काफी क्षेत्र है जिसमें भारत और उत्तर मैसेडोनिया का सहयोग बहुत जरूरी है, तो आज ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये भी कहा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और यूपीआई मॉडल को साझा करने की एक बहुत बड़ी जरूरत है। इससे उत्तर मैसेडोनिया और भारत दोनों को किस प्रकार के व्यवहारिक लाभ मिल सकते हैं?
0: देखिए, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से उत्तरी मैसेडोनिया को जोड़ने का मतलब, और हम जानते हैं कि भारत और यूरोपियन यूनियन के देश पहले से ही इस बात पर सहमत हो चुके हैं कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और यूपीआई से एक दूसरे को जोड़ना है। उत्तरी मैसेडोनिया का एक खास इसकी एक भूमिका है। तमिल जो हमारा सिनेमा है उसमें मरसूल नाम की एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जिसने भारतीयों को ये दिखाया कि उत्तरी मैसेडोनिया कितना खूबसूरत देश, स्कोपे जो उनकी राजधानी है वो कितनी खूबसूरत है। तो पीपल टू पीपल कनेक्ट को बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच में पहले तो जो सैलानी उत्तरी मैसेडोनिया जाना चाहते हैं या भारत आना चाहते हैं उनके लिए जब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और यूपीआई जैसी सुविधाएं होंगी तो उनके लिए एक दूसरे के देश में आना जाना सरल होगा। दूसरी बात यह है कि ये भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के बीच में व्यापार को लेकर जो दोनों देशों में समझौता हुआ है कि आज जो हम $37 मिलियन के स्तर पर खड़े हैं इसे कैसे दुगना किया जाए, और उसके लिए जरूरी है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ ट्रांजैक्शन, और उस क्षेत्र में मुझे लगता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और यूपीआई की बहुत बड़ी भूमिका है। साथ ही साथ ये जो हम भारत और उसके जो विदेश नीति के निर्धारक हैं वो ये जो बात सोचते हैं कि यूरोपियन यूनियन के साथ जब हम अपने संबंधों को और अपने आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को जब हम एक तरह से अलाइन कर रहे हैं तो यूरोप के बाकी देश उसमें छूटे नहीं, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब यूरोप के तमाम जितने भी देश हैं उन सभी की हमें अपने आर्थिक विकास, आर्थिक प्रगति और आर्थिक और व्यापारिक सहयोग में उनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और यूपीआई मुझे लगता है कि समय से आगे की सोच है। उत्तरी मैसेडोनिया के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए इसकी आवश्यकता है और साथ ही साथ पीपल टू पीपल कनेक्ट को बढ़ाने के लिए भी इसकी बहुत जरूरत है।
1: इस वार्ता के दौरान हमने ये भी सुना कि कृषि हो या फिर खाद प्रसंस्करण हो या कपड़ा उद्योग और नवीकरणीय जो ऊर्जा है उसको प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रेखांकित किया। कृषि तकनीक और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में यह तकनीकी साझेदारी दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को कितना संबल प्रदान कर सकती है?
0: जी, आपने दो बातें कही। पहली तो जो नवीकरणीय ऊर्जा है या नई जो तकनीक के क्षेत्र है, इन दोनों ही क्षेत्रों में भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के बीच में मोटे तौर पर यह समझौता हो गया है कि उत्तरी मैसेडोनिया भारत का जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसकी सदस्यता लेगा और जो कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंस CDRI है उसमें भी उत्तरी मैसेडोनिया एक सदस्य बनेगा। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनमें भारत ने न सिर्फ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी बल्कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक पहल की है जिसमें दुनिया के तमाम देश शामिल हो रहे हैं। दूसरा मुद्दा है कृषि और खाद्य प्रसंस्करण का। भारत एक कृषि प्रधान देश अभी भी है और क्योंकि भारत की अधिकांश जनता अभी भी कृषि क्षेत्र में है तो हमारे लिए कृषि क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ सहयोग करना और उसमें नई तकनीक को साझा करना, नई तकनीक दूसरे देशों से सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। फूड प्रोसेसिंग का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत के छोटे और मझोले किसान जो फूड प्रोसेसिंग या एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग में है उनके लिए फूड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग और इनका तमाम जो निर्यात है उसके क्षेत्र में शायद मुझे लगता है नॉर्थ मैसेडोनिया से भारतीय किसान कुछ सीख सकते हैं।
1: भारत सरकार ने नॉर्थ मैसेडोनिया के नागरिकों के लिए आईटेक यानी कि भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण स्लॉट्स की संख्या को दोगुना कर दिया। क्षमता निर्माण और कौशल विकास पर केंद्रित यह फैसला आपके हिसाब से प्रोफेसर मिश्रा दोनों देशों के बीच सॉफ्ट पावर और पीपल टू पीपल टाइज को कितना बढ़ावा दे पाएगा?
0: देखिए श्रेया जी, आईटेक ऐसा प्रोग्राम है जिसके तहत भारत दुनिया के तमाम जो विकासशील देश हैं उनके लिए खासतौर पर उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करता है, उनका क्षमता निर्माण करता है और उनको ये जो अत्याधुनिक जो तकनीकें हैं प्रशासन में नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज को डील करने में और जो मोटे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी कैसे अपने हमारे मित्र देशों के जो सिविल सर्वेंट्स हैं वहां के ऑफिसर्स हैं वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी और कटिंग एज इंफॉर्मेशन पा सकें। तो इस क्षेत्र में उत्तरी मैसेडोनिया के पास हमारे हर आईटेक प्रोग्राम में 2 सीटें हुआ करती थी जिसे बढ़ाकर अब 4 किया जाएगा और इसमें खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्लॉट भी उत्तरी मैसेडोनिया को दिए जाए। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिससे दोनों देशों के जो सिविल सर्वेंट्स हैं वहां के जो प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं वो भी एक दूसरे को जान सकेंगे, उन उत्तरी मैसेडोनिया के प्रशासनिक अधिकारी जो हैं उनके लिए भी भारत को समझना मुझे लगता है ज्यादा आसान होगा। एक दोनों देशों के बीच में ब्यूरोक्रेसी के बीच में जो परस्पर जो दिलचस्पी बढ़ेगी मुझे लगता है कि उससे भी पीपल टू पीपल कनेक्ट आगे बढ़ेगा। तो इसके लिए मुझे लगता है ये एक इनेबलर का काम करता है और उत्तरी मैसेडोनिया के कॉन्टेक्स्ट में भी ये एक इनेबलर का काम करेगा।
1: जी, तो मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये होगा कि जो राष्ट्रपति की यात्रा मोल्दोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 स्तरीय राजकीय यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, पूर्वी यूरोप के इन प्रमुख राष्ट्रों के साथ भारत का जो यह सक्रिय जुड़ाव है तो ये भारतीय यूरोपीय संघ के समग्र संबंधों को किस प्रकार से एक सकारात्मक और नई दिशा दे रहा है?
0: देखिए, उत्तरी मैसेडोनिया ये चाहता है कि वो यूरोपियन यूनियन की सदस्यता ले और राष्ट्रपति की जो ये 3 देशों की यात्रा है, बाल्कन देशों की और जिसे हम बड़े तौर पर आज उत्तरी यूरोप भी कहते हैं, उत्तरी यूरोप के देशों के साथ भारत के संबंधों को एक नया आयाम, एक नए स्तर पर पहुंचाने के लिए मुझे लगता है राष्ट्रपति मुर्मू की ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जैसा कि हम जानते हैं आर्थिक तौर पर, सामाजिक, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, कूटनीतिक, रक्षा, तमाम क्षेत्रों में संबंध बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। लेकिन भारत की ये सोच है कि सिर्फ यूरोपियन यूनियन के या यूरोपियन संघ के देशों के साथ ही भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंध भारत और यूरोप के संबंधों का एक सिर्फ हिस्सा है। अगर हम यूरोप के तमाम देशों को जो यूरोपियन संघ के सदस्य नहीं है उनको भी अगर हम अपनी यूरोपियन जो हमारी नीति है उसमें जोड़ेंगे तो न सिर्फ भारत के लिए व्यापार के तौर पर, व्यापार को बढ़ाने के लिए या राजनीतिक संबंधों के लिए या कूटनीतिक संबंधों के लिए बल्कि पीपल टू पीपल कनेक्ट के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण इसकी भूमिका होगी। तो मुझे लगता है भारत की जो यूरोप के संदर्भ में जो नीति है वो यही है कि हम यूरोपियन यूनियन पर अपनी यूरोप नीति को समाप्त नहीं करेंगे, हम पूर्वी यूरोप के देशों में भी जाएंगे, हम दक्षिणी यूरोप के तमाम देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं लेकिन साथ ही साथ हम स्कैंडिनेविया के देशों के साथ भी, प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली बार जब यात्रा की थी 5 देशों की तो हमने ये देखा था कि वहां भी ये स्पष्ट था कि यूरोपियन यूनियन के साथ हमारे संबंध सिर्फ हमारी यूरोप नीति का सिर्फ एक हिस्सा है, यूरोपियन यूनियन भारत की यूरोप नीति को परिभाषित नहीं करता है। तो साफ तौर पर पूर्वी यूरोप की यह यात्रा यूरोप को एक इंक्लूसिव चेहरा देती है और एक हमारी जो इंक्लूसिव नीति है कि हम बड़े और छोटे देश के बीच में उसकी आर्थिक शक्ति को देखकर कोई उनके बीच में कोई भेद नहीं करते हैं, हम सभी देशों को, बड़े हों या छोटे हों, उनको उनको एक समान नजरिए से देखते हैं और सभी मित्र देशों को हम अपने साथ रखना चाहते हैं।
1: जी प्रोफेसर राहुल मिश्रा जी, आज के सुर्खियों में कार्यक्रम में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े और हमें भारत और उत्तर मैसिडोनिया के बीच जो ये व्यापार, प्रौद्योगिकी और कूटनीतिक संबंधों के बारे में विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत और उत्तर मैसिडोनिया के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और कूटनीतिक संबंधों के विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर राहुल मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी श्रेया पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में

0: infrastructure, digitization, all AI-based solutions. That's the future. No, so I think technology in the future, everybody knows. So that is a key sector. Wherever we have technology, we are there. You know, I always say that India needs all the energy of the world, all the innovation of the world, and all the technological revolution in the world.
1: Coming to tourism and culture, many Indians are still unfamiliar with North Macedonia. What would you like that Indian tourists and businesses to know about this country?
0: The beauty of nature. It's a very well protected, you know, biosystem, mountain, valley, you know, you have the river, Vardar River, which cuts across the whole of, North Macedonia and goes to Greece. It's a beautiful place in terms of clean air, clean water.
1: Yes.
0: Anywhere there is a tap, you can drink water from
1: the tap water.
0: So I think for, Indian tourists, they should come, and if they are looking for something very peaceful and where they can spend time on their own and undisturbed, I think it's a very peaceful, silent place.
1: Sir, talking about education and people-to-people ties, how can educational exchanges and cultural cooperation and tourism help to bring the people of India and North Macedonia closer?
0: There are two levels of looking at it. I think one is the skilled manpower, which is the in the IT sector, artificial intelligence and all this, AI sector. The other one is also the semi-skilled sector, which is the plumbers, the fitters, the welders, the electricians. There is a tremendous shortage of skill set in whole of Europe, including North Macedonia. So I think skilling is very key. And if we skill our manpower to that level,
1: yes,
0: I think they can enter into
1: this area, yes.
0: Beneficial part of their economy also.
1: Also Macedonia, also as well as to India.
0: Yes.
1: Sir, what would you like the next chapter of India-North Macedonia relation to look like over the next 5 years?
0: Next 5 to 10 years, I would like a very close, vibrant relationship between India and North Macedonia. And not only India and North Macedonia, it's also India and Eastern Europe. You know, Southeast Europe, because this gives us access to whole of the Western Balkan, what we say, and Europe. So it's a whole region. It's an important region, and where business, technology, people-to-people contact can be strengthened. I think that's the hope.
1: Finally, what message would you like to convey to the people of India and the listeners of Akashvani on the occasion of this historic presidential visit?
0: I have a simple message that the world is very big and the world is waiting for India to engage with them. We are a big country. We are the most populous country. We are the biggest democracy of the world. And we have a tradition of more than 5,000 years. We have our own wisdom. But other people, other countries may not be that big, may not be, you know, in a different geography, must be having a different cultural heritage history. So they're waiting for India to reach out to them. And as a big country, we have the responsibility to reach out to them and spread the message of, you know, Vasudhaiva Kutumbakam, which we say the whole world is one family. You know, and when there is conflict and, turmoil, I think India stands for peaceful existence in the whole world. And our message has been in the past to be in peace and for the future generation also to be in the peace. As a country, actually, we have never waged any war. I think we are the only country or very unique country which has never waged a war on its own. We love peace. It's a land of Mahatma Gandhi, as you know.
1: Thank you, sir. Thank you for talking to Akashvani. Thank you very much.
0: Thank you very much.
2: You were listening to an exclusive interview with Arun Kumar Sahu, Ambassador of India to the Republic of North Macedonia, on the ongoing visit of the President to the Republic of North Macedonia. Interviewer was Subhashree Mahapatra, Akashvani correspondent. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 928-909-4044.
3: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
4: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
5: पर्सनल लोन ऑफर
6: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
5: फ्री ट्रिप टू दुबई
6: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूँ यार?
7: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
6: तो क्या करूँ?
7: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
6: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
7: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
8: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी।
9: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
8: और लाइट बिल के?
9: अब 0 रुपए कैसे दूं?
8: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
9: पक्का।
10: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
11: हर घर सूर्य घर।
12: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
13: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
12: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
13: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
12: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
3: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
4: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और कार्यक्रम शुरू हो गया है सांझ ढले आपकी रेडियो सखी रेणुका के साथ। और इस कार्यक्रम में पहला गीत जो हम सुनने वाले हैं वो है किशोर दा की आवाज में गैम्बलर फिल्म से

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने डीडीए कर्मजीवी आवास योजना का शुभारंभ किया। दिल्ली नगर निगम ने मजनू का टीला क्षेत्र में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया और दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में आवश्यक दवाइयां और चिकित्सा संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अब समाचार विस्तार से। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस चर्चा के लिए नियमों का निर्धारण किया जाना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा प्रश्न पत्र पर गहन चर्चा चाहती है। उन्होंने कहा कि चर्चा यथाशीघ्र शुरू होनी चाहिए और जितनी लंबी चाहे चल सकती है।
4: देखिए, जो ओपोजिशन पार्टी बोलना चाहते वो तो बोलना ही है चर्चा के दौरान, हम मना नहीं कर सकते। लेकिन चर्चा को रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। हमने जब खुले दिल से ऑफर किया सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं, तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है।
3: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है। नई दिल्ली में आज श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के प्रत्येक मुद्दे को सुनने और उसका समाधान करने के लिए तैयार है।
5: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
3: इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वो बदलाव की मांग कर रहे हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक मामले और विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों के साथ है और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की नेतृत्व वाली सरकार ने युवा नेतृत्व वाले विकास के मंत्र को विकसित भारत को मजबूत करने की नींव बनाया है।
6: नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जो इस देश के युवा को राष्ट्र का निर्माता मानते हैं। यूथ लेड डेवलपमेंट का मूल मंत्र उन्होंने विकसित भारत की नींव को सुदृढ़ करने के लिए रखा है। इसका अर्थ है युवाओं के नेतृत्व में राष्ट्र का सशक्तिकरण।
3: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। एक रिपोर्ट।
7: मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। पीठ ने जनहित याचिकाओं पर नोटिस जारी कर अधिकारियों को जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 11 सितम्बर को होगी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि पुलिस ने महिलाओं और बच्चों सहित प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग किया। दूसरी ओर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने कहा कि याचिकाएं सोशल मीडिया पोस्ट पर आधारित हैं और सुनवाई योग्य नहीं है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
3: सरकार ने सोशल मीडिया पर दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान मृत्यु होने के दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया है। इकाई ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान किसी की मृत्यु होने की कोई खबर नहीं है। आज राष्ट्रीय आम दिवस है। ये दिन फलों के राजा आम और भारत की समृद्ध आम परंपरा के सम्मान में मनाया जाता है। गोवा का प्रसिद्ध मनकुराद आम अपनी खास खुशबू, मिठास और अनोखे स्वाद के लिए जाना जाता है। ये सिर्फ एक फल नहीं बल्कि गोवा की कृषि और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने बताया है कि सिंगल विंडो प्रणाली पर उपलब्ध 84 सरकारी सेवाओं में आवेदन के निपटारे का समय कम कर दिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार का लक्ष्य लोगों और कारोबार से जुड़े लोगों को सरकारी सेवाएं पहले से ज्यादा तेज, आसान और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने अविनियम प्रक्रिया के दूसरे चरण के अंतर्गत प्राथमिकता क्षेत्र 21 पर विस्तृत अध्ययन किया, जिसमें 18 विभागों को शामिल किया गया और सिंगल विंडो प्रणाली पर उपलब्ध 95 प्रमुख सेवाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग डिजिटल तकनीक और बेहतर कार्य प्रणाली के जरिए लोगों तक तेज, आसान और नागरिक केंद्रित सरकारी सेवाएं पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि देश का तिरंगा राष्ट्र की एकता, अखंडता, बलिदान और स्वाभिमान का गौरवशाली प्रतीक है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के दमकल विभाग ने आज अटल आदर्श प्राथमिक विद्यालय और अटल आदर्श विद्यालय में अग्नि सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में छात्रों और विद्यालय के कर्मचारियों को आग से बचाव, सुरक्षित तरीके से बाहर निकलने की प्रक्रिया, आपातकालीन स्थिति में कार्रवाई और आग बुझाने वाले उपकरणों के सही इस्तेमाल के बारे में जरूरी जानकारी दी गई। दिल्ली नगर निगम ने आज मजनू का टीला क्षेत्र में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया। निगम ने कहा कि ये केंद्र स्थानीय नागरिकों को सुलभ, समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएगा, जिससे क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ होंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन किया। मंत्रालय ने बताया कि इस शिविर में कर्तव्य भवन 1 में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों, गृह व्यवस्था कर्मचारी और सफाई कर्मियों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की गई। इस शिविर का उद्घाटन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव आराधना पटनायक द्वारा किया गया। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने आज पटियाला हाउस न्यायालय के पीछे स्थित एक आधुनिक सार्वजनिक शौचालय का उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट।
8: श्री चहल ने बताया कि लगभग 42 से अधिक वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले NDMC क्षेत्र में वर्तमान में 364 सार्वजनिक स्वच्छता इकाइयां संचालित हैं, जिनमें 200 से अधिक सार्वजनिक शौचालय, 40 सामुदायिक शौचालय और 33 सार्वजनिक मूत्रालय शामिल हैं। उन्होंने बताया पटियाला हाउस न्यायालय के पीछे स्थित यह सार्वजनिक शौचालय

0: लगभग 50 वर्ग मीटर क्षेत्र में 22 लाख की लागत से आधुनिक सुविधाओं से बनाया गया है। श्री चहल ने बताया कि आधुनिक सुविधा में महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पुरुष ब्लॉक में 3 शौचघर, 5 सेंसर आधारित यूरिनल और महिला ब्लॉक में 3 शौचघर की व्यवस्था की है। शिवांग की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए विशेष शुक्ला।
1: दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA द्वारा आज DDA कर्मजीवी आवास योजना 2026 का शुभारंभ किया गया। प्राधिकरण ने बताया कि इस आवास योजना के अंतर्गत नरेला के पॉकेट 11 में स्थित 1200 से अधिक रहने योग्य फ्लैटों पर 25% की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। प्राधिकरण ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य कामकाजी पेशेवरों के लिए घर का स्वामित्व अधिक किफायती और सुलभ बनाना है तथा राष्ट्रीय राजधानी में नियोजित शहरी विकास और समावेशी विकास के प्रति DDA की प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, झंडेवालान, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल थे। दिल्ली के करोल बाग में एक इमारत की ऊपरी मंजिल पर आग लग गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए दमकल गाड़ियां भेजी गई हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। पुलिस ने बताया कि ऊपरी मंजिल पर बने एक पेइंग गेस्ट में फंसे 2 छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और 1 छात्र को मामूली चोटें आई हैं। अग्निशमन सेवा ने कहा कि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और बचाव अभियान जारी है। दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों की मॉनसून स्वास्थ्य तैयारी की समीक्षा के दौरान आवश्यक दवाइयों का पर्याप्त भंडार, पैथोलॉजी और जांच सुविधाएं तथा चिकित्सा संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने मॉनसून के दौरान डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया सहित अन्य मौसमी बीमारियों के खतरे को देखते हुए सभी अस्पतालों को पूरी तरह सतर्क और तैयार रहने को कहा है। इसके अलावा अस्पतालों की नियमित निगरानी और किसी भी स्तर की लापरवाही पर कड़ी विभागीय कार्रवाई के भी निर्देश जारी किए गए हैं। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। एक संयुक्त वक्तव्य में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की।
2: In this era of volatility and disruption,
3: उथल पुथल के इस दौर में आपूर्ति श्रृंखला पर सबसे अधिक दबाव दिख रहा है। ऊर्जा, भोजन और स्वास्थ्य सुरक्षा को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना बहुत जरूरी है। वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। साथ ही भारत और आसियान दोनों ही अपने भविष्य को लेकर उम्मीद से भरे हैं, इसलिए चुनौतियों का सामना करते हुए भी हमें मौकों पर पूरी तरह ध्यान देना चाहिए।
2: इवन वाल एड्रेसिंग चैलेंजेस।
1: नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा से नई दिल्ली में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने बताया कि मेघालय की हवाई संपर्क को मजबूत करने पर उनकी मुलाकात सार्थक रही। बैठक के दौरान उन्होंने शिलांग हवाई अड्डे पर रनवे के विस्तार और नए टर्मिनल भवन के निर्माण के साथ साथ उड़ान योजना के अगले चरण में राज्य भर में हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने पर भी चर्चा की। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय कई क्षेत्रों में हल्की वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने कल बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर हल्की बारिश के साथ हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने डीडीए कर्मजीवी आवास योजना का शुभारंभ किया। दिल्ली नगर निगम ने मजनू का टीला क्षेत्र में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया और दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में आवश्यक दवाइयां और चिकित्सा संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी है। अब आप जागृति शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। नीट पेपर लीक और विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी दलों के हंगामे के कारण लोकसभा में आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सका और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में आज कहा कि सरकार नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। चर्चा किस नियम के अंतर्गत होगी और कितनी देर होनी चाहिए, ये बातचीत में तय होगा। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं के लिए सार्थक चर्चा हो, इसके लिए सरकार तैयार है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के आरोप में मॉनसून सत्र की शेष अवधि से निलंबित किया गया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद तेन्नेटी ने दो बार स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू की और हंगामे के बीच जरूरी कागजात सदन के पटल पर रखवाया। इसके बाद उन्होंने कहा कि श्री कल्याण बनर्जी के खिलाफ महिला सांसदों की ओर से महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किए जाने की लिखित शिकायत मिली है। संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रस्ताव किया कि महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में श्री कल्याण बनर्जी को सत्र की शेष अवधि से निलंबित किया जाए, जिसे सदन ने ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया। श्री तेन्नेटी ने प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद श्री बनर्जी को सदन से बाहर जाने का आग्रह किया और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्यों ने कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने इन मुद्दों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया, जिससे कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे शुरू होते ही विपक्षी दल हंगामा करने लगे और कुछ सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। कई विपक्षी सदस्य नीट के विरोध में नारे लिखी तख्तियां लिए हुए थे। कांग्रेस सदस्य विरोध स्वरूप काले कपड़े पहने थे। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल को बोलने की अनुमति दी। श्री वेणुगोपाल ने कहा कि जिस तरीके से विपक्षी दलों और विद्यार्थियों के साथ पुलिस व्यवहार कर रही है, वह बहुत अनुचित है। उनकी मांग है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, इसके बाद सदन में पेपर लीक मुद्दे पर विस्तृत चर्चा कराई जाए। अगर सरकार उनकी मांग स्वीकार करती है तो वे चर्चा के लिए तैयार हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा कि पेपर लीक मुद्दा कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का नहीं है, ये सभी लोगों से जुड़ा मसला है। इसके लिए सभी राजनीतिक दल लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के साथ पुलिस ने बर्बरता की, बेटियों के कपड़े फाड़े गए। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री सदन से बाहर नीट मुद्दे पर बयान दे सकते हैं, सदन में आकर इस मसले पर क्यों नहीं बोल सकते। इसके बाद श्री ओम बिरला ने कहा कि कब चर्चा करनी है, कितनी देर चर्चा करनी है, ये बातचीत के दौरान तय होगा। सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्षी सदस्य अपने अपने स्थानों पर जाएं और कार्यवाही चलने दें। श्री बिरला की अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ और हंगामा जारी रहा। हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह 11 बजे श्री बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, उससे पहले ही विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। श्री बिरला ने सदस्यों से शोर शराबा नहीं करने का आग्रह किया, लेकिन सदस्य उनकी बात पर ध्यान दिए बिना और नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। अध्यक्ष ने सदस्यों से सदन चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि आप प्रश्नकाल चलने दीजिए, प्रश्नकाल के बाद जिन विषयों पर नोटिस आए हैं उन सब पर चर्चा कराई जाएगी, लेकिन ये सब प्रश्नकाल के बाद ही संभव होगा। मैं आपके मुद्दे पर चर्चा देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि सदस्य सदन नहीं चलाना चाहते हैं, ये अच्छा संदेश नहीं है। उनकी किसी बात पर जब सदस्यों ने ध्यान नहीं दिया तो श्री बिरला ने सदन की कार्यवाही 1 मिनट के भीतर ही 12 बजे तक स्थगित कर दी।

दौरान पीएमजेवीके के अंतर्गत तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है। इस अवधि के दौरान जिले के लिए ना तो कोई निधि आवंटित या जारी की गई है और ना ही योजना के अंतर्गत जिसे कोई कार्य किया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुर्गुन ने एक लिखित जवाब में कहा कि सरकार ने डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रकाशकों के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने के लिए आईटी अधिनियम 2000 के तहत 25 फरवरी 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 अधिसूचित किए गए हैं। इन नियमों के भाग 3 में डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रकाशकों के लिए एक आचार संहिता का प्रावधान है। शिकायतों का निपटान आईटी नियम 2021 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79(3)(ख) अवैध सामग्री को हटाने या उस तक पहुंच को अक्षम करने के लिए मध्यस्थों को अधिसूचना का प्रावधान करती है। उन्होंने कहा कि शिकायतों के आधार पर सरकार ऐसे मध्यस्थों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई करती है। सरकार ने पिछले 2 वर्षों में अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने और आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67(क) भारतीय न्याय संहिता की धारा 294 और स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 4 के उल्लंघन के लिए भारत में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को सार्वजनिक पहुंच से प्रतिबंधित कर दिया है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी नीट प्रश्नपत्र लीक मामले और इसके विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर लगातार तीसरे दिन गतिरोध जारी रहा। हंगामे के बीच जहां सरकार ने कहा कि वह नीट प्रश्नपत्र लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, वहीं विपक्ष इस चर्चा को नियम 267 के तहत कराने की मांग पर अड़ा रहा। विपक्ष ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही इस विषय पर चर्चा हो सकती है। इस मुद्दे पर हंगामे के बीच उच्च सदन की कार्यवाही 3 बार बाधित होने के बाद अपराह्न 3 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण आज भी उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे जब सदन की बैठक शुरू हुई तो सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सिक्किम में तीस्ता नदी पर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनएचपीसी की निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना की सुरंग में हुए हादसे में 20 लोगों की मौत की जानकारी दी। सदस्यों ने इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में कुछ क्षण का मौन रखा। श्री राधाकृष्णन ने सदन को भारत में स्वदेश में विकसित पहली हाइड्रोजन ईंधन से संचालित रेलगाड़ी के परिचालन शुरू होने की भी जानकारी दी और इसे स्वच्छ, टिकाऊ तथा तकनीकी रूप से उन्नत रेल परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि सदन इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और रेल अधिकारियों को बधाई देता है। बाद में विपक्षी सदस्यों ने अपने अपने मुद्दे उठाने चाहे। सभापति ने सदन में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उनकी बात शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। इसके जवाब में विपक्षी सदस्यों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। श्री खड़गे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया और उन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। उन्होंने कहा कि सोमवार को छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई से उन्हें बेहद पीड़ा हुई है। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के अधिकतर सांसद काली शर्ट और काला कुर्ता पहनकर सदन पहुंचे। श्री खड़गे की बाह में काले रंग की पट्टी बंधी हुई थी। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद जब बैठक 12 बजे फिर शुरू हुई तब उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्य प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में हंगामा करने लगे। श्री हरिवंश ने सदस्यों को शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि ये प्रश्नकाल है। आजादी के 50 वर्ष पूरे होने पर सदन में ये संकल्प लिया गया था कि किसी भी हालत में प्रश्नकाल और शून्यकाल चलाया जाएगा। अगर सदन अपनी बात पर कायम नहीं रहता है तो जनता के बीच क्या संदेश जाएगा। उन्होंने कहा कि सवालों के जवाब तैयार करने में कितना समय और जनता का धन लगता है, इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने अपील की कि कृपया प्रश्नकाल चल

थी। अपनी बात का असर न होते देख श्री हरिवंश ने एक मिनट के भीतर ही बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने कार्यवाही को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को लेकर हंगामा करने लगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक सहित हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और आसन की व्यवस्था मिलने पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं और छात्रों के भविष्य के लिए नीट परीक्षा से जुड़े विषय पर चर्चा के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। सरकार ने एक एक करके जो भी कदम उठाए हैं उन्हें देश के सामने रखना हमारा दायित्व है। श्री रिजिजू ने कहा कि उन्होंने कई दलों के सदस्यों से बात की है और वे सभी चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले तो चर्चा की मांग करती है और फिर नारेबाजी करके सदन को बाधित करती है, जो ठीक नहीं है। श्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है, हमने पहले दिन से बात कही है, लेकिन चर्चा नियम के तहत होती है। चर्चा कब होनी है, कितनी लंबी होनी है और किस नियम के तहत होनी है, इसका निर्णय सभापति सभी दलों के नेताओं से बात करने के बाद लेंगे। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्षी सदस्यों के आचरण की निंदा करते हुए कहा कि सरकार हर अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। श्री नड्डा ने कहा विपक्ष की ओर इंगित करते हुए कहा कि ये इंडी गठबंधन का व्यवहार बहुत गैर जिम्मेदाराना है, यह प्रजातांत्रिक विरोधी गतिविधि साफ साफ संसद में दिख रही है। विपक्ष संसद की मर्यादाओं को तार तार करके प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहा है। सदन के नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार एक पारदर्शी और लोगों के हित में फैसले करने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की जो जन विरोधी गतिविधियां चल रही हैं, वे उसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष का प्रजातांत्रिक व्यवस्था और उसके मूल्यों में कोई विश्वास नहीं है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्षी सदस्य नियम 267 के तहत चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चर्चा तब तक संभव नहीं है जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि पिछले 4 दशकों में राज्यसभा में नियम 267 का इस्तेमाल दुर्लभतम मामलों में हुआ है। द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा ने सवाल किया कि दुर्लभतम मामला क्या होता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जिस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है वह दुर्लभतम ही है। इस दौरान सदन में हंगामा तेज हो गया और उपसभापति हरिवंश ने बैठक अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में नीट प्रश्न पत्र लीक मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस बीच आसन की अनुमति से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कांग्रेस ने चर्चा की मांग की थी, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, अब विपक्षी सदस्य शर्त रखकर चर्चा टालने की कोशिश कर रहे हैं। उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आपने कहा है कि नियम 267 का उपयोग दुर्लभतम मामलों में किया जाता है, जो घटना हुई है उससे अधिक दुर्लभ से दुर्लभतम मामला भला और क्या हो सकता है, बच्चों पर बल प्रयोग किया गया है। इसी दौरान विपक्षी सदस्यों ने हंगामा तेज कर दिया और उपसभापति हरिवंश ने सदन में व्यवस्था बनते न देख बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा की कार्यवाही संचालन संबंधी नियम 267 के तहत सभापति की अनुमति से कोई सदस्य अत्यंत महत्वपूर्ण जनहित के किसी विषय पर चर्चा कराने के लिए सदन की निर्धारित कार्यवाही स्थगित करने का अनुरोध कर सकता है। उच्च सदन में 20 जुलाई को मॉनसून सत्र शुरू होने के बाद से ही नीट प्रश्न पत्र लीक होने के मुद्दे पर गतिरोध लगातार बना हुआ है और अभी तक कोई महत्वपूर्ण विधायी कामकाज नहीं हो सका है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने चीन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अनाहत सिंह और आर्यवीर दीवान ने विश्व स्क्वैश जूनियर व्यक्तिगत चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। विश्व तलवारबाजी चैंपियनशिप में तनिष्का खत्री और प्राची लोहान ने किया ऐतिहासिक प्रदर्शन, बनाई मुख्य एलिमिनेशन ड्रॉ में जगह। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कल से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में, 215 स्वर्ण पदक दांव पर। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 श्रृंखला कल से शुरू।

0: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं स्कॉच से, जहां अनाहत सिंह और आर्यवीर दीवान ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत के युवा स्कॉच खिलाड़ी अनाहत सिंह और आर्यवीर दीवान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विश्व स्कॉच जूनियर व्यक्तिगत चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। दोनों खिलाड़ियों ने अपने अपने मुकाबलों में सीधे गेम में जीत हासिल कर अगले दौर में प्रवेश किया। सुनते हैं कैसा रहा खिलाड़ियों का प्रदर्शन।
1: शीर्ष वरीयता प्राप्त अनाहत सिंह ने महिला सिंगल्स में हांगकांग की पुई यिन चोले लो को आसानी से 11-3, 11-1, 11-3 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। अगले राउंड में अनाहत का सामना मलेशिया की डोइस ये सेन ली से होगा। वहीं पुरुष सिंगल्स में आर वीर दीवान ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका के जोसेफ फीस्ट को लगातार गेम में 11-4, 11-3, 11-3 से हराया। अगले राउंड में आर्यवीर का मुकाबला अमरीका के यासीन शालाबी से होगा। हालांकि गुरवीर सिंह, युषा नफीस, सानवी कलंकी, रुद्र सिंह और अनिका दुबे को हार कर टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा। दूसरे दिन के मुकाबले में कई रोमांचक नतीजे भी देखने को मिले। ब्राजील की लारा सिल्वा ने 0-2 से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए मुकाबला 3-2 से अपने नाम करते हुए अंतिम 16 में जगह बनाई। मलेशिया की हरलीन टेन ने भी कनाडा की विंग काई ग्लेडिस हो के खिलाफ 2-1 से पीछे रहने के बाद बेहतरीन वापसी करते हुए जीत दर्ज की। इसके अलावा इंग्लैंड के डाल्टन रॉबर्ट्स, हांगकांग की हेलेन टैंग, सऊदी अरब के मोहम्मद अल नासफान और मिस्र की हबीबा रिज ने भी अपने अपने मुकाबले जीतकर अगले दौर में प्रवेश किया। बेल्जियम की सवाना मोक्सहम ने भारत की सानवी कलंकी को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: पर अब रुख कर लेते हैं तलवारबाजी की ओर, जहां तनिष्का और प्राची ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। विश्व तलवारबाजी चैंपियनशिप में तनिष्का खत्री और प्राची लोहान ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए एलिमिनेशन ड्रॉ में जगह पक्की कर ली है। सुनते हैं वैष्णवी की एक रिपोर्ट।
2: भारतीय तलवारबाज तनिष्का खत्री और प्राची लोहान इतिहास रचते हुए आज सीनियर विश्व तलवारबाजी चैंपियनशिप में 64 खिलाड़ियों के मुख्य एलिमिनेशन ड्रॉ में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला एपी खिलाड़ी बनी। 9 दिवसीय चैंपियनशिप के पहले दिन प्रतिस्पर्धा करते हुए तनिष्का और प्राची ने राउंड रोबिन पूल और शुरुआती एलिमिनेशन दौर की बाधा को पार करते हुए मुख्य एलिमिनेशन ड्रॉ में जगह बनाई। ये दोनों अब 25 जुलाई को 64 खिलाड़ियों के एलिमिनेशन ड्रॉ में चुनौती पेश करेंगी, जहां उनका लक्ष्य शीर्ष 32 खिलाड़ियों में जगह बनाना होगा। वहीं पुरुष व्यक्तिगत फॉइल स्पर्धा में सचिन 107वें स्थान के साथ शीर्ष भारतीय खिलाड़ी रहे। आदित्य ने 137वां, सेनासम हिमांश सिंह ने 143वां और तेजस मनोज पाटिल ने 149वां स्थान हासिल किया। वैष्णवी, स्पोर्ट्स फैन।
0: और अब चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर। चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स मुकाबले में आज सिंधु ने उन्नति हुड्डा को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने

0: इंडोनेशिया के अलवी फरहान को शिकस्त दी। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी विशेष। विशेष, ये जो टूर्नामेंट है चाइना ओपन, रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है, तो कैसा रहा आज भारतीय खिलाड़ियों का दिन?
1: ये प्रशांत, अगर आज की बात करें तो भारतीय खिलाड़ियों के लिए दिन काफी मिला जुला रहा। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता जो है पीवी सिंधु, उन्होंने अपने ही देश की उन्नति हुड्डा को हरा दिया है और प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इससे पहले पीवी सिंधु ने जापान ओपन भी जीता था और अपना 2 साल का खिताबी सूखा है वो भी खत्म किया था। उन्होंने 56 मिनट तक चले मुकाबले में उन्नति को 21-14, 9-21 और 21-10 से शिकस्त दी। हालांकि शुरुआत में उन्नति ने उनको काफ़ी टक्कर दी, मैच 1-1 की बराबरी पर था और तीसरे गेम में सिंधु ने बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन किया और अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए पहले उन्होंने स्कोर को 6-3, फिर 10-5, फिर 15-8 तक पहुँचाया और अंत में जो सेट था, जो गेम था, उसको 21-10 से जीतकर बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेल का प्रदर्शन किया। अगर मेन सिंगल्स की बात करें तो आयुष शेट्टी ने आज एक बहुत बड़ा उलटफेर किया है। उन्होंने 11वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी इंडोनेशिया के अलवी फरहान को जो है हरा दिया है। वो पूर्व विश्व जूनियर चैंपियन भी रह चुके हैं। उन्होंने फरहान को 17-21, 21-5 और 21-17 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। ये मुकाबला करीब 57 मिनट चला। शुरुआत में दोनों ही खिलाड़ी अपने नियंत्रण में थे लेकिन अंत में धैर्य उन्होंने बनाए रखा और मुकाबले में जीत दर्ज की। हालांकि अब सभी की निगाहें जो हैं वो जापान के युशी तानका से जो मुकाबला चल रहा है लक्ष्य का उस पर है।
0: लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है पीवी सिंधु ने, भी हाल ही में जापान ओपन का खिताब भी जीता है और कल उनका मुकाबला किनसे होगा विशेष?
1: प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना जो है वो चेन यूफेई से होगा और सिंधु ने पिछले सप्ताह जो है सेमीफाइनल में इनको सीधे गेमों में हराया था और दोनों खिलाड़ियों के बीच लगभग 8-7 की जो मामूली बढ़त है वो चेन के पास है।
0: तो सभी प्रशंसकों की निगाहें होंगे जिस प्रकार का प्रदर्शन पीवी सिंधु का जापान ओपन में रहा, चीन ओपन में भी वैसा ही प्रदर्शन करें और इस खिताब को भी अपने नाम करें। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कल से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगी। प्रतियोगिता में 74 देशों के करीब 3000 एथलीट्स 10 खेलों में हिस्सा लेंगे। इनमें 215 स्वर्ण पदक दांव पर होंगे। तो कल किन भारतीय खिलाड़ियों पर होंगी नजर, बता रही है जागृति अपनी रिपोर्ट में।
2: भारत राष्ट्रमंडल खेलों में 19वीं बार हिस्सा लेने जा रहा है जिसमें उसके 124 एथलीट्स मेडल के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे। 8 एथलीट्स सामान्य खेलों और 5 पैरा स्पोर्ट्स में पदक के लिए मुकाबला करते नजर आएंगे। भारत अपने अभियान की शुरुआत पुरुषों और महिलाओं के लॉन बॉल इवेंट से करेगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में यादगार प्रदर्शन करते हुए पदक जीतने और इतिहास रचने के बाद टीम राष्ट्रमंडल खेल 2026 में एक बार फिर दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों को चुनौती देने के लिए तैयार है। भारतीय महिला लॉन बॉल टीम ने बर्मिंघम में खेले गए राष्ट्रमंडल खेल 2022 में लवली चौबे, पिंकी, नयन मोनी, सैकिया और रूपा रानी टिर्की ने महिला फोर्स इवेंट के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता था जो लॉन बॉल में भारत का पहला पदक था। इसके अलावा सुनील बहादुर, चंदन सिंह, नवनीत सिंह और दिनेश कुमार की पुरुष फोर्स टीम ने रजत पदक अपने नाम किया था। पिछली बार भारत पुरुष पेयर्स इवेंट में भी पदक जीतने के करीब पहुंचा था। इस बार एथलेटिक और पैरा एथलेटिक्स, स्विमिंग और पैरा स्विमिंग, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, ट्रैक साइकिलिंग और पैरा ट्रैक साइकिलिंग, नेटबॉल, वेटलिफ्टिंग और पैरा वेटलिफ्टिंग, बॉक्सिंग, जूडो, बॉल्स और पैरा बॉल्स, 3x3 बास्केटबॉल और 3x3 व्हील चेयर बास्केटबॉल खेलों में खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: और अब बात टेबल टेनिस पर। अल्टीमेट टेबल टेनिस के 7वें संस्करण में कल एक रोमांचक मुकाबले में HVR कोलकाता थंडर ब्लूट्स ने यू मुंबा टीटी की जीत का सिलसिला तोड़ते हुए 8-7 से जीत हासिल की। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
3: डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में हार के बावजूद यू मुंबा ने भी सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। उनके बेहतर गेम काउंट और अनुकूल समीकरणों ने कोलकाता और डेम्पो गोवा चैलेंजर्स के साथ उनके क्वालिफिकेशन को सुनिश्चित किया। कोलकाता की तनिषा कोटेचा ने अन्ना हर्षी को इस सीजन की पहली हार का स्वाद चखाकर शानदार प्रदर्शन किया, जबकि जेंग जियान ने आखिरी मैच के निर्णायक गेम में संयम बनाए रखते हुए जीत हासिल की। इस नतीजे ने लीग के आखिरी दो मुकाबलों से पहले ही दोनों टीमों का नॉकआउट स्टेज में पहुंचना तय कर दिया। कोलकाता ने एडवर्ड आयोनेस्कू के जरिए अच्छी शुरुआत की। उन्होंने एक गेम हारने के बाद वापसी करते हुए मानुष शाह को 9-11, 11-8, 11-7 से

0: हराया। इसके बाद तनीषा कोटेचा ने सीजन का बड़ा उलटफेर करते हुए अब तक अजय रही अन्ना हर्षी को सीधे गेम में 11-6, 11-4, 11-4 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। यू मुंबा ने मिक्स्ड डबल्स में वापसी की। मानुष और हर्षी ने शुरुआत में पिछड़ने के बाद अंकुर भट्टाचार्य और तनीषा को 3 गेम में 8-11, 11-4, 11-7 से हराकर डिफेंडिंग चैंपियंस को मुकाबले में बनाए रखा। इसके बाद फ्रांस के लिलियन बारडेट ने एक और कड़े मुकाबले में अंकुर को 3 गेम में 11-9, 11-8, 6-11 से हराकर यू मुंबा को जीत के करीब पहुंचाया। हालांकि नित्याश्री मणि ने शुरुआती 2 गेम में जियान को 11-10, 11-5 से हराकर मुकाबला 7-7 से बराबर कर दिया। इसके बाद सब कुछ निर्णायक अंतिम गेम पर आ टिका। दबाव के बीच जियान ने शानदार वापसी करते हुए 11-5 से जीत दर्ज की और कोलकाता को मुकाबला जिता दिया। इस नतीजे के साथ दोनों टीमों ने सेमीफाइनल में अपनी जगह भी पक्की कर ली। तनीषा को इंडियन प्लेयर ऑफ द टाई चुना गया, जबकि बारडेट ने मैच IQ प्लेयर और फॉरेन प्लेयर ऑफ द टाई दोनों पुरस्कार जीते। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
1: अब रुख कर लेते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की 2020 श्रृंखला का पहला मैच कल जिम्बाब्वे के हराने में खेला जाएगा। ये मुकाबला शाम 4:30 बजे से होगा। श्रृंखला का दूसरा मैच 25 और तीसरा 26 जुलाई को होगा। मुकाबले से पहले युवा वैभव सूर्यवंशी ने इस मैदान से जुड़ी अपनी सुनहरी यादों को साझा किया।
2: काफी मेमोरेबल ग्राउंड है मेरे लिए। अभी हम 4 महीने पहले U19 का वर्ल्ड कप यहाँ पे खेले थे और जीते थे, तो काफी स्पेशल ग्राउंड। पिचेस और जो भी कंडीशन है के बारे में काफी आइडिया लगा था उस टाइम पे भी, तो ट्राई करूंगा जो मुझे आइडिया लगा है उसको मैच में अप्लाई करने का और अच्छा करने का। जो प्रैक्टिस में करते आ रहा उसको बैक करूंगा और जो मेरा गेम है उसको ट्राई करूंगा बैक करने को, और टीम के लिए जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता हूँ गेम में वो देने को ट्राई करूँ। और इस ग्राउंड पे मैंने 2 मैच खेले थे, दोनों काफी अच्छा गया था। मैं ट्राई करूंगा उसको कैरी फॉरवर्ड करना। ऑब्वियस सा बात है, जो भी चाहिए कोचेस अवेलेबल करा रहे हैं और जो भी मुझे प्रैक्टिस चाहिए वो मुझे मिला और काफी अच्छा लग रहा है। कॉन्फिडेंस भी है, वही प्रोसेस फॉलो करना है और अच्छे से 100% देना है टीम के लिए बस।
1: आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर दोनों T20 श्रृंखला गंवाने के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर आखिरकार बतौर कप्तान भारत को पहली जीत दिलाना चाहेंगे। श्रेयस अय्यर ने आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज 0-2 से गंवाई। इसके बाद इंग्लैंड के विरुद्ध 5 मुकाबलों के T20 सीरीज में भारत को 0-4 से हार का सामना करना पड़ा। अय्यर ने सभी 7 मैच में टॉस जीतकर महेंद्र सिंह धोनी की बराबरी की, लेकिन एक भी मुकाबला अपने पक्ष में नहीं कर सके। और श्रोताओं, आपको बता कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच वर्ष 2010 से अब तक कुल 14 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा। भारत ने 11 मैच अपने नाम किए, जबकि जिम्बाब्वे 13 मैच जीत चुका है। और अब इस श्रृंखला में नए कप्तान श्रेयस अय्यर अपना पहला मुकाबला जीतना चाहेंगे। वहीं जिम्बाब्वे की टीम सिकंदर रजा के साथ उनके नेतृत्व में घरेलू उम्मीदों को कायम रखना चाहेगा। उधर अनुभवी बल्लेबाज रहमत शाह को अफगानिस्तान का नया टेस्ट और वनडे कप्तान नियुक्त किया गया है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने विकेटकीपर बल्लेबाज रहमानुल्ला गुरबाज को दोनों फॉर्मेट में उप कप्तान नियुक्त करने की पुष्टि की है। रहमत शाह बतौर कप्तान हशमतुल्ला शहीदी की जगह लेंगे। शहीदी ने अफगानिस्तान के वनडे और टेस्ट फॉर्मेट की कप्तानी से आज इस्तीफा दे दिया। रहमत और गुरबाज की नई नेतृत्व जोड़ी अगस्त में अफगानिस्तान के आने वाले आयरलैंड दौरे के दौरान आधिकारिक रूप से कमान संभालेंगे। सीरीज में 5 एक दिवसीय मैच खेले जाएंगे। उधर ICC ने आज एक दिवसीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों की रैंकिंग जारी कर दी है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल शीर्ष पर पहुंचने से महज 1 पॉइंट दूर है। और अब बात निशानेबाजी पर। चीन के हंगझोऊ में मेजबान चीन ने आज ISSF विश्व कप के पहले दिन दबदबा बनाते हुए दोनों स्वर्ण पदक अपने नाम किए। आज का दिन भारत के लिए निराशाजनक रहा। भारत का कोई भी निशानेबाज पदक नहीं जीत सका। शुरुआत में ही 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में से कोई भी निशानेबाज क्वालिफिकेशन चरण पार नहीं कर सका। सुरुचि इंदर सिंह और केदारलिंग उचगांगे की जोड़ी ने कुल 577 अंक के साथ 9वां स्थान हासिल किया। वहीं सैन्यम और कमलजीत ने भी कुल 577 अंक बनाए, लेकिन उन्हें 11वें स्थान से संतोष करना पड़ा। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बेहतर रेल सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीक के कारण रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने युवाओं में मादक पदार्थों के सेवन की गंभीर समस्या से निपटने के महत्व पर भी बल दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की।
5: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
4: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
6: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
4: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: मॉनसून सत्र के लगातार तीसरे दिन विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित होती रही। व्यवधान के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका। दोनों सदनों में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं चल सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने अपना विरोध जारी रखा। आज लोकसभा की कार्यवाही 3 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 4 बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उन्होंने दोनों पक्षों के विचार सुने है और सरकार खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्षी दलों से कार्यवाही बाधित करने के बजाय विस्तृत चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार

0: युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
1: ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं।
2: हम एडजर्नमेंट मोशन मांग रहे हैं ताकि ठीक से डिस्कशन हो। आप 8 घंटे के लिए वंदे मातरम डिस्कस कर सकते हैं, तो आप लंबे समय के लिए ठीक ढंग से एडजर्नमेंट मोशन पे ये इशू भी डिस्कस कर सकते हैं।
0: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा है कि सरकार से नीट परीक्षा लीक मामले पर युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन मिलने पर वे अपना अनशन समाप्त कर देंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह को लिखे पत्र में श्री वांगचुक ने कल रात अस्पताल में उनसे मिलने के लिए दोनों मंत्रियों का आभार व्यक्त किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया है। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब तक केवल 2 रह गई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय 2013-14 में लगभग 39,000 करोड़ रूपये से बढ़कर 2026-27 में 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। पिछले 2 वर्षों में सरकार ने अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने के आरोप में देश भर में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म को सार्वजनिक पहुंच से बाहर कर दिया है। लोकसभा में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुर्गुन ने कहा कि सरकार शिकायतों के आधार पर ऐसे मध्यस्थों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई करती है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में तोतापुरी आमों की खेती, प्रसंस्करण और विपणन प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तीनों राज्यों में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की आय में लगातार हो रही गिरावट की शिकायतों के मद्देनजर जारी किए गए हैं। अयोध्या में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की हुई बैठक में मंदिर प्रबंधन, दान प्रणाली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति, ट्रस्ट में रिक्त पद भरने और धार्मिक समिति के पुनर्गठन से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ट्रस्ट ने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था पहले की तरह ही अडिग है और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या स्थिर है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 7वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है। आयोग राज्य सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त संगठनों के कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते, पदोन्नति और पेंशन से संबंधित संशोधनों की सिफारिश करेगा। आयोग अगले 6 महीनों के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। छत्तीसगढ़ में अब अग्निवीर सैनिकों को पुलिस विभाग में आरक्षक, वन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा। इसका लाभ उन अग्निवीरों को मिलेगा जो 4 वर्ष की सेवा पूरी कर वैध सेवा प्रमाण पत्रों के साथ सेवामुक्त हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। कल हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान

0: स्थान में भी तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी इसी तरह के मौसम की स्थिति बने रहने का अनुमान है। सिक्किम के नामची जिले के समरदुंग स्थित सुरंग में बचाव दल ने 8 और शव बरामद किए हैं। अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: नामची जिले के NSPC की टनल के अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए आज तीसरे दिन भी रेस्क्यू दल काम कर रही है। कम विजिबिलिटी और मीथेन गैस के लीकेज के वजह से शवों को निकालना मुश्किल हो गया है। इस बीच सिक्किम सरकार ने मरने वालों के पार्थिव शरीर उनके परिवारों को सौंप दिए है। केंद्र सरकार के अलावा सिक्किम सरकार और NSPC ने मरने वालों के परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। घटना के समय टनल के अंदर कम से कम 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: कश्मीर में आज अनंतनाग जिले के लाल चौक इलाके में आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। हमले के बाद सुरक्षा बलों का पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मृतक पुलिसकर्मी को श्रद्धांजलि देते हुए दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक के कारवार में स्वदेशी रूप से निर्मित माहे श्रेणी का एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS मालवन को शामिल किया है। ये नौका जलमग्न निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियानों और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों के साथ साथ बारूदी सुरंगों को नष्ट करने की क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी घटकों से निर्मित ये नौका आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को बल देती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया में आज स्कोपिया शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष, असहिष्णुता और विभाजन से जूझ रही दुनिया में गांधी जी के संवाद, करुणा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श अत्यंत प्रासंगिक बने हुए हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचावास्केज से मुलाकात की। श्री सोनोवाल ने कहा कि दोनों देश बेहतर भविष्य के लिए परस्पर संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया, वहीं आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को शिकस्त दी। इस बीच पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला जापान के युशी तनाका से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लक्ष्य सेन ने पहला गेम अपने नाम कर लिया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
2: बॉम्बे शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.9% के नुकसान से 715 अंक लुढ़ककर 76,755 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.8% की गिरावट से 191 अंक गिरकर 23,996 के स्तर पर बंद हुआ। NSE मिड कैप सूचकांक में 1% से अधिक और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 33 पैसे के नुकसान से 96.57 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर रहा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को न्यायिक अधिकारियों की सेवा निवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष करने पर विचार करने का निर्देश दिया। न्यायालय की पीठ ने पूरे देश में जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवा निवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की समान मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनाना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है खाद्य प्रसंस्करण से उद्यमिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रहे प्रोत्साहन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह और वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: एक छोटा सा गाँव,

0: एक साधारण रसोई और उसी रसोई से उठती एक बड़ी शुरुआत। जहां कभी सिर्फ घर के लिए अचार, पापड़ और मसाले बनते थे, आज वहीं से निकल रहे हैं ब्रांड, रोजगार और आत्मनिर्भरता की नई कहानियां। खेत के एक कोने में उगाई गई धनिया जब एक अत्याधुनिक पैकेज्ड ब्रांड बनकर उभरती है, या फिर किसी छोटे से शहर की बेकरी जब एक नए भारत के निर्माण की मिसाल बनती है, तब जन्म लेती है असली जमीनी क्रांति। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना यानी PMFME स्कीम देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल रही है। एक ऐसी योजना जिसने न केवल 2 लाख से अधिक ऋण स्वीकृतियों का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया है, बल्कि देश के अनौपचारिक खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को औपचारिक पहचान दी है। 20,300 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश, 6 लाख से अधिक आजीविका के अवसर और 44% महिला उद्यमियों की हिस्सेदारी। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये कहानी है उस भारत की जो वोकल फॉर लोकल को अपना मंत्र बनाकर आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर रहा है। आज की इस विशेष चर्चा में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे ये योजना वित्तीय समावेशन, तकनीक, ब्रांडिंग और मार्केट लिंकेज के जरिए हमारे किसानों और स्थानीय उद्यमियों को रोजगार मांगने वाले से रोजगार देने वाला बना रही है। साथ ही हम खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र की भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने और वरिष्ठ कृषि एवं आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार
0: जगदीश जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। ये जो योजना है, इसने एक बहुत बड़ा मील का पत्थर स्थापित किया है अनौपचारिक सूक्ष्म इकाइयों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाकर, और लगभग 75,000 से अधिक इकाइयां अब उद्यमी पंजीकरण, FSS, AI और GST के दायरे में आ चुकी है। एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आप इस फॉर्मलाइजेशन को केवल कर या विनियमन के चश्मे से अगर हटाकर व्यापक स्तर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक विश्वसनीयता और क्रेडिट योग्यता के संदर्भ में देखें तो क्या समझते हैं आप?
1: देखिए, मुझे लगता है कि जो ये अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है, जो बेसिकली गांव पर आधारित है या टियर 2 सिटीज पर आधारित है, टियर 3 सिटीज पर आधारित है, इस पर बहुत पहले ध्यान दिया जाना चाहिए था, लेकिन देर से ही सही, बिल्कुल सही ध्यान दिया गया है। और इसकी जो योजना बनी है वो इतनी मुकम्मल और इतनी परफेक्ट है कि आप किसी भी राज्य में चले जाए, आपको बाजार जिसमें आप अनाज के अलावा अपने घरेलू रसोई का जो सामान लेते हैं, इसके अलावा आप नाश्ते का सामान लेते हैं, वो सब प्रोडक्ट्स आपको लोकली मेड मिलेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, और इसके कारण जो मल्टीनेशनल कंपनीज है जिन्होंने इस मार्केट पे एक तरह से कब्जा करके रखा था, उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट में टिकने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है, उनको नई नई स्कीम लानी पड़ती है। हम देखते हैं कि बहुत छोटे स्तर पर, मतलब अगर आप कस्बाई स्तर पर चले जाए तो कस्बाई स्तर पर भी लोकली और मैन्युफैक्चर्ड, लोकली प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। सिर्फ खाने पीने के पदार्थ ही नहीं, दूसरे भी पदार्थ आपको मिलते हैं। ये बहुत दिन से और बहुत वर्षों से ये बाजार डेवलप हो रहा था, मोदी सरकार ने पहली बार इसको फॉर्मली ध्यान दिया और इसके लिए एक अच्छी मजबूत योजना शुरू की। और ये जो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है, अगर आप जो औपचारिक अर्थव्यवस्था देखेंगे देश की, तो उससे करीब 1/4 तो होगी ही, अभी उसका आकलन नहीं हुआ है कि ये जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, जो बेसिकली रूरल बेस्ड है, ये कितने की है, कितने हजार करोड़ की, कितने बिलियन डॉलर्स की है, ये आकलन अभी किसी ने नहीं किया कि एक आध स्टडी इस पर है। लेकिन अगर आप पाएंगे तो इस समय देश भर में, और लोग लोकली वोकल फॉर लोकल का नारा मोदी जी सरकार ने ऐसे ही नहीं दिया है, इस जो डेवलपमेंट हो रहा है नीचे के लेवल पर उसको ध्यान में रखते हुए दिया है। आत्मनिर्भर भारत की भी जो अभियान चल रहा है जिसके अंतर्गत ये योजना है, उसको भी इस बात को ध्यान में रख के दिया गया है कि गांवों, कस्बों और टियर 2 टियर 3 सिटीज में, यहाँ तक कि आप जो बड़े शहर हैं उनमें भी आप पाएंगे कि उन अलग अलग क्षेत्रों में उन क्षेत्रों के बने हुए प्रोडक्ट्स ही आपको मिलते हैं, चाहे खाने पीने के पदार्थ हो, चाहे आपके इस्तेमाल के पदार्थ हो, सौंदर्य प्रसाधन से लेकर तो खाने पीने की चीज, नाश्ते की चीज और मनोरंजन की चीजें, वो सब लोकली प्रोड्यूस हो रही है। इस इकोनॉमी को टैप करके इस योजना ने बड़ा और मदद पहुंचाई है उन सब उद्यमियों को जो अपने बल पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं।
0: जी हरवीर जी, योजना ने हाल ही में 2 लाख से अधिक क्रेडिट लिंक्ड स्वीकृतियों का आंकड़ा छुआ है और इसमें 20,300 करोड़ से अधिक का निवेश भी आकर्षित हुआ है, लेकिन हम सब जानते हैं कि भारत में माइक्रो फाइनेंस और बैंकिंग तंत्र में अंतिम मील तक क्रेडिट डिलीवरी एक बड़ी चुनौती रही है। आपसे समझना चाहेंगे कि इस योजना में ऐसा

0: क्या अलग रहा जिसने बैंकिंग तंत्र के प्रति सूक्ष्म उद्यमियों का जो हिचकिचाहट का भाव है उसे तोड़ा? क्या बैंक अब सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण को कम खतरे वाला क्षेत्र मानने लगे हैं?
1: एक तो ये अपने आप में हमारे सामने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र है उसमें हमारे लिए है। अब भी करीब 30 लाख करोड़ से ज्यादा का ये एक इंडस्ट्री है देश में, और जो अगले 2 साल में मेरे ख्याल से करीब 45,000 करोड़ तक उसको पार कर जाएगा। अब ये जैसे अभी उपासना जी कह रहे थे कि हम बात कर रहे हैं फॉर्मलाइजेशन और इनफॉर्मल की, क्योंकि जो बड़ा फॉर्मल सेक्टर है, बड़ा कब्जा, जो बड़े ब्रांड, बड़े मार्केट एक्सेस उनके पास रहे हैं, और जबकि छोटे स्तर पर गांव से थोड़ा आगे हम जाए जो छोटे कस्बे, छोटे शहर, वहां पर तमाम सारे एंटरप्रेन्योर्स ने कोशिश की कि वो वैल्यू एडिशन में जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उसमें जाए, एग्रीकल्चर के वैल्यू एडिशन में जाए। वैल्यू एडिशन है फूड प्रोसेसिंग, जिससे कि वो बेहतर उनके आय का जरिया बने और स्थानीय स्तर पर किफायती। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो एक बाधा आती है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए वो होती है वित्तीय संसाधनों की, जो हम रिसोर्सेज जो है फाइनेंशियल उसकी बात करते हैं। जो छोटा एंटरप्रेन्योर है वो अगर उसके पास पूंजी नहीं है, और इसके पहले जब फॉर्मल सेक्टर की बात करेगा या बैंक्स को अप्रोच करेगा, उसका उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, तमाम सारे कोलेटरल चाहिए, फिर बैंक्स में इतना लंबा प्रोसेस है, उसको ये मिलना मुश्किल था और लोग आगे नहीं बढ़ पाए। जाहिर सी बात है कि इसका स्कीम को ही इसी काम के लिए तैयार किया गया कि जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कुछ लाख रुपए से अपना काम शुरू करना चाहते हैं, वो किस तरीके से फॉर्मलाइज एंटरप्रेन्योर के रूप में और उनकी जो यूनिट है वो कैसे फॉर्मलाइज सेक्टर में जाए, जो गुणवत्ता के मानक है उनको पूरा करती हो, और साथ में उसके लिए मार्केट की जो लोकलाइज स्तर पर जो अपॉर्चुनिटी है उसको टैप करे। अब इस तरह की जो स्कीम जो बिना कोलेटरल के एक सीमित स्तर पर जो फाइनेंस मुहैया कराती है ऐसे जो एस्पिरेशनल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इनको कोई बहुत बड़ा जो तामझाम होता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, आपके पास असेट कितना है, आपकी इक्विटी कितनी है, फिर बैंक तय करेगा कि हम इसमें कितना डालेंगे और किस तरीके से वो असेस करेगा, उन सब झंझटों से मुक्त करते हुए इस तरह की स्कीम लाई गई, ताकि ये जो बेहतर संभावना का जो क्षेत्र है उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए और स्थानीय स्तर पर, क्योंकि ये लगातार एक बात है, जब हम कहते हैं कि जो भारत बड़े शहरों में नहीं, महानगरों में नहीं, जो मेजर इंडस्ट्रीज में नहीं है, जो छोटे स्तर पर है, जो रूरल इंडिया जिसे हम कहें या हमारे जो सेमी अर्बन एरियाज हैं, वहां पे जो लोग एक तरीके से अपने उद्यमशीलता के जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके पास ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जिसको वो ठीक से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन जब उनके पास क्रेडिट की सुविधा दी गई, उनको टेक्नोलॉजी का नो हाउ, उनका जो हैंड होल्डिंग जिसे हम कहते हैं कि उनको बताया गया कि किस तरह की तकनीक आपका जो उत्पाद है उसको तैयार करने में काम आएगी, किस तरह की प्लांट और मशीनरी जो है इसमें जरूरत होती है, उसके लिए कैसे फाइनेंस मुहैया कराया जाएगा, और आप अपने उत्पाद को मार्केट में कैसे ले जा सकते हैं, मार्केट लिंकेज कैसे हो सकता है, क्योंकि जो छोटे एंटरप्रेन्योर है उसके सामने ये भी एक चैलेंज होता है कि जो मार्केटिंग का जो एक स्किल होती है उसके पास उतनी बेहतर नहीं होती जो बड़ी कंपनियों की, जो मार्केटिंग के जो लोग हैं या उनके जो संसाधन है, उनके पास जो रिसोर्सेज है वो होते हैं। तो उस चैलेंज को दूर करते हुए ये जो सारे स्टेप्स हैं, फाइनेंस अवेलेबल कराने से लेकर के उसको ट्रेंड करने तक, मार्केटिंग के तक, वो इस स्कीम की खास जो खूबी है, और जो हम देख रहे हैं कि भाई 2 लाख से ज्यादा सैंक्शंस इसमें हुए हैं, तो ये अपने आप में, या 20,000 करोड़ से ज्यादा का इसमें निवेश हो चुका है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी जो एक ये जो काम हो रहा है वो छोटे स्तर पर हो रहा है, और जो हमारी जो रूरल इकोनॉमी है, क्योंकि वो प्रोड्यूस भी वहीं से आ रहा है, तो उसके जो उत्पादक हैं उनको अपने आसपास अपने उत्पादों के थोड़ा बेहतर कीमत देने का एक बाजार भी खड़ा हो रहा है, तो ये एक जो इकोसिस्टम बन रहा है, तो वो इकोसिस्टम जो है, इनमें से बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर है वो फिर माइक्रो से स्मॉल में जा सकते हैं, फिर वो और बड़े हो सकते हैं, और बड़े हुए हैं लोग। इस तरीके के उदाहरण, जैसे 2 उदाहरण इस आर्टिकल की बात आपने जिक्र किया जिस तरह से छोटी जगहों पर, इस तरीके की तमाम सारी जो कहानियां सामने आती हैं और उसी रास्ते चल के देश में कई बड़ी कंपनियां एस्टेब्लिश हुई है, तो ये जो अपॉर्चुनिटी है उसको एक्सप्लोइट करने का और लोगों को स्थानीय स्तर पर बेहतर रोजगार के साथ में उनके जो इकोनॉमी जो है उसको बड़ा करने का एक अच्छा एक तरीके से एक ये स्कीम बनी और उसका

0: फायदा लोग उठा रहे हैं उसके नतीजे आने वाले दिनों में हमें और ज्यादा देखने को मिलेंगे। जैसा मैंने कहा कि जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है वो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है हमारे देश में। जिस तरह से लोगों की इकोनॉमी कंडीशन बदल रही है, उनके जो हाथ में अधिक पैसा आ रहा है तो वो प्रोसेस फूड की तरफ जा रहे हैं
1: जी।
0: और उनको फिर ये है कि जो सिर्फ बड़ी कंपनियां हैं उनकी तरफ न जाकर के जो स्थानीय स्तर पर उत्पाद उपलब्ध है वो उनके मार्केट जो है के रूप में सामने आ रहे हैं। कुल मिलाकर के अगर हम देखें हमारी जो जीडीपी का करीब 7% 7% ये सेक्टर बन गया है और एग्रीकल्चर का एक बड़ा हिस्सा इसके पास है। लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत बड़ी गुंजाइश है क्योंकि हमारा जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है जो हमारे पास जिसकी जो एक संभाव्यता जिसको हम कहते हैं उसका हमने बहुत छोटे स्तर का दोहन किया है। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो है उनके लिए अपार संभावनाएं हैं आगे बढ़ने की।
1: हरवीर जी, जिन कहानियों का जिक्र कर रहे थे, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि पीएमएफएमई योजना के सबसे पहले जो लाभार्थी थे वो थे जमुना लाल पाटीदार और उनका आवेदन इस योजना के तहत पहला आवेदन था जिसे स्वीकृत किया गया था। खाद्य प्रसंस्करण में कोई पृष्ठभूमि न रखने वाले 10वीं पास उद्यमी जमुना लाल पाटीदार को 10 लाख रुपए सरकार की तरफ से इस योजना से मिले। उन्होंने उसका निवेश धनिया प्रसंस्करण इकाई शुरू करने में किया। योजना के तहत उन्हें वित्त, मशीनरी और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और उनका विचार एक सफल उद्यम में बदल गया और आज उनके पास 5 से ज्यादा लोग हैं जो उनके लिए काम करते हैं और उनका व्यापार बहुत तेजी से फल फूल रहा है। जमुना लाल पाटीदार की ये कहानी हम सबको बताती है कि अगर आपके पास कुछ करने का जज्बा है और आपके पास एक विजन है, एक सोच है, एक प्लान है, तो उस प्लान को आगे बढ़ाने में इस तरह की जो सरकारी योजनाएं हैं वो बहुत मददगार साबित हो रही हैं। जगदीश जी, अगर खाद्य प्रसंस्करण की बात को हम आगे बढ़ाएं तो एक बड़ी चुनौती ये आती है कि अगर हमें वित्तीय सहायता मिल भी जाए तो जो छोटे स्तर के जो स्टार्टअप शुरू करने वाले लोग हैं या जो गांव के दूर दराज के किसान हैं, गुणवत्ता नियंत्रण कैसे करें, शेल्फ लाइफ को कैसे बढ़ाया जाए, जो मॉडर्न डे की पैकेजिंग है और राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाना, उनके लिए आज भी कहीं ना कहीं चैलेंजिंग होता है। क्या आप देखते हैं कि इस दिशा में किस तरह परिवर्तन लाने की जरूरत है और कितना बदलाव पिछले एक दशक में आया है?
2: देखिए, ये चैलेंज तो है और ये चुनौती भी है उन सब छोटे उद्यमियों के लिए जो अपने घर से या अपने गांव से ऐसा उद्यम शुरू कर रहे हैं, कर चुके हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो फल हैं और सब्जियां हैं इनके बहुत कम पदार्थ बनते हैं, 2-3% के लगभग इसका योगदान होता है फूड प्रोसेसिंग में। जबकि फूड प्रोसेसिंग भारत में और सनराइज सेक्टर बोला जाता है इकोनॉमी की भाषा में, और इसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश है क्योंकि भारत जो है सबसे बड़ा कृषि उत्पाद करने वाला देश है, सबसे अधिक दूध उत्पाद करने वाला देश है। और हम जो है, मतलब आप सोचिए कि फलों के बारे में, सब्जियों के बारे में भी भारत की जो रैंकिंग है वो वैश्विक रैंकिंग में ऊपर ही है। ये पूरा सेक्टर जो प्रोसेसिंग का सेक्टर है, हमारा खाने की वस्तुएं बनती हैं उसमें 32%, जैसा हरवीर सिंह ने बताया, बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, जबकि बहुत चुनौती है। और इसमें मैं 2-3 चीजें जरूर कहना चाहूंगा कि जो स्वयं सहायता समूह हैं जिनको आप हर राज्य में, और हर राज्य सरकार भी उनको अपनी तरफ से मदद दे रही है, आप किसी भी राज्य में चले जाए लोकल अखबार उठा के देखें तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई एक सक्सेस स्टोरी आपको जरूर मिलती है। कोई एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट अपने गांव में जाकर एग्रीकल्चर एक स्टार्टअप शुरू करता है और 200-500 किसानों को अपने साथ जोड़ता है, उनको नई टेक्निक सिखाता है। 3D प्रिंटिंग की जो टेक्नोलॉजी है आप छोटे शहरों तक पहुंच गई है और लोग उससे कर रहे हैं आपको, लेकिन उनको एक विशेषज्ञ सहायता की जरूरत जरूर है, उनको ब्रांडिंग ठीक से करने की जरूरत। अभी जो प्रोड्यूस वो तैयार करते हैं वो इतना ही होता है कि वो लोकली खप जाए, और इसका उद्देश्य भी मुझे यही होना चाहिए कि और जो प्रोडक्ट बाहर जाते हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, फल और उसके जो प्रोसेस्ड है पदार्थ वो सारे, और जो आप मिलेट्स आ गए, मिलेट्स के कई पदार्थ बनकर एक्सपोर्ट हो रहे हैं। हमारा जो खाद्यान्न है उसकी क्वालिटी के बारे में हमारा जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें कहीं कोई एकाध कोई खेप वापस आती होगी, अदरवाइज वो सब मार्केट में खपता है। आप यूरोप में घूमकर आइए, आपको भारत के हजारों छोटे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो सीधे एक्सपोर्ट होते हैं, लोग अमेजोन पर उसको ऑर्डर करते हैं और लोग खरीदते हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें इतना बड़ा, इसको सनराइज सेक्टर ऐसे ही नहीं कहते, इसमें इतना ज्यादा स्कोप है कि ये हमारी फॉर्मल इकोनॉमी के आधे के करीब पहुंच सकता है। इसी समय उसका जो आकार है वो बहुत बड़ा आकार है, उनको जरूर

0: किस बात की कि जो राज्य स्तर पर जो योजनाएं चलाई जा रही है, स्वयं सहायता समूह वर्षों से काम कर रहे हैं और जिन राज्यों में वो सफल हुए हैं वो आप जैसे यूपी है, यूपी में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उत्पादित होने वाले प्रोडक्ट्स को और प्रधानता दी जाती है, स्वयं सहायता समूह को कहा जाता है कि इनको आप बनाइए, इनको हम प्रमोट करेंगे, मार्केट से लिंक करेंगे और आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, टेक्निकल सपोर्ट भी देंगे। ये हो रहा है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी ऐसी योजनाएं हो रही है, हिंदी भाषी राज्यों में, दक्षिण में भी ऐसी कई योजनाएं चल रही हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट्स इसको सीरियसली लेती है, ये केंद्र की योजना बहुत अच्छी योजना है, ये मैं समझता हूँ कि जो सहायता राज्यों से मिल रही है उसके ऊपर है। अब 4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को इस योजना का लाभ मिला और 75,000 से ज्यादा प्रोडक्ट अगर इसमें लिस्टेड हुए जीएसटी में, FSSAI में, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसमें जो टेक्निकल असिस्टेंस है वो जरूर मिलना चाहिए। मिलेट्स जब से आए हैं, मिलेट्स पर आधारित खाद्य पदार्थ और प्रोसेस फूड बहुत बड़े पैमाने पर बन रहे हैं जहां मिलेट्स होते हैं, तो और फिर क्वालिटी को अगर हम मेंटेन करते हैं उसके लिए उसको वो मदद, ये जो स्कीम है इसमें ये सब दिया जा रहा है, लेकिन इसका आकार बढ़ाने की जरूरत है।
1: हरवीर जी, दो छोटे छोटे सवाल है। पहला कि लोकल प्रोसेसिंग यूनिट से क्या एग्री सप्लाई चेन मजबूत हो रही है, और दूसरा कि छोटे स्तर पर जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, क्या ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार का सस्टेनेबल मॉडल बन रहे हैं, क्या कहेंगे आप?
2: सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि जो हमारे ग्रामीण युवा है जो वहीं पर रुकना चाहते हैं और कुछ बड़ा सोच के काम करना चाहते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है और उनके लिए मौका मिलना चाहिए। जो ट्रेनिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और ट्रेनिंग में थोड़ा अभी कोशिश है इस स्कीम के सामने, लेकिन हमारे पास फूड प्रोसेसिंग के और फूड टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स हैं, निफ्टम्स हैं, तो जरूर इसमें इनिशिएटिव लेकर के जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं उनको जोड़ने के लिए वो थोड़ा उनको तैयार भी करना चाहिए इसके लिए कि आपके लिए यहाँ पर बड़ा इकोनॉमिक एक अपॉर्चुनिटी है, आप आगे जा सकते हैं और साथ में आप स्थानीय स्तर पर भी रोजगार के अवसर लोगों के लिए पैदा कर सकते हैं। फूड में ये फैक्टर जरूर है कि जो गुणवत्ता है और हाइजीन है, हमारा FSSAI है, उसके जो मानक है, उसके स्टैंडर्ड्स जो है, क्योंकि ये स्वास्थ्य से जुड़ा मसला है, तो वो उनको पूरा करते हुए ही अपने प्रोडक्ट्स को आगे लाएं, क्योंकि अगर आप जो फूड अथॉरिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं अगर आप उनको पूरा करेंगे और आपका प्रोडक्ट्स उस तरीके से बाजार में लोगों तक पहुंचेगा, तो इससे फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्थानीय स्तर पर बना रहे हैं या कोई बहुत बड़ी कंपनी बना रहे, क्योंकि आप उसी लेवल पर उसकी क्वालिटी जो है, उसकी हाइजीन उस स्तर पर ला रहे हैं और आप कम्पीट कर सकते हैं, क्योंकि आपके ओवरहेड्स कम है, आप सोर्सिंग वही कर रहे हैं, आपकी जो चेन है सोर्सिंग से लेके मार्केटिंग तक की वो बहुत बड़ी नहीं है, तो इसलिए आपके एक्सपेंसेस जो है वो इकोनॉमिकल है दूसरों के मुकाबले, तो ये एक अच्छा बहुत ही मॉडल कामयाब हो सकता है। और इसको क्योंकि बात ही इसमें फॉर्मलाइजेशन से हो रही है, क्योंकि इनफॉर्मल इकोनॉमी में जो लोग हैं उनको फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ बढ़ाना है हमें, और उसमें उनके जो FSSAI के उनके पास सर्टिफिकेट्स हो, उनके पास जो है ये बाकी टैक्सेशन की फॉर्मेलिटीज हो, वो सब इसका पार्ट है। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ी मुहिम के रूप में धीरे धीरे, जैसे लेकिन ये अभी रीजनेबल नंबर आ गया है, अगर 20,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं तो वो बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है और इसके फुटप्रिंट्स पूरे देश में मिलेंगे, इनको थोड़ा और बड़ा करने की जरूरत है मेरे ख्याल से। और हम देख रहे हैं अगर आप जाएंगे मार्केट्स में, बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत बेसिक चीजें जो है मल्टीपल उसके प्रोडक्ट्स बना करके, चना में, मक्का में और बहुत सारी, या जैसे मैंने मिलेट्स की बात की, मैं कुछ महिलाओं से एक बार मिला था हमारे कार्यक्रम में, वो आए उड़ीसा से, उन्होंने कहा कि जब ये हॉकी कप एक वहां पर जब हुआ था भुवनेश्वर में, वहां पर उनको अच्छा मार्केट मिला और अच्छे दाम मिले, क्योंकि मिलेट के बिस्किट्स जो है उनके बहुत बेहतर तरीके से उनको मार्केट मिला और पसंद किया गया। तो ये मतलब इस तरीके की जो अपॉर्चुनिटीज आती है मार्केट एक्सेस में, हमें इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि जहां इस तरह का कैप्टिव मार्केट होता है, कोई बड़े आयोजन होते हैं, वहां पर इन लोगों को मार्केट एक्सेस दिलवाना चाहिए, जिससे कि इनके जो बेहतर गुणवत्ता के उत्पाद हैं वो लोगों के बीच में पहचान बनाए और ये जो मार्केटिंग है वो फिर इनकी विकसित हो।
1: जी जगदीश जी, अगर इस योजना और खाद्य प्रसंस्करण को थोड़ा सा जोड़ कर देखें तो जो 44% महिला नेतृत्व वाले जो उद्यम हैं उनको स्वीकृत ऋण मिले हैं, साथ ही साथ 4,00,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को सीड कैपिटल मिली है, यानी जो महिलाओं को आज तक हम सहायक श्रम मानते आए थे, बहुत बड़े तबके के लिए सहायक श्रम की भूमिका थी उनकी, अब वो बिजनेस ओनरशिप में परिवर्तित होने जा रही है। आपको क्या लगता है,

0: महिलाओं को फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में और ज्यादा तकनीकी तौर पर सक्षम बनाया जाएगा, उनको टेक्नोलॉजिकल इन्हेंसमेंट से सीधे तौर पर जोड़ा जाएगा। तो आने वाले समय में जो हमारा लक्ष्य है कि हम ग्लोबल फूड प्रोसेसिंग हब भारत को बनाएं, उस दिशा में कितनी प्रगति आप देखते हैं?
1: मुझे लगता है महिलाएं बहुत बड़ा और हिस्सा है फूड प्रोसेसिंग यूनिट का, क्योंकि भारत में फूड प्रोसेसिंग कोई आज की नहीं है, अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन अगर आप देखें कि कितनी चीजें हमारे घरों में बनती है, आज उस क्वालिटी की चीजें आपको बाजार में नहीं मिलती। हमारी नानियों दादियों ने क्या क्या नहीं बनाया, क्या क्या नहीं हमने खाया है, तो ये ऐसे ही नहीं बनती। फलों से, सब्जियों से, अनाज से, मोटे अनाज से, इन सब से वो बनाती रही। मैं समझता हूँ उसमें अगर आप महिलाओं को बढ़ाना चाहते हैं तो जो पुरानी जो टेक्नोलॉजी है, जो पुराना उनका ज्ञान, पुराने जमाने की जो उनकी विधियां हैं, जो बहुत कम खर्च में ओवरहेड एक्सपेंसेस जिसको कहते हैं, वो कोई भी पदार्थ उसमें वेस्ट नहीं जाता। अभी तो हम अपने जो कृषि टोटल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसमें से सिर्फ 10% ही फूड प्रोसेसिंग कर पा रहे हैं, और फलों और सब्जियों में तो 2-3% ही कर पा रहे हैं। अगर हम उस टेक्नोलॉजी को आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़े, अपनाए, तो आप यकीन मानिए वो महिलाएं ऐसा चमत्कार कर सकती है। 44% महिलाएं कम नहीं होती है। अगर एक योजना जिसमें 2 लाख से ज्यादा सैंक्शन हुए, 20,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश हो चुका है, उसमें अगर 44% महिलाएं हैं, तो ये मानकर चलिए कि महिलाएं इस योजना को आगे बढ़ा रही है। उनके उस ज्ञान को, जैसे ही क्या होता है, अगर आप कोई स्वयं सहायता महिलाओं का समूह है और उसमें जब कोई एक टेक्निकल विशेषज्ञ जाता है तो वो आधुनिक पढ़ाई लिखाई वाला होता है, वो जब उनको बताने लगता है तो वो हंसती है आपस में कि क्या बोल रहा है, इसको नहीं मान, ये ऐसे नहीं ऐसे बनता है। तो उस नॉलेज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो ट्रेडिशनल नॉलेज है। उस नॉलेज को किस तरह से आप आधुनिक टेक्नोलॉजी के ज्ञान के साथ जोड़ते हैं, उसका बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट निकलने वाला है। जिन देशों ने फूड प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाया, उन्होंने पुराने नॉलेज को छोड़ा नहीं है, पुरानी टेक्निक्स को छोड़ा नहीं है, उसको उन्होंने उसको नया रूप दिया, टेक्नोलॉजी में उसको अडॉप्ट कर लिया। तो ये अडॉप्टेशन अगर आप करते हैं इस योजना में, तो यकीन मानिए महिलाएं इस योजना की मतलब कर्णधार हो सकती हैं। और बड़े पैमाने पर कितना प्रोड्यूस हमारा बेकार जाता है, आलू पश्चिम उत्तर प्रदेश में पैदा होता है, बेकार फेंका जाता है, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग की यूनिट नहीं है, अगर है तो उसकी क्षमता उतनी नहीं है। टमाटर कितने ही राज्यों में टमाटर फेंक दिया जाता है, छत्तीसगढ़ में तो एक पूरा जिला है टमाटर से सड़कों पे फेंक देते हैं, प्रोसेसिंग की यूनिट नहीं है। फिर प्रोसेसिंग की यूनिट अगर लगा दी जाए तो उसको मार्केट एक्सेस नहीं है, और वो उस क्वालिटी में उसको मिलना चाहिए, जीवन अवधि है, तो वो प्रोड्यूस उस अवधि में पहुंच जाए कंज्यूमर तक, ये सब व्यवस्था अपने को सोचनी पड़ेगी। और उसके लिए जो मैं जोर इस बात पर है कि जो पुरानी विधियां हैं उनको नई टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएंगे, तो आप यकीन मानिए महिलाएं जो आज कर रही है ना, जो स्वयं सहायता समूह की छोटे छोटे उद्यम चला रही है, जैसे मिलेट्स के बिस्कुट छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर गांव-गांव में ये बन रही है चीजें, लेकिन उसकी क्वालिटी और उसकी पैकेजिंग, ये दोनों को संभालने की जरूरत है। तो अगर आप पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ मिलाते हैं, अगर मशीनरी नहीं है तो बनाई जा सकती है, जैसे मैंने कहा कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बहुत सारी चीजें लोग बना रहे हैं। मैंने छोटे स्थानों पे, अमरावती महाराष्ट्र का छोटा स्थान है, वहां 2-3 यूनिट्स देखी जो 3D टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो उसने उनको एक इंजीनियर मिल गया, उसके सहारे उन्होंने इसको अपना लिया। तो ये नए प्रयोग वो लोग उनके दिमाग में आते हैं, हमने एक योजना बना दी और योजना का एक फिक्स ढांचा है, तो उसको थोड़ा सा ओपन रखना चाहिए कि हाँ ठीक है, इसको भी हम लेंगे और इस पर भी हम विचार करेंगे। इसने आपके पास 4 ऐसी योजना है, फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय जो है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना और PMFEM के साथ में ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम भी है, जो इन सब योजनाओं में कैसे लिंकेज हो और इन सब योजनाओं का लाभ फूड प्रोसेसिंग को कैसे मिले, मंत्रालय इसके लिए कोशिश कर रहा है, नो डाउट, मतलब उनके उद्देश्यों में भी लिखा है, और ये सब योजनाएं फूड प्रोसेसिंग को मदद करती है, उस सेक्टर को आगे बढ़ा रही है। लेकिन इसमें थोड़ा जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको शामिल करना चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए कि अच्छा हम इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे हमारा बनाने का एक फार्मूला है, उस फार्मूले के अलावा अगर पुराना कोई अच्छा फार्मूला है तो हम उस फार्मूले को अपनाएंगे, तो यकीन मानिए हमारा, हम बहुत ग्रोथ कर सकते हैं, इसमें ग्रो करने की जबरदस्त संभावना है। अभी हम 30.5 लाख करोड़ के आसपास का ये सेक्टर है, इसको आप 4 गुना ले जा सकते हैं, इतनी क्षमता हमारे इस सेक्टर में है। तो मैं समझता हूँ कि योजना एक उस दिशा में बहुत अच्छा कदम है, और इसको इन सब चीजों पे ध्यान रखने की जरूरत है। और मेगा फूड पार्क्स और जो ये बड़ी होती PM किसान संपदा योजना के तहत बन रहा है, कोल्ड चेन्स बन रही है, एग्रो प्रोसेसिंग का क्लस्टर बन रहा है, उनमें जो लोग काम कर रहे हैं, जो विशेषज्ञ हैं, टेक्नीशियंस हैं, उनको गांव में जाना चाहिए आसपास के, और जहां वो प्रोड्यूस है, लोकल प्रोड्यूस है, उसको कैसे मदद दी जाए ये कोशिश करनी चाहिए, उनको कैसे हम सहायता दे सकें उसको जब आप इस PMFME से जोड़ेंगे तो

0: बहुत अच्छा उसका मुझे लगता है सर। मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क बना देने से अब बात नहीं बनती है, उसके साथ नीचे भी लोगों को जोड़ा जाना चाहिए।
1: हरवीर जी, कार्यक्रम में अब समय कम है, एक आखिरी सवाल आपसे समझना चाहेंगे कि कोविड के समय इस योजना को शुरू किया गया था, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, अगर भविष्य की बात करें तो अगले 5 से 10 वर्षों में आप इस योजना से भारत के ग्रामीण इलाकों की प्रगति को कैसे देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि जैसे जैसे इस योजना का दायरा और व्यापक होता जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाला पलायन जो एक गंभीर समस्या है, उस पर भी बहुत हद तक नियंत्रण पाया जा सकेगा?
2: बिल्कुल, देखिए तो अभी तक के जो नतीजे हम देख रहे हैं वो काफी प्रॉमिसिंग है। दूसरी बात यह है कि ये हमें हमारे तमाम सारे पॉलिसी एक्सपर्ट और इकोनॉमिस्ट ज्यादातर ये सब मान चुके हैं कि जो लिबरलाइजेशन में हमने उम्मीद लगाई थी कि लोग कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर बड़े इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर में जाएंगे, उसकी संभावनाएं अब कम है। हमें जो रास्ता ढूंढना है इन लोगों के लिए, उनके इकोनॉमिक वेलबींग का, उनके बेहतर फ्यूचर का, वो कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ही ढूंढना है। तो ऐसे में इस तरह की स्कीम को और बेहतर करके और वहां पर और ज्यादा संभावनाएं पैदा करके क्या हम कर सकते हैं, कैसे जो बड़ा निवेश ला सकते हैं, वो करना पड़ेगा और करना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं कि बिहार में कुछ इस तरीके का एक छोटे स्तर पर सोलर पावर्ड कोल्ड रूम बनाए, बहुत ही पायलट लेवल पे, और उसमें महिलाओं ने अपने जो, जैसे उपासना जी बता रहे थे कि किस तरीके से हमारे फल और सब्जियां वेस्ट हो जाती हैं बड़े पैमाने पर, उन्होंने उसमें रखना शुरू किया, उनको एक मेंबर बना करके किया गया काम। तो ये छोटा सा काम था लेकिन उनके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव आया, क्योंकि उनका वेस्टेज कम हो गया, उनके प्रोड्यूस को बेहतर दाम मिलने की स्थिति पैदा हो गई। इसमें भी हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जो शेल्फ लाइफ जिस तरीके के प्रोडक्ट प्रोसेस होकर के आते हैं उनका अगर कम है तो कम्युनिटी लेवल पर उनके लिए ये इस तरीके के कलेक्टिव जो अप्रोच के जरिए जो फैसिलिटी है उसमें भी साथ में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और उसके लिए कहीं ना कहीं कोई ऐसा तंत्र सरकार को बनाना चाहिए जो इनके साथ सीधा जुड़ सके।
1: छोटे छोटे कदम जब एक दिशा में बढ़ते हैं तो वो सिर्फ रास्ते नहीं बदलते, पूरी तस्वीर बदल देते हैं। पीएम एफएमई योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि उन लाखों हाथों की ताकत है जो अपने हुनर से आत्मनिर्भर भारत की नींव रख रहे हैं, जहां एक छोटा सा यूनिट एक परिवार की उम्मीद बनता है और वही उम्मीद पूरे गांव की अर्थव्यवस्था को गति देती है। आज की चर्चा से ये साफ है कि जब नीतियां जमीन से जुड़ती हैं तो बदलाव सिर्फ आंकड़ों में नहीं जिंदगियों में दिखाई देता है। हमारे अतिथि जगदीश उपासने जी और हरवीर सिंह जी, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
3: धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे खाद्य प्रसंस्करण से उद्यमिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रहे प्रोत्साहन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह और वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और

0: बद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मानसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
2: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं।
3: हम जनरल मोशन मांग रहे हैं ताकि ठीक से डिस्कशन हो। आप 8 घंटे के लिए वंदे मातरम डिस्कस कर सकते हैं तो आप लंबे समय के लिए ठीक ढंग से और जनरल मोशन पे ये इशू भी डिस्कस कर सकते हैं।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब तक केवल 2 रह गई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय 2013-14 में लगभग 39,000 करोड़ रूपये से बढ़कर 2026-27 में 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक के कारवार में स्वदेशी रूप से निर्मित माहे श्रेणी का एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट INS मालवन को शामिल किया है। ये नौका जलमग्न निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियानों और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों के साथ साथ बारूदी सुरंगों को नष्ट करने की क्षमता से लैस है। चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स वर्ग में सिंधु ने उन्नति हुड्डा को हराया। आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को और लक्ष्य सेन ने योशी तनाका को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has emphasized that the dream to build a Vikasit Bharat should become a Jan Andolan and the country's youth should form the foundation of this vision. He said the welfare of citizens must remain at the heart of all reforms. The Prime Minister made the remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural

0: लिया। एक संयुक्त वक्तव्य में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमरीका ने एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई, साथ ही आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की।
1: In this era of volatility and disruption,
2: उथल पुथल के इस दौर में आपूर्ति श्रृंखला पर सबसे अधिक दबाव दिख रहा है। ऊर्जा, भोजन और स्वास्थ्य सुरक्षा को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना बहुत जरूरी है। वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। साथ ही भारत और आसियान दोनों ही अपने भविष्य को लेकर उम्मीद से भरे हैं, इसलिए चुनौतियों का सामना करते हुए भी हमें मौकों पर पूरी तरह ध्यान देना चाहिए।
1: इवन वाइल एड्रेसिंग चैलेंजेस,
0: बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि बैठक में भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इनमें व्यापार, शुल्क, ऊर्जा, रक्षा सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल हैं। डॉ जयशंकर ने यह भी कहा कि उन्होंने पारस्परिक हित के क्षेत्रीय, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग से भी मुलाकात की। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री सोनोवाल ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने बंदरगाह विकास, सीधे जहाजरानी मार्गों की स्थापना और नाविकों के कल्याण सहित समुद्री क्षेत्र में साझा शक्तियों का लाभ उठाने के तरीकों पर चर्चा की। अमरीका ने यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब के खिलाफ नौसैनिक नाकाबंदी की घोषणा के बाद अमरीका ने लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों के आवागमन को खतरे में डालने की निंदा की है। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सऊदी अरब के खिलाफ हूती विद्रोही समूहों की नौसैनिक नाकाबंदी के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन उम्मीद व्यक्त की कि स्थिति में सुधार हो सकता है। फिलीपींस में एक क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि लाल सागर से होकर जहाजों के आवागमन को प्रतिबंधित करने वाली कोई भी चीज उसी कारण से समस्याग्रस्त होगी जिस कारण से होर्मुज जलडमरू मध्य समस्याग्रस्त है। उन्होंने कहा कि अमेरिका स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है। हूती ने सऊदी अरब के खिलाफ नौसैनिक बंदी की घोषणा करके एक नया मोर्चा खोल दिया है। इससे वैश्विक तेल आपूर्ति और व्यापार का प्रवाह खतरे में पड़ गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरो फिलीपींस में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के बहुपक्षीय सम्मेलन में कल अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से भेंट करेंगे। श्री लावरोव ने बताया कि उन्होंने कल मनीला में श्री रूबियो से संक्षिप्त मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि रूस अब भी मानता है कि अमरीका पिछले वर्ष अगस्त में एंकोरेज में हुए रूसी अमरीकी शिखर सम्मेलन में व्यक्त किए गए प्रस्तावों से पीछे नहीं हटा है। इस बीच अमरीका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने बताया कि रूस और चीन ईरान की मदद कर रहे हैं। ईरान ने वाणिज्यिक जहाजों पर हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। इसके जवाब में अमरीका ने होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास सैन्य अभियान तेज कर दिए हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान आज स्कोब्जे शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी भारत के थे, लेकिन सत्य और अहिंसा का उनका संदेश समस्त मानवता का है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि संघर्ष, असहिष्णुता और विभाजन से जूझ रही दुनिया में गांधी जी के संवाद, करुणा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श अत्यंत प्रासंगिक बने हुए हैं। भारत ने ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता के तहत कल चंडीगढ़ में पारंपरिक पूरक और एकीकृत चिकित्सा पर ब्रिक्स सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी की। ये सम्मेलन चंडीगढ़ में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा आयुष मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्यक्रम के 4 दिवसीय व्यापक कार्यक्रम का हिस्सा था। इस बैठक में ब्रिक्स

0: सदस्य देशों ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, भारत, ईरान, रूस, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात ने भाग लिया। कांगो में इबोला के प्रकोप से अब तक 1,000 लोगों की मौत हो चुकी है। कांगो के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार नवीनतम प्रकोप में 2,473 मामले दर्ज किए गए हैं और 999 लोगों की मौत हो चुकी है। मंत्रालय ने बताया कि इस समय 737 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। 15 मई को घोषित ये प्रकोप पिछले अधिकांश इबोला प्रकोपों से अलग है। इसके लिए जिम्मेदार बुंडी बुग्यो वायरस का कोई स्वीकृत टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। घाना में कल अफ्रीका स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन में अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के महानिदेशक जीन कासेवा ने प्रकोप को धीमा करने के लिए गहन प्रयासों का आह्वान किया। पश्चिमी नेपाल में आज सुबह 4.2 तीव्रता का भूकंप आया। राष्ट्रीय भूकंप निगरानी और अनुसंधान केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र सुदूर पश्चिम प्रांत के बाझंग जिले के कोटदेवाल के आसपास था, जो काठमांडू से लगभग 900 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। भूकंप के झटके पड़ोसी जिलों बाजुरा और दारचूला में भी महसूस किए गए। अभी तक जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने हमवतन उन्नति हुडा को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को शिकस्त दी, जबकि लक्ष्य सेन ने जापान के युशी तनाका को हराया। भारत के युवा स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह और आर्यवीर दीवान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विश्व स्क्वाश जूनियर व्यक्तिगत चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। दोनों खिलाड़ियों ने अपने अपने मुकाबलों में सीधे गेम में जीत हासिल कर अगले दौर में प्रवेश किया। महिला वर्ग में शीर्ष वरीयता प्राप्त अनाहत सिंह ने राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में हांगकांग की पुई यिन चोले लो को 11-3, 11-1, 11-3 से हराया। अब उनका सामना मलेशिया की 13-16 सीड डोएस ये सैनली से होगा। वहीं पुरुष वर्ग में सीड आर्यवीर दीवान ने भी शानदार खेल दिखाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज दोपहर पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत कनाडा सहयोग लगातार बढ़ रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। क्वाड के विदेश मंत्रियों ने फिलीपींस के मनीला में आयोजित बैठक में स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका ने यमन के हूती समूह द्वारा लाल सागर में सऊदी अरब के खिलाफ की गई नौसैनिक नाकाबंदी के लिए ईरान को दोषी ठहराया। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव कल फिलीपींस में आसियान सम्मेलन के दौरान अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। और चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I am Reshma Tiwari with the World News. The headlines. Quad foreign ministers reaffirm commitment to free, open and inclusive Indo-Pacific. Hold meeting at Manila in Philippines. US blames Iran for naval blockade against Saudi Arabia in Red Sea by Yemen's Houthi group. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov to meet with US Secretary of State Marco Rubio tomorrow on sidelines of ASEAN in Philippines. And in China Open Badminton, PV Sindhu and Ayush Shetty enter singles pre-quarterfinals. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today participated in Quad Foreign Ministers meeting at Manila in Philippines. In a joint statement, India, Japan, Australia and United States reaffirmed the commitment to strengthen a free and open Indo-Pacific

बिल्कुल हम आ चुके हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम लेकर। जी हाँ, हर्ष श्रृंगार, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं रितिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। '92 में आई फिल्म दीवाना से आपने ये गीत सुना, ऋषि कपूर और दिव्या भारती पर फिल्माया ये गीत। समीर का लिखा ये गीत नदीम श्रवण के संगीत से सजा अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में। कहते हैं कि तेरी बातों में जादू सा लगता है, तेरी बातों में जादू सा लगता है, तेरे साथ मौसम का रंग बदलता है। चलो मोहब्बत के साए में खो जाए, क्यों ना इस प्यार भरी मस्ती में साथ में भीग जाए।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई

बिल्कुल आप रोइए मत, हंसते रहिए, क्योंकि आप हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ और सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम हर श्रृंगार। शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित पर फिल्माया ये गीत आपने सुना अभिजीत की आवाज में, आनंद मिलिंद का संगीत और समीर का लिखा ये गीत। कहते हैं कि जब प्यार किसी से होता है तो हर दर्द भी मीठा लगता है, हर लम्हा उसकी यादों में कटता है और हर सपना बस उसी का लगता है।

तो दोस्तों हर श्रृंगार में आज बस इतना ही। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार। बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बैनर्जी ने महिला

0: सदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की।
1: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब केवल 2 रह गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि ये गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष चर्चा की अवधि तय करे और सभी पहलुओं पर खुल कर बात करें ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने विपक्ष से इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार का साथ देने की अपील भी की। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। चीन के चांगझोउ में चल रहे चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं लक्ष्य सेन ने जापान के युशी तनाका को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi has emphasized that the dream to build a Viksit Bharat should become a Jan Andolan and the country's youth should form the foundation of this vision. He said the welfare of citizens must remain at the heart of all reforms. The Prime Minister made the remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors towards Viksit Bharat goals in New Delhi. The meeting was attended by the Cabinet Secretary, secretaries of key ministries as well as senior officials from the Prime Minister's office. The Prime Minister underscored the importance of tackling the serious issue of drug abuse among youth. He also stressed the importance of promoting technology and fostering innovation through startups in the sports sector. The government today reiterated its readiness for meaningful discussion on NEET paper leak issue in the parliament.

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I am Gaurav Dhawan Lal with my co-anchor Amit Goyal.
1: नमस्कार. मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है. देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों और शेयर बाजार की हलचल पर चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक सुषमा रामचंद्रन. सुषमा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: धन्यवाद अमित.
1: सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ गौरा.
0: थैंक यू अमित एंड सुषमा, वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम. क्विक लुक एट द हेडलाइंस. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस कंटिन्यू डाउनवर्ड ट्रेंड. सेंसेक्स डिक्लाइंस ओवर 700 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स बिलो 24,000 लेवल. मोस्ट एशियन स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड विद गेन्स एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज अराउंड 4%.
1: आर्थिक सुर्खियों में घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट का दौर जारी. सेंसेक्स 700 अंक से अधिक लुढ़का. निफ्टी भी 24,000 के स्तर से नीचे दर्ज. प्रमुख एशियाई बाजारों में मजबूती का दौर और वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 4% की तेजी.

0: Listeners, before we move well into the program, we'd like to share that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। बढ़ते वैश्विक तनाव और तेल की कीमतों में जारी तेजी से घरेलू सूचकांकों में आज लगभग 1% तक की गिरावट दर्ज हुई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.9% के नुकसान से 715 अंक लुढ़ककर 76,755 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.8% की गिरावट से 191 अंक गिरकर 23,996 के स्तर पर बंद हुआ। एनएसए मिड कैप सूचकांक में 1% से अधिक और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.5% से अधिक गिरावट दर्ज हुई।
0: Benchmark domestic equity indices declined nearly 1% today amid ongoing geopolitical tensions and elevated crude oil prices. The Sensex shed 715 points to close at 76,755. The Nifty lost 191 points to settle at 23,996. In the broader market on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index fell over 1% and the small-cap 100 index dipped over 1.5%.
1: सेंसेक्स पैक की 30 में से 24 कंपनियों में आज गिरावट रही। गिरावट वाले प्रमुख शेयरों में इंडिगो 3.6%, इन्फोसिस 2%, स्टेट बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट 1.8% के नुकसान से बंद हुए। हालांकि हिंदुस्तान यूनिलीवर 0.7%, एनटीपीसी तथा पावर ग्रिड 0.6% और टाइटन 0.4% की बढ़त बनाने में कामयाब रहे।
0: Broad-based selling was observed in sectoral indices on the BSE. FMCG emerged as the sole gainer, rising 0.4%, while all other sectors ended in the negative zone. Among the top laggards, realty dropped 2.6%, services slipped 2%, and PSU banks lost over 1.8%. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 2,780 companies declined, 1,458 advanced, and 180 remained unchanged.
1: अंतरबैंकिक विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 33 पैसे की गिरावट से 96.57 प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। सुषमा, अगर शेयर बाजार की बात करें, आज एक और दिन जिस जब बाजार कहीं ना कहीं गिरावट के दबाव में नजर आया।
2: बिल्कुल,
1: ये दबाव किस वजह से हो रहा है और बाजार क्यों नहीं इससे उबर पा रहा? हालांकि कल और आज या सोमवार की भी स्थिति अगर हम देखें तो तीनों दिन कहीं ना कहीं बाजार में गिरावट हावी रही, और अगर बाजार कहीं संभलता हुआ भी नजर आता था तो वो बहुत देर तक टिक नहीं पाया।
2: देखिए, ये जो आजकल के 2-3 दिनों से ये चल रहा है, ये बेरिश ट्रेंड, ये तो साफ आपने भी अपनी खबरों में बोला है कि ये जो तेल की कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं। लेकिन तेल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? ये इसलिए बढ़ रही हैं कि ईरान और यूएस के बीच में जो समझौता था, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, वो टूट गया है और बीच में गोलाबारी शुरू हो गई है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है। हालांकि खबरें ये भी आ रही हैं कि बीच में मीडिएटर्स आ गए हैं और कोशिश दोनों तरफ से है कि किसी न किसी तरह ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके ऊपर कोई अंत लगाया जाए। तो ये जब तक ये ये जो प्रॉब्लम चल रही है वेस्ट एशिया में, तब तक तेल की जो कीमतें हैं वो बढ़ती रहेंगे। और इसमें ये भी डर है, अगर आप तेल की कीमतों की बात करें तो जो पहले के जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स थे, जब ये कॉन्फ्लिक्ट, जब ये वॉर शुरू हुआ, ये जंग शुरू हुआ मार्च में, फरवरी के एंड में, तो उस वक्त स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स थे, अमेरिका के भी थे और बहुत सारे देशों के थे, तो वो रिलीज हो गए थे। लेकिन अब इस वक्त वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स नहीं है, तो अवेलेबिलिटी, खैर ये बात नहीं है कि अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन इतनी जो इन्वेंट्रीज थी वो कम हो गई हैं। और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑयल ड्रिलिंग वगैरह का जो वेस्ट एशिया में, उसके ऊपर वो भी काफ़ी डैमेज हो गया है, तो इसका भी डर है। तो ये तो एक बहुत बड़ी वजह है जिससे हमारी जो मार्केट्स हैं वो हिल गई हैं। दूसरी वजह ये है कि आज की जो खबर आई है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि फार्मा सेक्टर में वो टैरिफ्स लगाएंगे। खैर अभी नहीं, उन्होंने 2 साल की ये पीरियड दिया है कि 2 साल तक कुछ नहीं होगा, उसके बाद ये 100% और 200% के टैरिफ्स होंगे, तो उससे भी नेचुरली मार्केट्स को थोड़ा सा मतलब अगेन फिर से हिल गया है, क्योंकि फार्मा सेक्टर हमारा बहुत बड़ा है और एक्सपोर्ट्स में भी उसका बहुत बड़ा रोल है।
1: फार्मा सेक्टर की बात करी, उससे संबंधित कुछ खबरें हमारे पास हैं, तो पहले उस बारे में भी थोड़ी सी जानकारी अपने श्रोताओं को दे देते हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2028 से जेनेरिक दवाओं के आयात पर भारी शुल्क लगाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य अमेरिका में इन दवाओं का उत्पादन बढ़ाना है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि 1 अगस्त से अमेरिका में आयात होने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर 2 साल तक कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके बाद शुल्क पहले वर्ष के लिए 100% और अगले वर्ष के लिए 200% तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो कंपनियां जेनेरिक दवाएं बनाने के लिए तय समय सीमा में संयंत्र और अन्य जरूरी व्यवस्था नहीं करेंगी उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। सुषमा, जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया कि अमेरिका एक तरफ हम उसका और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो युद्ध है, उसका दंश झेल रहे हैं, और अगर इस तरह की भी बातें आती हैं, क्या शेयर बाजार पर सीधा सीधा इसका भी असर पड़ता है?
2: ये तो बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर क्षेत्र जो है, एक तो बहुत बड़ा है हमारी उद्योग क्षेत्र में, और दूसरा हमारी जो निर्यात क्षेत्र में, ये वहाँ भी इसका बहुत बड़ा हिस्सा है फार्मास्यूटिकल्स का, और जो मार्केट्स में एक्सपोर्ट मार्केट्स जो हमारे फार्मास्यूटिकल क्षेत्र देख रहा है, उसमें अमेरिका सबसे बड़ी मार्केट है, और खासकर जेनेरिक दवाइयों के लिए। ये जो बात कही है अमेरिका के राष्ट्रपति ने कि 2 साल के बाद ये होगा, इसको खैर हम थ्रेट कह सकते हैं, क्योंकि अगर 2 साल के बाद भी वो 100% टैरिफ लगाते हैं तो इसका असर हाँ हमारी उद्योग के ऊपर तो होगा, लेकिन अमेरिका के जो कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर भी असर होगा, क्योंकि जेनेरिक दवाइयों का सबसे बड़ा सप्लायर हमारा देश है, और जेनेरिक दवाइयाँ, ये जो हमारी भारतीय दवाइयाँ जो हैं वो अमेरिका में बहुत कंज्यूम की जाती है, मतलब बहुत खरीदी जाती है, और अगर इनकी आप टैरिफ लगाएंगे तो इनके जो दाम है वो बढ़ जाएंगे। वैसे भी जो दवाइयां अमेरिका में उनकी जो उनका जो खर्चा है, उनकी जो कॉस्ट है, वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू इंडियन मेडिसिन्स। कई लोग जो अमेरिकी हैं, अमेरिकन सिटीजन्स, यहाँ आके दवाइयाँ खरीदते हैं और वहाँ वापस चले जाते हैं, तो ये हम थ्रेट समझ सकते हैं, और लेकिन फार्मास्यूटिकल क्षेत्र को इसके बारे में, फार्मास्यूटिकल जो उद्योग हैं इसके बारे में उनको सोचना पड़ेगा।
0: राइट, सो अ स्मॉल क्वेश्चन अगेन स्टार्टिंग विद फार्मा एंड द अनाउंसमेंट ओवर नाउ, इट्स 2 years इन द फ्यूचर एज एन ऑफिंग। वी ऑल्सो नो दैट द पास्ट हिस्ट्री ऑफ कॉमेंट्स दैट आर मेड ऑफ टैक्सेशन ऑफ टैक्सेस, लिविंग टैक्सेस, ऑफ सीजफायर, ऑफ MOUs फ्रॉम द अमेरिकन प्रेसिडेंट। वी ऑल्सो नो दैट देर इज अदर देन द शेयर मार्केट वॉलेटिलिटी, देर इज अ लॉट वॉलेटिलिटी देयर ऑल्सो।
2: यस करेक्ट।
0: And linking this to the fall in the Indian stock market today in the indices that we saw, if we are looking at a direct correlation possibly in the future, but also more to understand that even if that is say a threat in the future and not the reaction was not to that, the correction that we are seeing actually is really not a correction. For a correction to really have to rise and then come down, so this fall actually a market fall,
2: yes
0: and we are seeing it. So can we link it somewhere? Because earlier we've always had reason that either it's a correction or it's the monsoon or there is, and the Ukraine war has somewhere been built in because global supply was not affected that much.
2: Yes.
0: Stances were affected. Here actually, you know, the shoe is pinching a lot, many countries.
2: Yes.
0: How do you see our stock market? And I know it's not about prophecy.
2: Yes.
0: But you know, seeing the global situation, do you think that we'll somehow be able to build in that volatility and not have such huge ups and downs, because retail investors actually don't know what to do, the smaller ones, and they're sitting on a fair number of shares,
2: yes,
0: which you keep thinking it might just go up, But over a 6 month period, you're saying that, my God, maybe I'll never recover.
2: Yeah. Well, I think, first of all, of course, investors have to, even retail investors, should take a long-term view. And I think this is normally the advice given by most financial analysts. Unless, of course, you're doing day trading and you're selling and, you know, buying on a daily basis. But retail investors should

0: be taking a long-term view. The long-term view, of course, for India, the growth story remains intact. Now, of course, coming to this issue of the pharma sector, whether it has a direct impact, it is very true, as you point out, that this is a threat which is in the future, 2 years in the future, and from a person, the President of the United States, who has very often made statements, retracted, or even gone worse. And, you know, we have seen it within the Iran war also, and also in relation to the US-India trade deal. But the fact is, the markets, stock markets, tend to be, and this is not just in India, but around the world, they tend to be sentiment driven, as they say. And therefore, the fact that he has made this announcement today, that may not have an impact on the pharmaceutical industry today, it may never have an impact on the pharmaceutical industry. But it is a sentiment response that it could have an impact if, for instance, 100% tariffs is levied on the pharmaceutical sector. And we are the largest provider of generics to the US. The US is the biggest market for generics. It will have an impact on the industry. So that is the sentiment which drives stock markets, and therefore you are bound to see volatility. In the context of geopolitical tensions, yes, I don't think that there is any getting away from this kind of volatility, because you are going to have the market reacting to these kind of developments. Now, just a few days ago, it looked like the war was settling down. The Strait of Hormuz had opened up. Availability of oil had increased. Prices had come down to below $70. Now, we are up once again to over $90. So, there is volatility in the geopolitical scenario, and therefore, the stock markets are reacting accordingly. But at the same time, retail investors must remember that the underlying growth story of India, we have been able to, is intact, in the sense that we have been able to meet various crises with a great, I should say, you know, if you take in a macro sense, composure, in the sense that a country that has, we have continued growing at a fairly, we have continued growing at 7% to 7.5%. And despite all the tensions of the Ukraine war, where we had thought that we are going to have so many of us, there were supply chain disruptions, and we had thought that we would have a great deal of problems. So there are still problems. This is not the, not to wish them away, but I think we can tackle them.
1: Shushma, मैं वहीं से बात शुरू करता हूँ जहाँ बीच में आपने कहा, जैसा कि गौरव ने भी कहा, क्या ये टेक्निकल करेक्शन है या ये सेंटीमेंट का करेक्शन है या सेंटीमेंट कहीं गायब है या वाकई में हमारा या सबको ऐसा सोचना है कि भाई एनर्जी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी चिंता का सबब है भारतीय कंपनियों में, चाहे जितना भी दम हो, बट फिलहाल के लिए एनर्जी सिक्योरिटी कहीं ना कहीं चिंता जो है वो इन सब पे ज्यादा भारी पड़ रही है। क्या यही एक वजह है जो शेयर बाजार को अभी ट्रिगर नहीं लेने दे रही या कहीं आगे नहीं बढ़ने दे रही, या वाकई कंपनी जगत से भी जो पिछले कुछ नतीजे आए हैं वो इतने उत्साहजनक नहीं रहे, या सबका मिला जुला रुझान है? महंगाई भी एक मुद्दा बन सकता है क्या इसमें?
0: देखिए, अब ये मैं नहीं मान सकती कि ये टेक्निकल करेक्शन है, इसको तो आप रहने दीजिए, क्योंकि ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, मार्केट का उतार चढ़ाव जो है वो उनके साथ ही चल रहा है, जैसे कोई राग चल रहा है और आप वो गायक का तबला साथ में, तो ये स्टॉक मार्केट की वैसे ही चल रही है। तो इसमें ये है कि जो एनर्जी सिक्योरिटी की जो आपने बात की, वो बिल्कुल आपने, आई थिंक यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। एनर्जी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है हर उद्योग के लिए, हर कंपनी के लिए। और इसको एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि तेल को हम लोग समझते हैं जो क्रूड ऑयल है, और उसके अलावा पेट्रोल है और डीजल है, इसके अलावा बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, इसमें पेट्रोकेमिकल्स आ जाती हैं, इसमें प्लास्टिक्स आ जाती हैं। जो जब ये जो यूएस ईरान की वॉर शुरू हुई, एक महीने के बाद हमारे देश में प्लास्टिक्स के दाम बढ़ गए थे,
1: बहुत तेजी से
0: प्लास्टिक्स के दाम बढ़ गए थे। और मुझे किसी ने कहा कि किसी कंपनी का नाम लिया, और उन्होंने कहा अरे वो लोग ये तो प्लास्टिक के दाम बढ़ा रहे हैं। मैंने कहा भाई अब ये प्लास्टिक के दाम क्योंकि पेट्रोकेमिकल्स के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोकेमिकल्स के दाम इसलिए
1: आ पा रहा है
0: क्योंकि तेल की वजह से, उसके साथ फर्टिलाइजर्स भी है। तो ये

0: एनर्जी सिक्योरिटी जो है एक चीज नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये है जो एक चीज जो हावी है सारे हमारे उद्योग क्षेत्र में।
1: एफएमसीजी लेकिन आज पूरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं अपनी उम्मीदें जगाता हुआ नजर आया एफएमसीजी।
0: बिल्कुल,
1: क्या सिर्फ यही है वजह कि ये तो एक मूल जरूरत ही है इस वजह से, या कोई और बात?
0: नहीं, मूल जरूरत है, बिल्कुल है, क्योंकि हमारा कंजम्पशन, हमारा डिमांड, ये बहुत बड़ा देश है और हमारी जो इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये एक कहा जाता है कि हम लोग एक्सपोर्ट्स की तरफ क्यों नहीं देखते, क्योंकि हमारी मार्केट, इंटरनल मार्केट इतनी बड़ी है। तो ये एफएमसीजी के लिए यही है कि इतनी बड़ी मार्केट है। हाँ, क्योंकि वो क्या करते हैं, जब दाम बढ़ाने होते हैं तो वो पैकेज छोटे कर लेते हैं, तो स्मॉल पैकेट की इशू हो जाती है और फिर बड़े पैकेज कर लेते हैं। तो डेफिनेटली हमारे यहाँ कंजम्पशन बहुत बड़ा है, वाइड स्प्रेड एरिया है।
2: Right, and it's interesting that when we see FMCG and even luxury goods,
0: yes,
2: both segments, our consumption has not really, you know, fallen that much,
0: and, yes,
2: and it's I think it's a sign of maybe overall raising of standard of living.
0: Yes, it. Yeah. Right. I mean that needs to be analyzed, but it could be.
2: Right, right. Moving on to our next story, Eternal Limited today reported its financial results for the first quarter of the current financial year. The company's consolidated revenue from operations rose by 182% year-on-year to 20,211 crore rupees. On a quarter-on-quarter basis, revenue increased around 17%. The company's consolidated net profit grew by 268% to 92 crore rupees compared with the corresponding quarter of the previous financial year. However, on a sequential basis, net profit declined over 47%.
1: नवरलाल ने एशियाई शेयर बाजार पर, एशियाई बाजारों में आज आमतौर पर मजबूती का रुझान रहा। ताइवान का ताइएक्स 1.3%, सिंगापुर का स्ट्रेच टाइम सूचकांक 1.2%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.7% और चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। हालांकि हांगकांग का हैंगसेंग 0.9% और जापान का निकेई 0.2% के नुकसान से बंद हुआ।
2: सुषमा, व्हेन वी सी मार्केट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, वी सी द यूएस मार्केट, वी सी द इंडियन मार्केट्स, एंड वी आर समवेयर सेइंग दैट देयर आर geopolitical reasons which unifies sentiment possibly, but markets are all responding very differently. Your comment?
0: Yes, correct.
1: I mean, एक चीज मैं इसमें और भी जोड़ना चाहूंगा, सिर्फ अमेरिका ही नहीं जो युद्ध छेड़कर अपने बाजारों को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन एशियाई बाजार में भी जो ज्यादातर एशियाई बाजार हैं वो भी बढ़त में हैं, सिर्फ नुकसान हमारे शेयर बाजार उठा रहे हैं, ये क्या रिश्ता है, ये समझ नहीं आ रहा।
0: देखो, दिस इज I'll first talk about the, as you say, the differences between markets. First of all, the upsurge in Asia just now is largely due to the fact that exports of in both Japan and Hong Kong and Taiwan and South Korea have picked up. Japan has gone up by, you know, in double-digit figures exports. In Taiwan and South Korea, it has gone up specifically in semiconductors, which has revived hopes that the problems that were facing that country was facing as far as AI and semiconductors is not to be, there's nothing to worry about.
2: Right.
0: So there is a sense of buoyancy over there. But these are things that are not related to the war, but in a sense related, because semiconductors are required everywhere. So therefore, that was specifically in the Asian region is due to the exports and surging of semiconductor exports from Taiwan and South Korea. If you come to the U.S., which you mentioned that the U.S. is, doing so well. Now, the U.S., of course, has many advantages. Number one, they don't have to worry about oil availability. They are the largest producer of oil right now in the world. After having put their shale oil reserves, started exploiting them, they have now become the largest oil producer. They do, of course, the reason that the U.S. government administration is worried about oil prices is because they have a system unlike ours where their prices are directly linked to international prices. So, जैसे ही इनके दाम बढ़ते हैं ग्लोबली, उतने ही वहाँ उनकी डोमेस्टिक प्राइसेस बढ़ जाती है। सो देयर इज द कंज्यूमर इज अफेक्टेड, एंड इफ द कंज्यूमर इज अफेक्टेड देन नेचुरली इट बिकम्स अ पॉलिटिकल इश्यू, एंड इट हैज बीन अफेक्टिंग द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। सो देयरफॉर दो

0: hostilities between the US and Iran. Brent crude was trading almost 3.8% up at $94.44 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 3.5% up at $87.28 per barrel when reports last came in. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading over 1.2% up at 1,45,350 rupees per 10 grams, while silver was trading 0.5% up at 2,25,420 rupees per kilogram a short while ago.
1: मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त के वायदा कारोबार में सोना 1.2% की बढ़त से 1,44,618 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा. चांदी भी 0.6% की मजबूती से 2,25,100 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार करती नजर आई. सुषमा, संक्षेप में जो अभी तेल की कीमतों का जो दबाव है
2: जी,
1: वो किस तरह से आपको नजर आता है और क्या सोना चांदी की जो जो भाव हैं वो भी कहीं इससे कदम ताल करते हुए नजर आएंगे, या फिर हमको ये भी देखना पड़ेगा कि डॉलर और रुपए का जो संबंध है, क्योंकि आज भी रुपए में हल्की सी कमजोरी आई है, वो इसको दिक्कत करेगी.
2: ये आपका सवाल बहुत लंबा है, ये संक्षेप में नहीं हो सकता. हाल में सिर्फ ये कह सकती है कि तेल के जो दाम है वो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन खुल गया तो फिर वो एकदम नीचे आ जाएंगे. उसके बाद हमें कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं है. और सोना जो है, जो अभी भी गोल्ड वो सेफ हेवन एसेट है और ये रहेगा, और जब तक क्राइसिस रहेगा दुनिया भर में तो इसकी प्रॉब्लम्स रहेगी, इसके दाम बढ़ेंगे.
1: सुषमा, कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए धन्यवाद.
2: थैंक यू.
1: और चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर.
0: एब्सोल्युटली, थैंक यू सुषमा वंस अगेन. अ क्विक लुक एट द हेडलाइंस लिसनर्स. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस कंटिन्यू डाउनवर्ड ट्रेंड. सेंसेक्स डिक्लाइंस ओवर 700 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स बिलो 24,000 लेवल. मोस्ट एशियन स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड विद गेन्स एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज अराउंड 4%. दैट्स ऑल फॉर टुडे. नमस्कार.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

एक बार फिर से मैं रितिका आप सभी का स्वागत करती हूं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर, जिसको आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम है गीत मेरे मन में, तो सबसे पहला गीत जो आपने सुना वो है अनजाना फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और आनंद बख्शी का लिखा ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन

तो दोस्तों, गीत मेरे मनमीत में आज बस इतना ही। अपनी दोस्त रितिका को दीजिए इजाजत और अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार। बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन बनना चाहिए और युवा इसकी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सुधारों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए, साथ ही बदलते समय के साथ शासन व्यवस्था में भी बदलाव पर जोर दिया। इसके अलावा खेलों को बढ़ावा देने, किसान हित और कौशल विकास पर ध्यान देने की भी बात कही। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बैनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की।
1: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल दुर्घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब केवल 2 रह गई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय 2013-14 में लगभग 39,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2026-27 में 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि यह गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने मनीला, फिलीपींस में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और कनाडा के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनुराग जैन को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। अनुराग जैन वर्ष 1989 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that the dream to build a Viksit Bharat should become a Jan Andolan and the country's youth should form the foundation of this vision. He said the welfare of citizens must remain at the heart of all reforms. The Prime Minister made the remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors towards Viksit Bharat goals in New Delhi. The meeting was attended by the Cabinet Secretary, secretaries of key ministries as well as senior officials from the Prime Minister's office. The Prime Minister underscored the importance of tackling the serious issue of drug abuse among youth. The government has reiterated its readiness for meaningful discussion on NEET paper leak issue in the Parliament. Speaking in the Lok Sabha, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government was prepared for a meaningful debate on the issue involving all sides under established parliamentary rules, keeping in mind the future of the country's youth. Mr. Rijiju's remarks came as both houses of Parliament witnessed repeated disruptions by the opposition for the third consecutive day yesterday over various issues, including the NEET paper leak case and students' protests. Later, the Lok Sabha and Rajya Sabha were adjourned for the day. Senior BJP leader and Union Minister JP Nadda has said that the NEET paper leak issue raised by the students should not be politicized and it is not appropriate to take political advantage.

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है 11:12:14। मैं हूं आपके साथ अंजू, कार्यक्रम लेकर आई हूं निशिकांता। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

न जाने तेरे छूने से मुझे क्या हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे तेरी दिल की धड़कन मेरे दिल में कोई गजल गा रही हो।

चांद से क्या पूछूं तेरी सादगी की तारीफ, चांद से क्या पूछूं तेरी सादगी की तारीफ, वो तो खुद दाग छुपाए बैठा है तेरी रोशनी के आगे।

ये रातें कितनी हसीन हैं, ये रातें कितनी हसीन हैं जानते हो क्यों? क्योंकि ये मुझे तुमसे मिलने वाले हसीन ख्वाबों का तोहफा जो देती हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन

दोस्तों समय हुआ है 12:33 और ये हुआ 34 और 1 सेकंड। मैं हूं जो आपके साथ, कार्यक्रम चल रहा है निशिकंधा।

इस दिल में दर्द भी तो तुमने ही जगाया है, इस दिल में दर्द भी तो तुमने ही जगाया है। अजीब दस्तूर है इश्क का, तुमसे गिला भी है और तुम ही पर ये प्यार भी आया है।

0: दोस्तों अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 1:10 पर फिर से आपसे मुलाकात होगी। होगी सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन बनना चाहिए और युवा इसकी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सुधारों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए, साथ ही बदलते समय के साथ शासन व्यवस्था में भी बदलाव पर जोर दिया। इसके अलावा खेलों को बढ़ावा देने, किसान हित और कौशल विकास पर ध्यान देने की भी बात कही। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बैनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और संसदीय टिप्पणी की। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
1: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट

0: पेपर लीक के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि ये गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल दुर्घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब केवल 2 रह गई है। महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बेटियों के अधिकारों और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा रही है। राज्यसभा में दिए गए लिखित उत्तर में उन्होंने बताया कि देश में जन्म के समय लिंग अनुपात में सुधार हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये अनुपात 2014-15 में 918 से बढ़कर 2024-25 में 929 हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि स्कूलों में लड़कियों की भागीदारी भी बढ़ी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने मनीला फिलीपींस में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने जम्मू कश्मीर, असम, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में बाढ़ के कारण हुई मौतों पर दुख व्यक्त किया है। हांगकांग में चल रही सीनियर विश्व तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 में भारत ने शानदार शुरुआत की है। भारतीय खिलाड़ी तनिक्षा खत्री और प्राची लोहान ने महिला व्यक्तिगत एपे वर्ग के मुख्य दौर में जगह बनाकर इतिहास रच दिया है। वे इस चैंपियनशिप के मुख्य दौर में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला एपे खिलाड़ी बन गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that the dream to build a Viksit Bharat should become a Jan Andolan and the country's youth should form the foundation of this vision. He said the welfare of citizens must remain at the heart of all reforms. The Prime Minister made the remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors towards Viksit Bharat goals in New Delhi. The meeting was attended by the Cabinet Secretary, secretaries of key ministries as well as senior officials from the Prime Minister's office. Government has reiterated its readiness for meaningful discussion on NEET paper leak issue in the Parliament. Speaking in the Lok Sabha, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government has prepared for a meaningful debate on the issue involving all sides under established parliamentary rules, keeping in mind the future of the country's youth.
2: The government is fully prepared for a discussion on the NEET paper leak and we have maintained this position from the very first day. I request that the Honorable Speaker, after consulting with the floor leaders of all parties, decide when the discussion should be held, how long should it last, on which day should it take place and under which rule should it be conducted. The government wants all of us to come together and hold a meaningful discussion for the future of the country's youth.
1: Defence Minister Rajnath Singh has flagged in Samudra Pradakshina, the first ever tri-service all-women circumnavigation sailing expedition through video conferencing. 9 women officers from the Army, Navy and Air Force returned to Mumbai aboard the Indian Army's sailing vessel Triveni after completing a 314-day voyage covering more than 25,000 nautical miles across 4 oceans. Union Minister of State for Atomic Energy, Dr. Jitendra Singh, has said that the government has drawn up a roadmap to achieve 100 gigawatts of nuclear power capacity by 2047 under the Nuclear Energy Mission. In a written reply to the Lok Sabha, Dr. Singh said the country's installed nuclear power capacity is expected to increase from the present 8.78 gigawatts to around 22 gigawatts by 2031-32. Union Minister of State for Communications, Dr. Chandrasekhar,

दोस्तों समय हुआ है 1:11:17, ये समय है कार्यक्रम गीत सुहाने का और मैं हूँ आपके साथ अंजू। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

मौसम में आज यूं ही मदहोशी नहीं छाई है, मौसम में आज यूं ही नहीं मदहोशी छाई है, सुना है आज वो मेरे शहर में आई है।

की भला चाहत किसे है अब, मंजिल की भला चाहत किसे है अब, तुम मिल गए तो यकीन मानो ये सफर मुकम्मल हो गया।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

दुनिया के सारे दर्द पल में भूल जाते हैं, दुनिया के सारे दर्द पल में भूल जाते हैं जब हम सिमट कर तेरे आगोश में आते हैं।

इन हसीन वादियों में खो जाने का दिल करता है, इन हसीन वादियों में खो जाने का दिल करता है, और तुम्हारे साथ एक नया आशियां बसाने का दिल करता है।

जुदा हो गए हम क्योंकि जमाने को हमारा मिलना नहीं था मंजूर, पर रूह से रूह का रिश्ता आज भी शायद उतना ही गहरा है।

करीब आ एक बार फिर के दिल की धड़कनें सुन सकूं, करीब आ एक बार फिर के दिल की धड़कनें सुन सकूं, तेरी आंखों में डूबकर मैं अपने सारे गम भूल सकूं।

0: दोस्तों अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार 2:10 पर फिर से आपसे मिलेंगे। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन बनना चाहिए और युवा इसकी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सुधारों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए, साथ ही बदलते समय के साथ शासन व्यवस्था में भी बदलाव पर जोर दिया। इसके अलावा खेलों को बढ़ावा देने, किसान हित और कौशल विकास पर ध्यान देने की भी बात कही। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बैनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूँ कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
1: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल दुर्घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब केवल 2 रह गई है। संचार राज्य मंत्री डॉ चंद्रशेखर पेमा सानी ने कहा है कि भारत 6G अलायंस अब 90 सदस्यों वाला संगठन बन गया है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में उन्होंने बताया कि ये अलायंस उद्योग

समय हुआ है 2:11 और 12 सेकेंड। ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का। मैं हूँ एक बार फिर से आपके साथ अंजू, कार्यक्रम लेकर आई हूँ जैसे कि मैंने अभी बताया रात सुरमई। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

मैं ही नहीं तेरी चाहत में पागल यहाँ, मैं ही नहीं तेरी चाहत में पागल यहाँ, तू भी बेकरार है मेरी तरह, ये मैं नहीं तेरी आंखें बयां करती हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम चल रहा है रात सुरमई और मैं हूं आपके साथ अंजू। लफ्ज कम पड़ जाते हैं जब मोहब्बत बयां करते हैं, लफ्ज कम पड़ जाते हैं जब मोहब्बत बयां करते हैं। कैसे कहें हम तुझे खुद से ज्यादा मोहब्बत करते हैं।

दिल की तख्ती पर कुछ इस तरह नाम लिखा है तुम्हारा, दिल की तख्ती पर कुछ इस तरह नाम लिखा है तुम्हारा, जीते जी न भूल पाएंगे तुम्हें, चाहे बदल जाए ये जहां सारा।

दोस्तों अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और 3:10 पर भारती रहेंगे आपके साथ कार्यक्रम हमराही लेकर। मुझे अनुमति दीजिए, जल्द मिलूंगी आपसे कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड पर। शुभ रात्रि, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन बनना चाहिए और युवा इसकी सबसे बड़ी ताकत होने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सुधारों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए, साथ ही बदलते समय के साथ शासन व्यवस्था में भी बदलाव पर जोर दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बैनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि यह गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। संचार राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेमासानी ने कहा है कि भारत 6G अलायंस अब 90 सदस्यों वाला संगठन बन गया है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में उन्होंने बताया कि ये अलायंस उद्योग और शिक्षा जगत के सहयोग से चलने वाला संगठन है। इसमें दूर संचार कंपनियां, उपकरण निर्माता, स्टार्टअप, शोध संस्थान और शिक्षण संस्थान शामिल हैं। भारत ने इबोला से बचाव की तैयारियों को मजबूत करने के लिए केन्या को चिकित्सा सहायता की पहली खेप भेजी है। केन्या में भारत के उच्चायुक्त डॉक्टर आदर्श स्वाइका ने नैरोबी में 4.5 टन चिकित्सा सामग्री केन्या के स्वास्थ्य मंत्री एडन डुएले को सौंपी। इस सहायता में पीपी किट, सैंपल ले जाने की किट, इंफ्रारेड थर्मामीटर, फेस शील्ड, सुरक्षा जूते और संक्रमण से बचाव के अन्य जरूरी सामान शामिल हैं। नैरोबी स्थित भारतीय उच्चायोग ने बताया कि चिकित्सा सहायता की दूसरी खेप भी अगले कुछ दिनों में पहुंचाई जाएगी। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने मनीला, फिलीपींस में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम हमराही के इस प्यारे से गीत के साथ।

कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऐसे आते हैं जैसे कोई खूबसूरत दुआ पूरी हो गई हो। उनकी मुस्कान हर पल को यादगार बना देती है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, प्रोग्राम है हमराही। सच्चा प्यार दूरियों का मोहताज नहीं होता, दिलों का रिश्ता धड़कनों की आवाज नहीं होता, और जब भी एक दूसरे को पहचान मिल जाती है तो सच्चा प्यार हमेशा साथ होता है।

की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की

प्यार की हर आहट दिल में नई उमंग जगा देती है। प्यार की मधुर धुन जीवन को खुशियों से भर देती है।

जब किसी के लिए दिल में सच्चा अपनापन हो तो उसका नाम हर दुआ और हर मुस्कान में बस जाता है। और समय कह रहा है कि अब आपसे मैं

अनुमति ले लूं। 4:10 पर फिर से हाजिर होंगे लेकर प्रोग्राम अरुणिमा। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए अनुमति और छोड़े जा रही हूँ आपको एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन बनना चाहिए और युवा उसकी सबसे बड़ी ताकत होने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सुधारों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए, साथ ही बदलते समय के साथ शासन व्यवस्था में भी बदलाव पर जोर दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बैनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि यह गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उत्तर मैसिडोनिया के राष्ट्रपति गोर्दाना सिलजानोवस्का दावकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति एक महिला है और ये गर्व की बात है कि स्कोपिये में आकाशवाणी संवाददाता शुभ्रसी महापात्रा से बातचीत में सुश्री दावकोवा ने कहा कि वे भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिक विरासत से पहले से ही प्रभावित थीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद उनका सम्मान और बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया कि केवल महिलाएं ही दुनिया को बदल सकती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी ऐतिहासिक राजकीय यात्रा पर उत्तर मैसिडोनिया में हैं। इस यात्रा के दौरान वे वहां की प्रसिद्ध ओहरिड झील का भी दौरा करेंगी। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इसके बाद 1957 में लोकप्रिय फिल्म संगीत के साथ विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई। भारत ने इबोला से बचाव की तैयारियों को मजबूत करने के लिए केन्या को चिकित्सा सहायता की पहली खेप भेजी है। केन्या में भारत के उच्चायुक्त डॉक्टर आदर्श स्वाइका ने नैरोबी में 4.5 टन चिकित्सा सामग्री केन्या के स्वास्थ्य मंत्री एडन डुएलो को सौंपी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे, जो 2 अगस्त तक जारी रहेंगे। इस बार प्रतियोगिता में 74 देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। भारतीय दल के सदस्यों की संख्या 125 है। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार

एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर प्रोग्राम अरुणिमा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो गया है 4:11 और 40 सेकेंड। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की अंदाज अपना अपना एक फिल्म के इस गीत के साथ, जिस गीत को अपनी आवाज से सजाया है विकी मेहता ने।

अभी आपने गीत सुना विक्की मेहता और बहरोज चटर्जी की आवाज में। आगे बढ़ते हैं, अगला गीत सुनते हैं फिल्म लम्हे से लता मंगेशकर की आवाज में, संगीतकार शिव हरी और गीतकार आनंद बख्शी।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. प्रोग्राम है अरुणिमा और अगला गीत सुनते हैं फिल्म किसी से ना कहना से आशा भोसले की आवाज में.

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म संगीत से अनुराधा पोटवाल और पंकज उदास की आवाज में, संगीतकार आनंद मिलन और गीतकार संतोष आनंद।

और इस समय कह रहा कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले यही कहूंगी कि मैं जल्द लौट के आऊंगी 5:10 पर लेकर कार्यक्रम भोर सुहानी। तब तक ले रही हूँ आपसे अनुमति और कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन बनना चाहिए और युवा इसकी सबसे बड़ी ताकत होने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सुधारों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए। उन्होंने बदलते समय के साथ शासन व्यवस्था में भी बदलाव पर बल दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के हंगामे के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसद टिप्पणी की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सियानोस्का दाओकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति एक महिला है और यह गर्व की बात है। स्कोपजे में आकाशवाणी की संवाददाता शुभश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दाओकोवा ने कहा कि वह भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिक विरासत से पहले ही प्रभावित थी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया है कि केवल महिलाएं ही दुनिया को बदल सकती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी ऐतिहासिक राजकीय यात्रा पर उत्तरी मैसेडोनिया में हैं। इस यात्रा के दौरान वे वहां की प्रसिद्ध ओहरीड झील का भी दौरा करेंगी। भारत ने इबोला से बचाव की तैयारियों को मजबूत करने के लिए केन्या को चिकित्सा सहायता की पहली खेप भेजी है। केन्या में भारत के उच्चायुक्त डॉक्टर आदर्श स्वाइका ने नैरोबी में 4.5 टन चिकित्सा सामग्री केन्या के स्वास्थ्य मंत्री एडेन डुएल को सौंपी। इस सहायता में पीपीई किट, सैंपल ले जाने की किट, इंफ्रारेड थर्मामीटर, फेस शील्ड, सुरक्षा जूते और संक्रमण से बचाव के अन्य जरूरी सामान शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया में मारे गए 4 अमरीकी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। डेलावेयर के डोवर एयरफोर्स बेस पर आयोजित सम्मान समारोह में राष्ट्रपति ट्रंप ने सैनिकों को सलामी दी। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर परिवार को सौंपे गए। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इसके बाद 1957 में लोकप्रिय फिल्म संगीत के साथ विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई। राष्ट्रमंडल खेल 2026 आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे, जो 2 अगस्त तक जारी रहेंगे। इस बार प्रतियोगिता में 74 देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। भारतीय दल के सदस्यों की संख्या 125 है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज हरारे में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। और मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that the dream to build

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ प्रोग्राम भोर सुहानी में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम भोर सुहानी की इस भजन के साथ।

साथ मिलकर चलने से हर रास्ता आसान हो जाता है। आइए सहयोग, प्रेम और विश्वास के साथ सफलता की ओर बढ़ें।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की